want to know regarding आपका मदर्स डे कैसा गया, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा कि आप अगर खुद मॉम हैं तो आपके बच्चों ने क्या आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया या फिर क्या बनाया या फिर क्या गिफ्ट दिया, आप मुझे बता सकते हैं। बट इनफैक्ट अगर आप खुद मॉम के लिए आपने प्रिपरेशन की है तो मुझे बताइए कि आपने क्या क्या मॉम को गिफ्ट दिया है इस मदर्स डे पे। आई हैव सीन अ लॉट, यानी दिस वॉज माई वाइफ्स खुशबू का पहला मदर्स डे। सो मैं भी बताऊंगा, अभी नहीं यार, थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैंने क्या गिफ्ट दिया है। बट यस, आप बने रहिए। और मेरा नाम केतन है, वैसे तो अभी से लेके 3 बजे तक यहाँ पे हूँ, बहुत सारी बातें होने वाली है, गपशप होगी और गाने दमदार चलेंगे। सबसे पहला गाना मैं लगाऊंगा लॉन्ग द लश्कारा। सुनना पड़ेगा मेरे को मेरे को याद है वैसे तो, बट मैं धुन थोड़ी सी भूल चुका हूँ। बट यस, आई हैड एन अमेजिंग शो ओवर द वीकेंड यार, एक रेस्टोरेंट में हमने परफॉर्मेंस दी है, मैंने और जो मेरा बैंड है द बेनाम्स, उन्होंने मिलकर परफॉर्मेंस दिया। इनफैक्ट ये पहला परफॉर्मेंस था हमारा टुगेदर विद एवरीवन। यूजुअली उन्होंने सिर्फ हायर किया था 2 बंदों को, बट वी थॉट व्हाई नॉट वी गिव लिटिल एक्स्ट्रा एंड व्हाई नॉट वी गिव समथिंग ग्रेट जो वो ना भूले। थोड़ी थोड़ी करके हम डेफिनेटली वीडियोस भी डालेंगे, तो वो भी आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके सुन सकते हैं, द बेनाम्स विद डबल ए, जी हाँ, NZ एट द एंड। बट अभी के लिए एंजॉय करिए लॉन्ग द लश्कारा, महालक्ष्मी अय्यर और हार्ड कोर और साथ में जसवीर जसपीर जस्सी की आवाज में भी। बचाओ।

0: वेलकम बैक। आज मैंने तीन बार बोला है, लोग बोलते तू दो हर चीज दो दो बार बोलता है, तो लेट्स आज मैंने कुछ एडिशनल कर दिया, उसमें एक शब्द एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। सो यस, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। होमसिक रेमेडीज, आपने मैसेजेस भेजे हैं, अभी भी भेज सकते हैं आप मुझे होमसिक रेमेडीज। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बीइंग फ्रॉम डिफरेंट सिटी ऑफ न्यूजीलैंड, या फिर आप मैं अगर बात करूं, ऑफ कोर्स आई वोंट बी काउंटिंग इट फ्रॉम इंडिया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिसीव अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम इंडिया। तो मैं तो ये बताऊंगा कि मैं इन्वरकागल में था। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, वो है वहाँ पे I am actually not wasting a lot of time in traveling or traffic. ये मैं बहुत मिस करता हूँ यहाँ के कंपेयर में। ऑफ कोर्स रेस्ट एवरीथिंग आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड टू हैव इन ऑकलैंड। बीइंग इन ऑकलैंड वेदर काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू इन्वरकागल। ऑफ कोर्स वहाँ का कोई कंपैरिजन मेजर तो नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है। वहाँ पे लोग लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, फुल फैमिली टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास टू एक्सपेंड एंड टू, ऑप्शंस लिमिटेड है डेफिनेटली। बट एक खास बात है कि वहाँ से क्वींसटाउन जो है वो सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पे है। दैट मीन्स whenever we wanted, even in the night also, we can visit to Queenstown and then come back next day by on road trip. But yes, aap bhi mujhe is tarah ke text bhej sakte hain. Would love to hear. Ji haan. But yes, abhi ke liye messages padh lete hain. Kuch jo messages aaye hain mujhe, unhe padha jaye to baat hogi. Right? But yes, wo padhe message usse pehle aapko batata hoon. 5999 is the number jo aap mujhe bhej sakte hain. सबसे पहले रितिका का मैसेज आया है एल्बनी से। वो कहती है, एवरी फ्राइडे नाइट माय फैमिली बैक इन फीजी हैज़ अ बारबेक्यू टुगेदर। हियर इन ऑकलैंड आई यूजुअली फिनिश वर्क, हीट अप लेफ्टओवर्स एंड स्क्रॉल थ्रू ओल्ड फैमिली फोटोज, दैट्स व्हेन द होम सिकनेस हिट्स। ट्रू। समीर कहते हैं, आई नेवर थॉट आई वुड मिस नॉइजी इंडिया ट्रैफिक अ लॉट, बट ऑनेस्टली समटाइम्स ऑकलैंड फील टू क्वाइट। Back home there was also always chaos, family talking, street food smells like everywhere. Anjali कहती है, the thing I miss most is going to the local market with my nani, fresh vegetables, bargaining, random gossips, grocery shopping here is just not the same vibe. And again, विकास का मैसेज है, आई मिस वॉचिंग क्रिकेट विद माई अंकल इन फीजी, वन टाइनी टीवी, एवरीबडी शाउटिंग डिफरेंट ओपिनियन, समवन ऑलवेज मेकिंग टी, हियर आई वॉच मैचेस अलोन समटाइम्स एंड समटाइम्स विद माई फ्रेंड्स। वो बात तो है लाइक फैमिली में, बट मेरे को मतलब हाँ ऑब्वियसली मैं इतना, मेरे घर में तो सिर्फ पापा ही थे जो एक टाइम तक क्रिकेट फैन थे, बट उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दिया था। मीना जो कि आखिरी मैसेज है, वो कहती है, व्हेन आई फील होमसिक आई प्ले ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स व्हाइल क्लीनिंग द हाउस फॉर अ फ्यू मिनट्स, इट फील्स लाइक आई एम बैक इन इंडिया हेल्पिंग माय मम बिफोर गेस्ट अराइव।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो,
1: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: साइड सिर्फ रोवा पर।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
4: You're supporting the kids from the sports sideline, but the smell of a Barbie is clouding your mind. And when you see the sauce, you have to call time. It's what you should need.
5: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at ikea.co.nz.
6: IKEA.
7: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
8: Lunchbox with Ketan.
9: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
8: Hum. ऑफिस शाउट आउट।
10: चलिए बात करते हैं ऑफिस शाउट आउट की। आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं 5599 पे रिगार्डिंग ऑफिस शाउट आउट, यानी कि अभी हाल फिलहाल आप क्या, वेदर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, वेदर यू आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस और यू आर ऑन लीव, और अगर आप लंच कर रहे हैं तो क्या खा रहे हैं ये भी बताइए, अगर ऑर्डर किया है तो कहाँ से ऑर्डर किया है। डू लेट मी नो ऑन 5599 पे। जी हाँ, आई वुड लव टू हियर दैट। बट मीनवाइल लेट्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ अवर वेरी ओन विजय। जी हाँ, ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा वाले विजय, जी हाँ उनका बर्थडे है आज। सो आप मैसेजेस भेज सकते हैं, हमें ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं 5599 पे, उन्हें विश कर सकते हैं आज इतने खूबसूरत दिन के दिन, या और साथ में आप ऑफकोर्स कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगर वो गाना मिल सके एंड देन वी पुट दैट थिंग फॉर विजय ओवर हियर। वेल यस, मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। रिया कहती हैं, वेट लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट, नहीं सॉरी, अमन कहते हैं, हाय केतन, आई स्किप्ड लंच टुडे, टू मच वर्कलोड इन द ऑफिस, जस्ट सर्वाइविंग ऑन कॉफी सिंस मॉर्निंग। यार हैट्स ऑफ यार, मतलब खाना खाने का टाइम नहीं है, बट यू आर लिसनिंग टू मी एंड रिप्लाइंग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट खाना खा लीजिए यार, खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। आई नो वर्क का प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता है, बट खाना ऐसी चीज़ है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट दिस इज फॉर एवरी वन, यहाँ पर आप मिस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद माय नानी वोक अप एट 5 AM एंड पैक्ड मेथी थेपला फॉर मी, बेस्ट लंच इन द होल स्कूल ऑनेस्टली। रिया मैसेज करिए, आप स्कूल में फोन लेके गए, दैट इज स्ट्रेंज, मुझे नहीं पता था यहाँ पे अलाउड होता है क्या, मुझे मतलब स्कूल में फोन ले जाना फॉर बच्चे, ये 14 साल के, इन्होंने ये भी लिखा है भाई। ट्रबल में नहीं आ जाए। केविन कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम टुडे एंड आई एक्सीडेंटली बर्न माई पास्ता वाइल ऑन जूम मीटिंग, एंडेड अप ऑर्डरिंग मैकडोनल्ड्स इंस्टेड। कोई बात नहीं अमन भाई, केविन भाई, ये होता ही है, मेरे साथ भी कभी कभी होता ही है, बट मैं ऑर्डर नहीं करता हूँ, मैं कुछ और ही बना लेता हूँ, बट थैंक यू फॉर द मैसेज। जॉन कहते हैं, पापागुरा से बुला, सिटिंग इन द स्मोको रूम राइट नाउ विथ ऑल द बॉयज ईटिंग फीजी स्टाइल करी एंड रोटी फ्रॉम होम, रेडियो ब्लास्टिंग लाउड टू, अरे क्या बात है, थैंक यू जॉन, यू हैव अ वंडरफुल करी, लेट मी नो व्हाट करी आर यू ईटिंग राइट नाउ। एंड उसके बाद आखिरी मैसेज है संदीप भाई, संदीप भाई कहते हैं ऑफिस लंच टुडे इज जस्ट बनाना एंड प्रोटीन शेक बिकॉज जिम ट्रेनर इज वॉचिंग मी, इज इट को वर्कर और व्हाट, बट थैंक यू यार संदीप भाई, एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने भी मैसेज किया है, मुझे कॉल भी आए हैं, आई एम सो सॉरी मैंने मिस कर दी कॉल व्हाइल रीडिंग, बट यू कैन कॉल मी अगेन नाउ या 0800 004 866 पे।
7: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: स्वागत करते हैं आपके इस आज के इस लंच वॉक शो में, जिसमें मैं हूं यहां पे केतन और मैं हूं 3 बजे तक. वैसे काफी कुछ बातें यहां पे अमेजिंग चीजें हुई ओवर द वीकेंड. आप मुझे बताइए आपने मदर्स डे में क्या स्पेशल किया है. 0800-004-866 इस नंबर जहां मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं 5599 पे. वेल यस, एक न्यूज जो है मीनवाइल मैं ये बताता हूँ. एक न्यूज है जो काफी वायरल हो रही है, वो है कि मैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं क्योंकि मैं उसको पढ़ भी रहा हूं साथ में. डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट वीक ये अनाउंस किया था कि वो एक यूएफओ फाइल जो है वो अनाउंस करेंगे. जी हाँ, कुछ उन्होंने रिलीज की है तो उसके बारे में बात होगी थोड़ी देर में. बट यस, एक अमेरिका के पेंटागन जो है बिल्डिंग है, उन्होंने नए यूएफओ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं जिसमें आसमान में कुछ देखा गया है, अजीब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट और फ्लैशिंग लाइट्स जैसा. रिपोर्ट के मुताबिक कई इंसिडेंट्स अभी भी अनएक्सप्लेन है, लेकिन ऑफिशियल्स ने एलियन होने की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो दी नहीं है. इस खबर ने दुनिया भर में क्यूरोसिटी और डिस्कशन जो है उसको और भी तेजी से बढ़ा दिया है. तो इस बारे में थोड़ा सा मैं रिसर्च करके आप तक न्यूज़ लेके आऊँगा, बट तब तक आप इन्जॉय करिए ये गाना, सुनिए बाय मोहम्मद इरफान एंड अंतरा मित्रा के नाम.

0: चेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे। हम
2: स्वागत करते हैं आपके इस आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, जैसा कि मैंने कहा था कि वो यूएफओ को लेकर क्या न्यूज आई थी बाहर, उस पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दे देते हैं। दुनिया भर में यूएफओ को लेकर काफी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। एक बार फिर सबकी नजरों में आ चुका है जब अमेरिका के पेंटागन ने रिसेंटली कई सीक्रेट यूएफओ फाइल्स पब्लिक की है, जिसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स का जिक्र है कि जो आज तक अनएक्सप्लेन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोलो 11 और अपोलो 17 मून मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने अजीब रोशनी और अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे थे। एक वीडियो में 8-pointer स्टार जैसे मिस्टीरियस चीज आसमान में zigzag मूवमेंट करती नजर आई। पेंटागन ने लगभग 160 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और वीडियोस रिलीज किए हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी तक एलियंस होने का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कई साइटिंग्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। साइंटिस्ट ने ये भी लोगों को कॉशन दिया है कि अगर मिस्टीरियस चीज को एलियन टेक्नोलॉजी समझना क्या वो जरूरी है या नहीं। बट यस, फिलहाल ये यूएफओ फाइल सोशल मीडिया और दुनिया भर में डिस्कशन का बड़ा टॉपिक बना हुआ है, और सवाल वही है, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। वेल, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। 5555 इज द नंबर जहां पे आप मुझे भेजिए टेक्स्ट की डू यू थिंक दैट एलियन रियली एग्जिस्ट। वैसे कहीं पे मैंने सुना है कि वी आर द एलियंस, कोई कहते हैं कि वी आर द एलियंस एंड दिस अर्थ डजंट बिलोंग टू अस, ये चीज भी किसी ने कही है। मैं उस बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। बट यस, 5555 इज द नंबर जहां पे आप मुझे भेजिए अपने विचार।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
4: हम 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18
6: ऑकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
7: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now, but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
8: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं. तो याद रखिए प्लास्टिक 125 को. रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें. सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है. सर्च करें Auckland Council Recyclable Items. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
9: Lunchbox with Ketan.
10: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
11: चटनी शॉट्स.
12: वेल, चटनी शॉट्स में आपका स्वागत है, जहां पे हम लेटेस्ट न्यूज पढ़ते हैं. पर अभी के लिए जो लेटेस्ट खबर है वो बता देता हूं. लेकिन उससे पहले मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं रिगार्डिंग सम यूएफओ फाइल्स. उसके बारे में भी आपसे थोड़ी देर में जानकारी होगी. बट अभी की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है. करीब 100 साल पुराना एक फैमिली हेयरलूम, एक गोल्ड लॉकेट जो सुपरमार्केट में खो गया था, अब फाइनली उसके असली ओनर को वापस मिल चुका है. ये न्यूज काफी वायरल हो रही थी दैट समवन हैज लॉस्ट हिज नेकलेस लॉकेट एक्चुअली, जो फाइनली आ चुका है, मिल चुका है, विच इज ग्रेट यार. ये सेंटिमेंटल लॉकेट पुकेकोहे साउथ बुलमर्थ में मिला, जो एक ऑनेस्ट सिटीजन ने इसे पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया. पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की और लगभग 2 महीने बाद फैमिली ने उस लॉकेट को पहचान लिया. वेल, इस लॉकेट के अंदर फैमिली के पुराने फोटोग्राफ्स थे जो इसे और भी इमोशनल और स्पेशल बना रहे थे. ओनर मेरिल ब्रेट ने कहा है कि जब उन्हें पता चला कि लॉकेट खो गया तो वो बहुत अपसेट हो गई, लेकिन अब इसके मिलने से पूरी फैमिली जो है काफ़ी खुश है. पुलिस ने भी इस अननोन पर्सन का शुक्रिया अदा किया है जिसने ऑनेस्टी दिखाते हुए ये कीमती याद वापस पहुंचाने में मदद की. वेल, ये जो लोकल सुपरमार्केट था वहाँ पे मिला है. बट यस, कभी सोचा है कभी कभी यू नो छोटी छोटी मदद जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है, इंस्टेड ऑफ यू नो थिंकिंग कि भाई मैं कैसे किसी की मदद करूँ. आपके जाने अनजाने में काफ़ी कुछ आप ऐसा कर जाते हैं जो सचमुच सामने वाले फैमिलीज के लिए काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है कभी कभी.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल 18 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है एंड 13 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। 30% चांस है बारिश के, लेकिन आज का सनसेट होगा 5:27 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आपका फिर से स्वागत।

0: करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है और यस 12 बजे से मैं यहाँ पे हूँ और 3 बजे तक यहाँ पे रहूंगा। अभी शुरुआत करेंगे ऐसे गाने से, रानी तू मेरी राजा, मेघा सिंह और भव्या पंडित की आवाज में। यो हनी सिंह का भी उसमें योगदान है, वो सुनिए आप। लेकिन यस आपके लिए लंच टाइम रेंट लाइन की बातें लेके आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को मुझे मैसेजेस भेजने पड़ेंगे 5599 पे। जी हाँ, आप मुझे मैसेज भेजिए, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू मोर मैसेजेस कि आपने अपना मदर्स डे जो है कैसे सेलिब्रेट किया है। डू लेट मी नो, मतलब आपने कैसे किया, या फिर आपने बच्चों ने, आपके बच्चों ने कैसे सेलिब्रेट करवाया आपको। डू लेट मी नो 5599 पे आप मुझे कर सकते हैं। कॉल भी करेंगे थोड़ी देर में 0800-004-866 पहली, लेकिन तब तक के लिए एंजॉय करिए गाना रानी तू मैं राजा।
1: बचाओ क्या,

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, से बात करते हैं लंच टाइम रेंट लाइन की थोड़ी देर में. आप जल्दी से अपना फोन उठाइए और मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए रिगार्डिंग वो कौन सी ऐसी चीज है जो सचमुच आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, बट यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विद दैट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बताते हैं कि मीटिंग शुरू लंच कर रहे ही होते हैं, सडनली देन बॉस इन्वाइट्स यू फॉर क्विक मीटिंग. तो वो एक एग्जांपल हो गया. दूसरा हो गया कुकिंग वाला हो गया. सो ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो हैं आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे अपने नाम के साथ. एंड आई वुड लव टू हैव दोज. यहाँ पे मैं पढ़ूंगा जितना हो सके उतना टाइम को कंसर्न देख के. बट यस, डू लेट मी नो. आप 5599 पे मुझे भेज सकते हैं. ओह थैंक यू यार. लोगों को एक्चुअली पता है कि मैं अभी थोड़ी देर में क्या करना. लोगों ने ऑलरेडी भेजना शुरू कर दिया है. बट यस, आप मुझे 5599 पे भेजते रहिए मैसेजेस अपने नाम के साथ एंड मैं थोड़ी देर में उन्हें पढ़ूंगा यहाँ पे.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
2: इसके पीछे
3: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
6: है. बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
5: मेरे को समझ में नहीं. एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है. एक दिन और इन्होंने
6: किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
7: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून.
3: वीकडेज 6 to 10 AM.
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
10: Jen didn't think she needed a DVS system.
11: Oh, I've got insulation in that.
10: But Jen had forgotten about the mold on her walls and curtains.
11: Ah, yeah.
10: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mold and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
12: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.in से.
13: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with great value to prepare your site and keep jobs moving no matter the weather. From lighting, site safety and security to drainage and moisture control, we've got you covered. Get set for winter with Bunnings Trade.
14: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना. बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz. फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 0275146077.
15: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
16: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
15: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
17: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
3: लंच बॉक्स विद केतन.
18: मुझे पसंद है लड़का.
3: हम लंच टाइम रेंट लाइन.
0: वेलकम बैक टू लंच टाइम रेंट लाइन सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं. वेल, पहला मैसेज है राज भाई का. वो कहते हैं हाय केतन, दिस इज राज फ्रॉम मनरेवा. कैन समवन एक्सप्लेन मी व्हाई ऑकलैंड ड्राइवर्स इंडिकेट आफ्टर टर्निंग? Bro, at that point, it's historical information. प्रिया कहती है पापा टोटो से कोरिएंडर प्राइसेस आर सो हाई नाउ माय मम कीप्स इट इन द फ्रिज लाइक ज्वेलरी. ये भी सही है. एक्चुअली यू नो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है दैट वी आर कीपिंग फ्रिज एज अ लॉकर. खाना इतना महंगा होता जा रहा है. उसके बाद सुनील कहते हैं बुला एवरी फीजी इंडियन अंकल एट बारबेक्यू एक्ट लाइक ही इज होस्टिंग मास्टर शेफ पैसिफिक एडिशन. वेल कौन यहाँ पे रिलेट करेगा बताइए मुझे. 5599 पे भेज सकते हैं मुझे. अंजलि कहती है हेंडरसन से व्हाई डू इंडियन पेरेंट्स सेंड हाउस लिस्टिंग एवरी डे लाइक वी सीक्रेटली ओन 2 million समवेयर. मतलब ये खरीदना हो सकता है आपके पेरेंट्स को यू नो पता हो कि आप खरीदना चाहते हो तो वो आपको भेजते जा रहे हैं. अब एक होता ना कि लाइक यू कैन प्रैक्टिकली काउंट वेदर यू हैव दैट मच ऑफ मनी और नॉट बट मे बी योर पेरेंट्स नॉट जो इंडिया में रहते हैं या फिर आपकी कंट्री में जहाँ से भी आप हैं वहाँ पे रहते हो मे बी दे वोंट बी एबल टू कैलकुलेट हाउ मच यू मेकिंग एंड हाउ मच आर देयर टू स्पेंड. राकेश कहते हैं ओटाओ से ब्रो पेट्रोल प्राइसेस आर डिसरेस्पेक्टफुल नाउ आई फिल्ड हाफ टैंक एंड हैड टू इमोशनली रिकवर आफ्टरवर्ड्स. ये सही था. नाइस नाइस नाइस. निशा कहती है फ्लैट बुश से इंडियन मॉम्स हैविंग मैजिकल टाइमिंग द सेकेंड यू सिट टू ईट 4 drinks. बेटा व्हाट आर यू डूइंग. बेटा आप क्या कर रहे हो. ये भी है, ये भी पॉइंट तो है. आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं लंच टाइम रेड लाइन में. विकास कहते हैं फ्लैटमेट सेइंग्स आई विल क्लीन. ओप सॉरी ये तो गलती से कुछ और ही दब गया मेरे से. बट यस विकास कहते हैं फ्लैटमेट सेइंग आई विल क्लीन टुमारो शुड बी स्टडीड बाय साइंटिस्ट बिकॉज टुमारो नेवर कम्स. ये सिर्फ फ्लैटमेट्स नहीं, एक्चुअली ये सभी के साथ होता है. इनफैक्ट आपके को वर्कर्स या फिर आपके यू नो पार्टनर या फिर कुछ भी हो यू नो और मैं करता हूँ ना कल करूँगा कल पक्का करूँगा बट वो कल कभी आता नहीं है. बट यस थैंक यू यार, थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए. ऐसे ही आप बस बने रहिए, सुनते रहिए. एक गाना जो है बहुत ही बढ़िया है, उसे आप सुनिए और एंजॉय करिए.
3: लंच के मंच पे Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: स्वागत करता हूं आज के इस लंच बॉक्स में फिर से। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे कम्युनिटी इवेंट्स के बारे में। भोजन मेला होने जा रहा है फूड कार्निवल श्री वेंकटेश्वर देवास्थनम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से संडे 17 मई इस संडे को 17 मई को शाम एक्चुअली सुबह शाम नहीं सुबह के 11 से दिन के या शाम के 4 बजे कह सकते हैं आप। सो 11 से 4 बजे के बीच है। मेन उनका जो मकसद है इसके पीछे वो है टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट। लोकेशन है 378 अरारिमू रोड रमारामा साउथ ऑकलैंड। वन टेम्पल वन कम्युनिटी इटर्नल ब्लेसिंग ये लेके आ रहे हैं वहाँ पे। फ्री एंट्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी क्लोथिंग एंड अदर स्टॉल्स भी होने वाला है। हीना आर्टिस्ट भी होंगे वहाँ पे, फेस पेंटिंग, बाउंसिंग कासल भी होने वाला है वहाँ पे साइट विजिट पे। जी हाँ, अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप या स्टॉल्स लगवाना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शिवानी अरोरा को 0218700012 या फिर शांति रवि को 0212946394 पे। 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, एन इवनिंग ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉग्निशन लेट्स वी फॉरगेट द सेक्रीफाइस ऑफ आवर पायनियर जनरेशन। सैटरडे 16 मई को ये होने वाला है मलायोला कम्युनिटी सेंटर में होने जा रहा है 16 वाओ कौरी प्लेस मैंगरे में ऑकलैंड शाम के 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच। दरवाजे जो हैं आप सभी के लिए 4 बजे खुल जाएंगे एंड द पर्पस फॉर दिस इज नेटवर्किंग टी एंड स्नैक्स। वेल गेस उसके बाद और भी इवेंट्स है जैसे कि 23 मई को होने वाला है नेटबॉल मनुरेवा पे वाइब मिक्स इवेंट आप सभी के लिए लेके आए हैं ग्रैंड मस्ती नाइट फीचरिंग रिनोन्ड आरजेस फ्रॉम फिजी। क्या बात है ये होने जा रहा है। जय भैया जी और रॉडी नमन होने वाले हैं वहाँ पे, डांसिंग लेजेंड भी इसमें काफ़ी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सो यस इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग शो। डेट याद रखिए 23 ऑफ मई नेटबॉल मनरेवा में। उसके बाद और भी चीजें हो रही यहाँ पे जैसे कि टिकट भी आप एक्चुअली टिकट भी खरीद सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। हंटर फूड टाउन पापाटोटे जेस फ्रेश मार्ट पापाटोटे गेट फ्रेश सुपरमार्केट एंड देन केस हेयर एंड ब्यूटी सलून विकेट चिकन जेंडर हेयर एंड ब्यूटी सलून एंड ड्राइव हरी। सो यस आप जितना जल्दी हो सके टिकट खरीद लीजिए बिफोर इट गेट्स सोल्ड आउट।

0: Well, एक लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ मैं रोमांस ओनली ऑनलाइन रोमांस स्कैम्स का एक शॉकिंग केस सामने आया है न्यूजीलैंड के डनेडिन से। जी हाँ, एक लेडी ने पिछले 5 सालों में लगभग 800,000 डॉलर्स जो है, यानी कि काफी पैसा हो गया ये तो, ये एक फेक अमेरिकन जनरल को भेज दिया। पुलिस के मुताबिक स्कैमर ने खुद को यूएस मिलिट्री ऑफिसर बताया और इमोशनल रिलेशनशिप बनाकर विक्टिम का ट्रस्ट भी जीता। इस दौरान महिला ने बैंक ट्रांसफर्स, बिटकॉइन और गिफ्ट वाउचर्स के जरिए बार बार पैसे भेजे। जब वुमेन पुलिस स्टेशन एडवाइस लेने पहुंची तब अथॉरिटी को शक हुआ कि डॉक्यूमेंट्स और फोटोज तो फेक हैं और इमेजेस डिजिटली ऑल्टर्ड हो सकते हैं। पुलिस अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सो लेट्स सी क्या खबर आती है अगली, कहां तक हमारा काम पहुंचती है पुलिस वाले। बट यस, ऑफिशियल ने लोगों को वार्निंग भी दी है कि ऑनलाइन किसी भी अननोन पर्सन पर जल्दी भरोसा ना करें, स्पेशली जब वो पैसे मांगे तो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोमांस स्कैम्स दुनिया भर में तेजी से बढ़ते रहे हैं और स्कैमर्स इमोशनली मैनिपुलेशन का यूज करते आ रहे हैं। वेल, लोनलीनेस जो है ऐसी चीज है जो सचमुच बहुत कुछ यू नो एडवाइस करती है बाकी लोगों को। बट यस, आप इस चीज़ से दूर रहें, ऑनलाइन इतना आसानी से भरोसा ना करें एंड मेक श्योर करें कि आप यू नो अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो प्लीज़ कंसल्ट विद समवन यू ट्रस्ट अ लॉट बिफोर यू टेक एनी डिसीजन।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
4: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
5: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
6: It's cold outside and the couch is on your mind. But you can't relax till you leave hunger behind. Hot pumpkin soup will really help you unwind. It's what you should need.
3: Lunchbox with Ketan.
7: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे?
3: हम। Lunch के मंच पे।
0: बॉलीवुड से खबर लेके आया हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने फिल्म इंडस्ट्री में जेंडर इनइक्वालिटी और पैट्रियार्की को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है एक रीसेंट इंटरव्यू में, जहाँ पे कृति ने कहा है कि बॉलीवुड में आज भी मेल और फीमेल एक्टर्स के बीच ट्रीटमेंट में काफी डिफरेंस दिखाई देता है। कृति ने एक इंसिडेंट में याद करते हुए कहा है कि फिल्म के सेट पर उनकी मेल को स्टार को उनसे बेटर कार दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि पैट्रियार्की अभी भी इंडस्ट्री में काफी इनग्रेन्ड है। एक्ट्रेस ने पे गैप पर भी कंसर्न बताया है कि बजट टाइट होते हैं तब सबसे पहले फीमेल्स लीड की फीस नेगोशिएट की जाती है, जबकि मेल एक्टर्स जो होते हैं उनका बजट का बहुत ही बड़ा हिस्सा लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक?

किरा नमस्ते, आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, बने रहिए, 3 बजे तक मैं यहां पे हूं। बहुत सारी बातें करने वाला है इस आर में। एक्चुअली आईपीएल की अपडेट्स भी दूंगा एंड ऑफ कोर्स टेक की बातें भी। कुछ नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आई है उनके बारे में बात होगी, तो आपको बस बने रहना है, सुनते रहना है। सैंडी विल बी जॉइनिंग इन द कॉफी ब्रेक आफ्टर 3 एंड देन उनका साथ देंगे ड्राइव शो में रुजबे। But yes, just in case अगर आपने मिस किया है कोड, तो let me tell you again, the code was a destination for Fly Frenzy। जी हाँ, आप हमारे रोआ के जरिए जीत सकते हैं, ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं एक रिटर्न फ्लाइट टिकट टू फीजी। जी हाँ, उसके कोड्स जो है हम 3 से 4 टाइम बताते हैं आपको अलग अलग हिसाब से। सुबह 8 बजे के बाद आपको सुनने को मिलता है, कभी भी 11 बजे बाद आप कभी भी सुनेंगे, 1 बजे बाद भी आप कभी भी सुन सकते हैं और 5 बजे बाद भी आप कभी भी सुन सकते हैं। सो यस, आपको बने रहना है, थोड़ा पेशेंस रखना है एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ जुड़े रहना है। सो यस, आप जाइए रोआ पे और सबमिट कर दीजिए ये पार्ट। बट अभी के लिए सूट तेरा लाल रंगदा, सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में एंजॉय करिए गाना। बचाओ क्या?

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। एक मिस्टीरियस और डेंजरस वायरस आउटब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पैसेंजर को आखिरकार एक क्रूज शिप से इवैक्यूएट किया जा रहा है। MV हॉन्डियस नाम की ये लग्जरी क्रूज शिप पर हेंटा वायरस की केसेस जो है वो सामने आए थे, जिसमें 3 लोगों की डेथ भी हो चुकी है और कई पैसेंजर्स इन्फेक्टेड या अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखे गए हैं। वैसे ये शिप साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका टूर पर थी जब पैसेंजर्स में सीवियर इलनेस के सिम्टम्स देखने को मिले। वायरस के फैलने के बाद शिप को टेनेराइफ के पास रोक दिया गया और दुनिया भर की हेल्थ ऑफिशियल्स ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू कर दी। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियंस और एक न्यूजीलैंडर को लेने के लिए स्पेशल वैक्यूएशन फ्लाइट भेजी गई और ये लास्ट ग्रुप है जो शिप से निकाला जा रहा है। अथॉरिटीज ने स्ट्रिक्ट मेडिकल मॉनिटरिंग और क्वारंटीन अरेंजमेंट भी किए हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हेंटा वायरस कोविड जैसा पेंडेमिक नहीं है, लेकिन ये काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। वायरस यूजुअली रोडेंट्स के कॉन्टैक्ट में फैलता है और सिम्टम्स में फीवर, ब्रीथिंग इश्यूज और सीवियर वीकनेस शामिल हो सकते हैं। सो अगर होपफुली ये यहाँ न्यूजीलैंड में ना आए सबसे बेस्ट है, और मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में ज़्यादा ना फैलें वही सबसे बेस्ट है। बट यस, यू नेवर नो, अगर आपको इन सिम्टम्स में से कुछ भी होता है, बेटर यू चेक आउट योर डॉक्टर। आप डॉक्टर को जाके देखें और टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: You get money, get cash. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
4: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
3: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
4: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
3: Elite Bathroomware.
4: A reflection of you.
5: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's apply।

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay.
3: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, चलिए बात करते हैं रोआ ऐप की. रोआ ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन ऐप पे. कंप्लीटली फ्री है. जी हाँ, उसको सिर्फ सर्च करोगे तो भी ना के बराबर ही डेटा यूज होता है. जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था हम सभी ने कि आप एक स्टोरी अपलोड करते हैं ऑनलाइन, वो ज्यादा कंज्यूम करता है कंपेयर टू व्हाट यू कैन लिसन टू. फॉर एग्जांपल, एक 20 सेकंड का स्टोरी आप डालोगे वो ज्यादा आपका डेटा यूज करेगा, बट उसके कंपेयर में सेम डेटा आप यूज कर सकते हैं रोआ के करीब एक घंटे. जी हाँ, एक घंटे तक रोआ सुन सकते हो इज इक्वल टू रोआ अपने सोशल मीडिया पे जो स्टोरी डाल रहे हो उसके कंपेयर में. बट यस, लेट्स कम बैक. आप डाउनलोड कर लीजिए फोन ऐप पे अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, कंप्लीटली फ्री है. उसके बाद हमें आप सुन सकते हैं हर टाइम हर पल, और साथ में आप चर्डल गेम भी खेल सकते हैं. चर्डल गेम एक बहुत ही बड़ा गेम है जहां पे अगर आप इफ यू लव टू प्ले एनी काइंड ऑफ वर्ड्स पजल्स, तो ये गेम आप सभी के लिए, स्पेशली इफ यू आर इन न्यूजीलैंड एंड ऑफकोर्स इफ यू नो दैट यू आर कीवी वर्ड विजर्ड, तो ये गेम आपके लिए है. और अगर नहीं भी हो अपने आप को नहीं भी मानते, फिर भी आप ट्राई करो, बिकॉज इतना मुश्किल नहीं है. एंड डेफिनेटली उसके जो जवाब है वो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुने होंगे. सो यस, हर दिन आप $100 जीत सकते हैं. हमारे पास 7,000 तक के हैं, और काफी हमारे जो लिसनर हैं हम के उन्होंने जीते हैं. जी हाँ, तो आप भी अपना लक ट्राई करिए. एंड ऑफ कोर्स विजेता बनिए. पॉडकास्ट वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, काफी म्यूजिक स्टेशन है वो भी हम करते हैं. सो यस, ये सारी चीजें आप सुन सकते हैं हमारे उस पर.

चलिए बात करते हैं आईपीएल की। कल के कुछ मैचेस की बात करते हैं। कल मैच हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जी हाँ वर्सेस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने आराम से मैच जीत लिया है 5 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स। बट यस, ये तो क्लोज मैच था ही, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस का, जहां पे आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे। और उससे पहले एक्चुअली वैसे मैंने कभी भुवनेश्वर जो कि काफी कमाल स्विंग करते हैं बॉलिंग में, बट उनके बैट से एक छक्का लगा, उस वजह से उसके बाद में सिर्फ 2 रन की कगार थी लास्ट बॉल पे, और मैच रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ में आ गया है। यानी कि अगर आप पॉइंट टेबल की भी अगर बात करें तो रॉयल चैलेंजर कल के मैच के बाद सबसे टॉप पे आ चुकी है। जी हाँ, यानी कि उन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस ही हारे हैं, 7 जीते हैं। बट यस, दूसरी तरफ देखें तो SRH इज डाउन टू नंबर 2nd, गुजरात टाइटन ऑन 3rd, पंजाब ऑन 4th, चेन्नई सुपर किंग ऑन 5th, राजस्थान ऑन 6th। सो यस, ये जो अंटिल राजस्थान जो है काफी क्लोज होने वाला, यानी कि अभी भी नहीं कह सकते कि ये जाएगी या नहीं। बट अगर दूसरी तरफ बात करें तो LSG इज ऑलमोस्ट आउट, मुंबई इंडियंस इज ऑलमोस्ट आउट, दिल्ली कैपिटल इज स्लाइटली मेबी 1 or 2 मैचेस ऑप्शन रहेंगे, और KKR के भी सेम कंडीशन है। बट लेट्स सी यार, KKR ने एक्चुअली बैक टू बैक मैचेस जीते अभी 4 लगातार, तो यू नेवर नो यार क्या रिजल्ट रहता है। बट आई एम वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यार।

0: वेल यस, और भी बातें करेंगे, बट अभी की लेटेस्ट खबर पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। ऑकलैंड सिबरी में आज दिन में करीबन एक बजे बाद ड्रामेटिक सीन देखने को मिला जब आर्म्ड पुलिस ने एक बिजी इंटरसेक्शन को घेर लिया। नेल्सन स्ट्रीट और विक्टोरिया स्ट्रीट वेस्ट के पास पुलिस के कई गाड़ी जो है, इंक्लूडिंग डॉग स्क्वाड, एक सस्पिशियस व्हीकल को रोकने के लिए पहुंची। आई विटनेस वीडियोस में ऑफिसर्स को दो आदमियों को गाड़ी से बाहर निकालते और उन्हें अरेस्ट करते नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन में लगभग 10 से ज्यादा पुलिस व्हीकल्स इन्वॉल्व थी, जिस वजह से एरिया में कुछ देर के लिए ट्रैफिक और पब्लिक मूवमेंट भी देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने इंसिडेंट की एग्जैक्ट वजह या चार्जेस के बारे में डिटेल तो वैसे नहीं दी है, लेकिन अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि दोनों सस्पेक्ट्स को कस्टडी में ले लिया गया है। ऑकलैंड रेसिडेंट्स को अपील की गई है कि ऑफिशियल्स अपडेट्स का इंतजार करें और इमरजेंसी ऑपरेशंस के दौरान सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करें। तो ये तो थी लेटेस्ट खबर, बट यस, आपने थोड़ी देर पहले बहुत ही प्यारा गाना सुना था जो कि खुद विजय जी ने लिखा है, हमारे यस बर्थडे बॉय विजय वर्मा, ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा वाले विजय, उन्होंने गाना लिखा था राखी की रू। ये एक जगह है मेरे ख्याल से फीजी में, उस पे उन्होंने ये गाना लिखा है, बहुत ही प्यारा और कंपोज, देखो एज यू ऑल नो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कंपोजिशन भी की है। सो यस, वो गाना फिर से सुनने के लिए डोंट गो एनीवेयर, थोड़ी देर में आप फिर से सुनेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं इस महीने, यानी कि मई का जो महीना है वो हम पूरा न्यूछावर करते हैं, डेडिकेट करते हैं हमारे लोकल आर्टिस्ट को। जी हाँ, तो उनके गाने सुनने और उन्हें वोट भी कर सकते हैं। आप कैसे वोट कर सकते हैं, MM लिखे और 5599 में भेज दीजिए ताकि आप तक डिटेल्स भी पहुंच जाए। और आपको ये भी पता होगा कि जो टॉप आर्टिस्ट होंगे, जो टॉप फॉलोअर्स होंगे, एज एन जैसे कि फॉर एग्जांपल विजय ने आज जो वीडियो जो ऑडियो हमने यहाँ पे चलाया है, तो वो कोलैबोरेशन भी करेंगे हमारे साथ, और ऑफकोर्स उसके साथ ही उनका जो टोटल लाइक्स होगा, टोटल शेयर्स होंगे ऑन एयर एंड ऑफकोर्स ऑन सोशल मीडिया, तो वो सब कंबाइंड करके उन्हें मौका मिल सकता है टू बी फीचर्ड ऑन द रो ऐप। और वैसे ही आप भी मौका अवेल कर सकते हैं। वॉट यू कैन डू एज यू जस्ट सिंपली सेंड योर बेस्ट ऑडियो ट्रैक्स, अगर आप सिंगर हैं या फिर आप खुद म्यूजिशियन हैं और गाना बनाते हैं तो आप हमें भेज दीजिए buzz@humfm.com पर, ताकि आप यहाँ पे आपके गाने हम शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पे आप चला सकें। एंड साथ में बायो लिखना मत भूलना, सो एटलीस्ट हमारे जो लिसनर है वो जाने कि आज के जो लोकल आर्टिस्ट है वो कौन है।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल, और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
8: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल, आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक, साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स, सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल, स्टोरेट रोड, माउंट रॉस्कल। विजिट टाइगर एट soho.co.nz।
9: Say no to windows crying condensation. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without DVS home ventilation. Call 0800-DVS-DVS.
10: अगर आपको कभी भी लगे कि हमने ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया है तो आप इसकी शिकायत ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से कर सकते हैं, और जानकारी के लिए bsi.govt.nz पर लॉग ऑन करें।
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। लंच बॉक्स विद केतन।
13: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
6: इसके पीछे
1: टेक टॉक।
0: वेलकम वेलकम, शुक्रिया, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। टेक टॉक के इस सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की जो रिसेंटली आप सभी के लिए आ चुकी है मार्केट में, टू अवेल एंड टू परचेज। ये पता नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत पहले ही देख ली थी, बट ऑब्वियसली पब्लिक के लिए ये बाहर नहीं आई थी। और ये फीचर है 2-in-1 टीवी का। यानी कि इमेजिन करिए, एक बहुत ही बड़ा आपके घर में लिविंग एरिया है और सेंटर में एक टीवी है और उस तरफ भी पब्लिक बैठी है, इस तरफ भी पब्लिक बैठी है, बट देन यू बोथ वॉन्ट टू वॉच सेपरेटली। तो बेसिकली उस टीवी के दोनों तरफ चैनल चलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, अब एक फ्लिप वाला फोन हो गया, ऐसा कुछ हो गया जिसके आगे भी स्क्रीन है और पीछे भी स्क्रीन है। तो उस तरह की वो टीवी है, यानी कि दो अलग अलग सेम टाइम पे अलग अलग मूवी चल सकती है, अलग अलग शोज चल सकते हैं और उसके लिसनर भी सun सकते हैं अलग अलग, आई मीन व्यूअर्स। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई जब साउंड आएगा वो कैसा होगा? बट देन येस ऑफकोर्स, अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ देखना चाहते हैं, दो अलग अलग शोज, तो उसके लिए आपको हेडफोन पहनना पड़ेगा सो दैट ये डिस्टर्बेंस ना हो दूसरे वाले को। बट अमेजिंग राइट, आपके घर में मान लो हस्बैंड वाइफ को दो अलग अलग शोज देखने, एक को क्रिकेट मैच देखना है, एक को कुछ और देखना है, देन ऑफकोर्स यू बोथ कैन वॉच इट एट द सेम टाइम। बट ऑफकोर्स अगल बगल में नहीं, आपको आगे फ्रंट पे एकदम अपोजिट बैठना पड़ेगा और बीच में टीवी रखनी पड़ेगी, देन यू कैन एंजॉय। बट मुझे सही लगी यार, मतलब फन है। और अगर इमेजिन करिए, अगर एक वॉल भी आपके दो लिविंग एरिया है और बीच में वॉल है और उस वॉल पे ये टीवी फिट कर दी, सो लिविंग एरिया के उस तरफ आप अपने बच्चों को रख सकते हो जो अपने बच्चों के कार्टून देख रहे हैं, और लिविंग एरिया के इस तरफ आप खुद देख सकते हो अपने पार्टनर के साथ। अमेजिंग राइट, अमेजिंग टेक्नोलॉजी राइट। वेल यस, आप मुझे टेक्स्ट करके बताइए वेदर यू लाइक दिस टेक्नोलॉजी और नॉट।
1: दिल

अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है। बिन ट्राई रहे फ्लाई बॉय, हम लाइफ पे हाई बॉय।

अरे गुट में स्वैग है अरे गुट में स्वैग है।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो.
4: आए आए बताओगे यार.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Bedzaras, Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range, starting from 449.

0: Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz. We gotta go to the boat show. Hum.
1: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with Logic.
2: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The government has now inked its deal with Z Energy for nearly 90 million additional litres of fuel. The agreement has been finalised and the diesel will be in the tanks at Marsden Point as early as the end of June. Two people have been arrested after a dramatic fleeing driver incident in Auckland this afternoon. It began when officers tried pulling over a vehicle spotted in Ponsonby with no front number plate. It continued along Great North Road, then through Mount Albert and Grey Lynn, sometimes on the wrong side of the road. It eventually came to a stop on Nelson Street after being spiked. A nurses' organisation survey has revealed staff incidents may be going unaddressed. About a third of respondents within Christchurch's Hill-Morton Hospital admit to feeling unable to raise safety concerns. Delegate Sarah Jane Perkins says there's no anonymous reporting service.
3: If we do make reports through the Safety First program, it's got your name attached to it. So a lot of stuff will be underreported or it won't be reported at all due to fears of repercussions.
2: Meanwhile, Health New Zealand says it's working on robust systems to support open reporting culture. A representative is headed to Hill-Morton this week to discuss the survey results in person. To sport, New Zealand cricket has delayed the new privately backed franchise T20 League. It had been hoped to begin the NZ20 in January. The launch will be in the 2027-28 season. The current Super Smash competition gets one more season. And to the basketball, Game 4 in the best of 7 NBA Conference semifinals wins today for the Minnesota Timberwolves and a series sweeping clincher for the New York Knicks.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.9 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 11 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन है, लेकिन कल बारिश होने के चांसेस है. सनसेट आज का 5:27 पर.
1: The beat of Bollywood.
5: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: तीन बज के दो मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेकर 4 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहेगा. और 4 बजे के बाद ड्राइव शो शुरू हो जाएगा मेरे साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा. सो कैसे हैं आप, आपका वीकेंड कैसा गया? मदर्स डे अगर आपने सेलिब्रेट किया है तो मदर्स डे की सेलिब्रेशन आपकी कैसे गई है वो भी शेयर कर सकते हैं. बाय द वे, जो आज का दिन है ना 11 तारीख, एक तो आज विजय अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक विश नहीं किया है तो सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट डाली है विजय वर्मा की फ़ोटो, बहुत ही ब्राइट सी फ़ोटो हमने पोस्ट की है. वहाँ पे जाके आप विश कर सकते हैं या फिर यहाँ पे 5599 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं. ऑल्सो जो आज का डे है ये है वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे. मतलब मेरे को पता नहीं था कि ईगो को अवेयर करने के लिए भी एक डे बनता है. वो आज का दिन है बेसिकली. पहले बार ये 2018 में ऑब्जर्व किया गया था और आज तक इसको ऑब्जर्व किया जाता है. इनफैक्ट इसको लेके डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि आज के दिन में डिफरेंट वर्कशॉप्स होती है जहाँ पे टॉक की जाती है, मेडिटेशन की जाती है, सेशंस होते हैं, ऑनलाइन कैंपेन्स होती है जहाँ पे बताया जाता है, इनक्रेज किया जाता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में, एम्पथी के बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो आपको ईगो से बचाए. बेसिकली इन चीज़ों के बारे में वर्कशॉप्स होती है. सो यस, ये मैंने एक्चुअली में पहली बार सुना है कि ऐसा कोई डे होता है. एनीवे, और भी बातें और भी कुछ कॉम्पिटिशन्स आपके लिए यहाँ पर रहेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: बज के 12 मिनट हो चुके हैं। मोहित चौहान की आवाज में रॉक स्टार का ये गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे। इस मूवी में सामने पर्दे पे तो रणबीर कपूर थे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स मोहित चौहान ने जिस वे से गाने गाए थे, दोनों ही रॉक स्टार एक्चुअली में लग रहे थे। नाउ अभी काफ़ी ज़्यादा पैनिक काफ़ी पब्लिक में है, जो नया वायरस आया है हंटा वायरस जो है, इसके बारे में लेके। लेकिन इसके बारे में डरने की ज़रूरत है इस वायरस के बारे में या फिर नहीं ज़रूरत है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। जो न्यूज़ आई है वो ये है कि 3 लोग जो है इनकी डेथ हुई है और एटलीस्ट 6 लोग जो है ये इन्फेक्टेड है इस वायरस की वजह से, जो कि क्रूज शिप में था। एंड ये जो शिप थी वो ट्रैवलिंग अराउंड साउथ अमेरिका लास्ट मंथ। सो इस में जो पैसेंजर्स हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है एक आइलैंड में फॉर नाउ, और कंफर्म है कि उसमें एक न्यूजीलैंडर भी है। सो दैट पर्सन, चूँकि न्यूजीलैंडर है, वो इवेंचुअली विल रिटर्न होम। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड है, इन्होंने कंफर्म किया है कि इनके पास असिस्टेंस है, जो ऑन बोर्ड न्यूजीलैंडर है उसको असिस्ट करने के लिए, उनको उसकी देखभाल करने के लिए, एंड कुछ नेसेसरी स्टेप्स जो है, जो प्रिकॉशंस जो है, जब वो वापस न्यूजीलैंड में आए, द पर्सन विल रिटर्न, उस समय पर उसे मे बी पीरियड ऑफ क्वारंटीन में रखा जाएगा। इस वे से जो पॉसिबल प्रिकॉशंस वगैरह जो है वो एक्चुअली में उस पर्सन के लिए लिए जाएंगे। तो इसलिए कोई भी पैनिक होने वाली इसमें चीज़ नहीं है, इनफ टाइम के लिए उसे क्वारंटीन एक्चुअली में किया जाएगा। ये हंटा वायरस है क्या एक्चुअली में? ये स्प्रेड होता है एक रोडेंट ड्रॉपिंग्स जो होती है उसकी कंटेमिनेशन से होती है। सो अपेरेंटली जो एक डच कपल था इस क्रूज शिप में, उनको एक जगह से ऑलरेडी हो रखा था जब वो क्रूज शिप में अभी नहीं गए थे, जिसके कारण उनकी डेथ हुई, एंड देन धीरे धीरे वो बाकियों के बीच में वहाँ पर फैला। लेकिन वो ऐसा नहीं है, कोविड की तरह नहीं है कि जो यू नो ईजिली यहाँ पे एक्चुअल में स्प्रेड हो जाता है। इसके लिए जो कांटेक्ट है वो बहुत ही डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो जिसके कारण ये इजीली स्प्रेड नहीं होता है। कोविड जो था इस मोर लाइक एयरबॉर्न था, लेकिन ये जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी होती है। सो फ्लूड या कोविड-19 की तरह ये एक्चुअली में नहीं है। लेकिन WHO ने इसके बारे में बोला है कि इसके लिए कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यू कई बार वे ऐसे र्यूमर्स आ रही है कि एक और वेव कुछ ऐसी आने वाली है, जैसे कोविड-19 आया था तो मे बी इस साल में ये होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर नाउ किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर कंट्रोल्ड है। कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को हुआ है जिनके सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल में है, और उन सिलेक्टेड लोगों के जो कॉन्टैक्ट में है उनकी सिचुएशन भी फिलहाल कंट्रोल में है, जिसके कारण किसी को डरने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो फार इसके बारे में बोला गया है कि ये ग्लोबल पैंडमिक नहीं बनने वाला है, फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ये ग्लोबल पैंडमिक बने, तो इसलिए किसी को पैनिक भी नहीं होना है।
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

3:22 हो चुके हैं फिलहाल, कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वेल, ट्रेल्स के बारे में बातें करते हैं। तो नॉर्थ ऑफ ऑकलैंड में भी ना बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। नॉर्थ शोर में अगर आप जाते हैं तो स्मिथ्स बुश ये एक्चुअली में है, एंड बहुत ही पुरानी एक्चुअली में बुश एरिया है नॉर्थ शोर में, जहाँ पे सीरीज ऑफ लूप्ड वॉक है जो आप कर सकते हैं। सो वॉकिंग ट्रैक्स बहुत सारे वहाँ पे बने हैं। सो फॉरेस्ट है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज है ये भी आपको दिखाई देते हैं। सो जो ट्रैक्स है वहाँ पे रेस्ड बोर्ड वॉक बने हुए हैं, एंड कुछ जगह पे सीटिंग्स भी है। सो आप वहाँ पे डेफिनेटली जाके वॉक कर सकते हैं। सो अगर आप स्मिथ्स बुश ये एक्चुअली में सर्च करते हैं तो आपको ये ट्रेल कहाँ पे है ये आपको सब कुछ नज़र आएगा। इसको करने के लिए तकरीबन आपको 1 आवर टोटल टाइम लगने वाला है। सो 1 आवर की ये है। सो यस, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर अपने पेट डॉग्स को लेके जाना चाहते हैं, वो लीश पे होने चाहिए ऑल द टाइम्स, एंड डॉग वॉकिंग सेक्शन वहाँ पे है जहाँ पे एक्चुअली अपने डॉग्स को आप लेके जा सकते हैं।

0: 3:33 यहाँ पे हो चुके हैं एंड न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में वैसे आपको बता दें कि अपने लोकल आर्टिस्ट को हम यहाँ पे जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोकल आर्टिस्ट हैं, आपने कोई गाना बनाया है, आपने कोई गाना लिखा है, आपने गाना गाया है और वो आप हम तक यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है। buzz@humfm.com ये हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं। अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है तो हम यहाँ पे उसको ज़रूर प्ले करेंगे। वैसे पूरे मंथ में आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं एंड ऑल्सो आर्टिस्ट को हम चांस दे रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे जाके वहाँ पे वो कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं। एंड अगर आप उनको वोट करते हैं, अगर आप उनको प्यार देते हैं उनके वीडियोज़ पे और यहाँ पे उनके बारे में आप वोट करते हैं, अगर आपको कोई गाना बहुत अच्छा लगता है तो इससे ऐसे उन्हीं का फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज जो टॉप 3 आर्टिस्ट रहेंगे वो रोवा पे भी फीचर होने वाले हैं। सो आपकी बैकिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इससे याद आया, वैसे आज बर्थडे बॉय हमारे लोकल आर्टिस्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट विजय वर्मा। तो ये कई गाने लिखते भी हैं, तो इन्हीं का लिखा हुआ एक्चुअली में आज एक गाना आप सुनने वाले हैं 5 बजे के बाद। सो 5 बजे के बाद जो सेकंड सॉन्ग है वो एक्चुअली में रहने वाला है
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड।
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग

की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

दिलजीत दोसांझ का ये गाना जो कि हर जगह पे ट्रेंड कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे ये गाना एक्चुअली में ट्रेंड कर रहा है। इस गाने की खास बात पता है क्या है? इस गाने में जो R&B फ्लेवर के साथ ही साथ जो देसी बीट्स है, जैसे कि तुम्बी, उसका यूज़ किया गया है, ढोल का यूज़ किया गया है। सो मॉडर्न का जो एक मिक्स है वो एक ट्रेडिशनल के साथ मिक्स जो है, ऊपर से आपको उस दिलजीत की आवाज़, वो मुझे लगता है कि इनऑल इस गाने को बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसे बच्चों के बारे में जो कि इंटरनेशनल अपने ही न्यूज़ बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है बालकनामा। बालक एज इन जैसे कि बच्चे का नाम होता है, बालकनामा। ये दिल्ली बेस्ड एक न्यूज़पेपर है जिसे वहाँ के जो स्ट्रीट एंड वर्किंग किड्स है वो इसको लिखते हैं। सो यंग स्टूडेंट जर्नलिस्ट है बेसिकली, जो कि स्ट्रीट कम्युनिटी से है वहाँ पे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर वहाँ पे निकाला हुआ है जिसका नाम है बालकनामा। एंड बालकनामा में वो चीज़ें होती है जो बड़े न्यूज़पेपर्स को करनी चाहिए, बड़े मीडिया को करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। बिकॉज बालकनामा में ऐसे बच्चों के बारे में इश्यूज़ है, रियल इश्यूज़ है जो बच्चों को वहाँ पे अफेक्ट कर रही है और जिनकी कोई आवाज़ नहीं बन पा रहा है। सो उसमें रेयर फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव्स होते हैं ज़िंदगी के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, एंड यू नो जो वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। सो एक NGO है एक्चुअली में वहाँ पे जो उनको इन सब चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी तो कोई बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं आया है। बट सो इंटरेस्टिंग राइट कि अपनी ही चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कि यहाँ पे जो स्ट्रीट पे जो बच्चे होते हैं, जो स्ट्रगल वो फेस करते हैं, अगर वो दुनिया तक पहुँचाना है तो उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला है जिसका नाम है बालकनामा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। 2, 3, 4.

15 मिनट बाकी है 4:04 यहाँ पे ड्राइव शो शुरू हो जाएगा मेरे साथ, यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा। आपको पता है हांगकांग में वैसे एक रूल बना है, हांगकांग में जो पेट्स है उनका अपना आईडी कार्ड हो सकता है। सो वहाँ पे नॉवल्टी आईडी कार्ड जो है इसे डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे जो कि ह्यूमन के कार्ड्स है ना आईडी कार्ड्स, वहाँ पे हेच के आईडी कार्ड्स ये नाम से जाने जाते हैं, उसकी तरह रिजेंबल करते हैं, जहाँ पे फोटो, नाम और जो ओनर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये रहती है पेट्स की। सो ऑफिशियल गवर्नमेंट आईडी नहीं है, लेकिन you know, जैसे रेजो रजिस्ट्रेशन होती है हर किसी पेट की, ऐसे जो उनकी रेजो होती है वो अब कैरी हो सकती है उनके आईडी कार्ड में। सो बहुत सारे पेट्स वहाँ पे एक्चुअली में अपने आईडी कार्ड अपने साथ अपने गले में लेके घूमते हैं।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: गली गैंग, गली गैंग, वाटा वाटा गैंग।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने,
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 AM.
4: Hum, accurate traffic.
5: Flixieven, you're skipping a bag.
6: A low of 13 tonight with a few showers around Auckland. Out of town on the southern motorway, it's starting to slow down in a couple of patches, particularly around Papakura, 50 minutes out to Drury from the city. And if you're on the northwestern, expect it to be slow from Great North Road to Tartu, 25 out to Massey. Half an hour to the airport, a traffic south from Purnaby Road on the southwestern, on the northern, 45 up to Silverdale.
5: Visit flixibin.co.nz for stockists, TCs and collection areas.
7: Discover the magic at Go Bananas Chaike, where your children will learn in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
8: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: So, jaldi join kare to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. So, deher mat kijiye. Call 0800 46 26 26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: Waitoa Free Range Chicken. Full of natural goodness and deliciousness. For that summer barbecue feeling. All the feels for all the meals. Available in your local supermarket now.
10: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: गुड आफ्टरनून। वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल है। वैसे थोड़ी बहुत शाम को बारिश होने की संभावना है, पैची रेन्स हो सकते हैं, लाइट विंड्स का साथ रहेगा। 527 पे आज होगा सनसेट। ओवरनाइट टेम्परेचर गोइंग टू बी एज लो एज 11 डिग्रीज टुनाइट।
0: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: Hamesha saath dene wale dost.
3: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rizvi.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
1: 4:03, good afternoon on the 11th of May. This is Sandy and Rizvi on the Drive Show.
5: A very very good afternoon, Rizvi. How are you?
1: I'm great, Sandy. How are you doing?
5: Good. तुम्हारा weekend कैसा था?
1: मेरा weekend बढ़िया था, ऐसे
5: chillax
1: weekend। yes.
5: आज भी छुट्टी थी तुम्हारी ना?
1: आज भी मेरी छुट्टी थी। yes, मेरा
5: मतलब
1: तो
5: तुम्हारा ईस्टर वीकेंड टाइप ऑफ वीकेंड था ये, फ्राइडे को छुट्टी।
1: बट यार देखो, मुझे नहीं लगता इसको मैं छुट्टी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मतलब ऑफिस का काम मैं शायद प्रेफर करता हूँ देन हाउस होल्ड वर्क।
5: क्या बात कर रहे हो?
1: नहीं, आई थिंक सो ना। नहीं, आपको नहीं? वो इफ गिवन अ चॉइस, Would you do household work or would you do office work?
5: Household काम मैं रोज ही करती रहती हूँ, उसके लिए मेरे को मतलब
1: चलो यार,
5: क्या चलो भाई, मैं करती हूँ, रोज काम होते हैं मेरे, सुबह से लेकर रात तक के काम होते हैं।
1: Imagine करो आपके काम हो रहे हैं, बट आपके ऑफिस में, आपके घर में आपका कोई मैनेजर जो आपके हर काम को इवेल्युएट कर रहे हैं,
5: तब भी मेरे को पंगा होगा, मेरे को बोलना पड़ेगा ऐसे नहीं चाहिए था ये ये ऐसे कर रहा था, इवेंचुअली मैं खुद ही कर रही हूँगी वो।
1: हाँ, वही मतलब आप ही हो कर रहे हो।
5: हाँ,
1: बट इमेजिन करो आपको कोई मॉनिटर कर रहा है।
5: अब मुझे कोई मॉनिटर कर रहा है? हाँ, वो नहीं चाहिए।
1: एग्जैक्टली ना।
5: या
1: तो वो तो इसलिए
5: मैं मॉनिटर कर सकती हूँ, लेकिन मॉनिटर नहीं हो सकती।
1: एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई, सो अ लॉट ऑफ देम लिसनिंग विल रिलेट टू दिस मे बी, के ऑफिस का काम करना प्रेफरेबल रहता है रादर देन घर के।
5: अच्छा, तुम्हारा आज पूरा मॉनिटर हो रहा था काम? क्या किया, कैसे किया?
1: अभी मॉनिटर होगा।
5: अच्छा, अभी रिपोर्ट आएगी?
1: अभी रिपोर्ट आएगी।
5: और ये तो ज्यादा स्केरी हो गए ना फिर तो। ऑफिस में मैनेजर का काम ज्यादा, मतलब जो मैनेज कर रहा है तुम्हें वो बेटर है।
1: हाँ, वो तो बेस्ट ही है ना।
5: या, वो तो
1: क्योंकि
5: बेस्ट
1: उनको दायरे में रहना पड़ता है ना बोलने के भी, क्योंकि एचआर होता है घर पे। एचआर कहाँ है? कोई
5: दायरा नहीं है वहाँ पे।
1: There is no HR, so that is why it is very risky. तो अभी तो आज तो it has not been a good day at home for me today.
5: आज तो ऐसा लग रहा है कि तुमने चीजें जलाई है।
1: आज मैंने बहुत चीजें जलाई है।
5: So yeah. तो अगर तुम्हें लगा तो multitasking कर सकते हो, ऐसा था तुम्हें?
1: अगर कल मैं काला नीला दिखूँ तो समझो मैं भी जलाई हूँ घर पे।
5: इसकी फोटो हम डालेंगे। खैर, तो अच्छा, इस वजह से तुम्हारा आज का छुट्टी का दिन गया है?
1: आज का दिन ऐसा गया। यस, आपका कैसा गया दिन आज का काम का?
5: अच्छा था, नॉट बैड, मतलब

0: ऐसे चला गया,
1: कुछ नहीं किया,
0: नहीं जब मेरा अच्छा गया काम,
1: मतलब अच्छा गया,
0: हाँ
1: अच्छा,
0: बिजी था लेकिन अच्छा हो गया, वो तो ना टाइम पे सब चीजें खत्म हो जाती है,
1: क्या बात है,
0: वैसा वाला डे,
1: ये तो बेस्ट डे होता है ऐसा। Anyway, let's start off this hour, start off the drive show. आपका दिन कैसा गया? आप भी हमें यहाँ पे बता सकते हो या 5599 पे मैसेज करके या फिर 0800-004-866 पे कॉल करके। Anything exciting you did over the weekend जो आपको ऐसा लगता है कि हमको पता चलना चाहिए?
0: और मदर्स डे कैसा गया आपका? कुछ खास आपने किया? कुछ आपने मदर्स डे सरप्राइज दिया आपने मम्मी को या फिर शॉक दिया आपने?
1: हाँ, या फिर आप अगर मॉम हो और आपको क्या था बेस्ट आपका सरप्राइज या बेस्ट गिफ्ट जो आपको मिला वो द वीकेंड, हमें जरूर बताइएगा यहाँ पे 5599 पे मैसेज करके या फिर कॉल भी कर सकते हो आप यहाँ पे 0800-004-866 इस नंबर पे कॉल करके। एंड नाउ दैट वी डोंट हैव मदर्स डे कॉम्पिटिशन ऑन, तो आज हम हमारा शो अभी प्रॉपरली सारे सेगमेंट्स कर पाएंगे,
0: वो भी कर पाएंगे। एंड फ्लाई वे फ्रेंजी का कोड हम इस हफ्ते जरूर देने वाले हैं, अभी
1: इस हफ्ते देने वाले कि आज,
0: इस हफ्ते पूरा देंगे,
1: ओ इस हफ्ते पूरा देंगे, ठीक है। तो इस हफ्ते फ्लाई वे फ्रेंजी का कोड भी आपको मिलने वाला है, मतलब आज 5 बजे के बाद कभी भी फ्लाई वे फ्रेंजी का कोड आपके नाम हो सकता है।
0: एंड लोकल आर्टिस्ट भी,
1: ओह यस, लोकल आर्टिस्ट को शाउट आउट देंगे आज 5 बजे के बाद।

0: अरिजीत सिंह की आवाज और ये बहुत ही प्यारा सा गाना स्काई स्पिंक से ये गाना आप सुन रहे थे। वैसे स्काई इज एक्चुअली क्वाइट ब्यूटीफुल टुडे। अगर आप सनसेट देख पाए तो जरूर ट्राई करना देखना। Look at the sky. It's going to be quite beautiful tonight. ऐसा मेरा prediction है।
1: ऐसा तुम्हारा prediction है। Okay. Cloudy नहीं रहने वाला है ना?
0: हो सकता है थोड़ा बहुत cloudy. But cloudy sky is also beautiful.
1: Yeah, yeah.
0: Why not?
1: No, मतलब इतना cloudy भी ना हो कि दिखाई ना दे।
0: See, I think you should just be out.
1: अच्छा।
0: You should be out and breathe fresh air during sunset. That is the most healthy. ऐसे अभी कोई reel बनाएगा तो आप झट से मान लोगे। फिर आप जाओगे रोज बाहर सनसेट देखने।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं घर पे खिड़की से दिखाई देता है। वैसे तो आजकल तो नहीं दिखाई
0: देती। किधर आप?
1: वही आजकल तो अलग सिचुएशन है ना। हाँ। आजकल ये हो चुका है कि पहले ही हो चुका होता है। हाँ। सनसेट बट या समर में दिखाई देता है डेफिनेटली, बट अभी नहीं।
0: बट आज का मिस मत करना सनसेट।
1: ओके
0: सैंडी, आप भी मत मिस करना।
1: जरूर।
0: वेल एनीवे
1: हम बाहर निकलेंगे, देखेंगे।
0: आपको पता है आज के दिन ही ना सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार्गो प्लेन ने लैंड किया न्यूजीलैंड में।
1: ओके
0: मतलब आज अभी 3:40 PM के आफ्टर अभी वो लैंड करने वाला था। एंड 124 रसलिन इसका नाम है। ये इतना बड़ा सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो प्लेन ही है।
1: ओके एंड ये कहाँ से आया, मतलब कुछ पता है इसके बारे में?
0: हवाई से आया।
1: हवाई से आया है। ओके
0: Yes.
1: Hopefully ज़्यादा फ्यूल नहीं लेता है ये। नहीं पहला अभी यही लगेगा ना थोड़ा कंसर्न। इतना बड़ा है तो फ्यूल कितना लेता है ये?
0: 4-engine jet है ये। और इसका नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड है 800 and कुछ तो भी किलोमीटर्स पर आर, 865 किलोमीटर्स पर आर।
1: क्या बात है।
0: ट्रैवल रेंज 3,700 किलोमीटर्स।
1: नाइस यार।
0: क्रेजी ना?
1: बहुत ही ज्यादा क्रेजी।
0: तो अगर किसी को फोटो वोटो लेने हैं तो वो ले सकते हैं। काफी लोग बहुत ही उत्सुक थे एक्चुअली ये प्लेन के लिए। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है प्लेन्स का।
1: 100% काफी लोगों को होता है।
0: ऐसा ऊपर आसमान में देख के पहचान जाती है कौन सा प्लेन है।
1: इतना अच्छा।
0: इतना, हाँ हाँ। लोगों को टाइम टेबल भी रटा हुआ रहता है।
1: हाँ।
0: मेरा एक दोस्त था उसको ट्रेन का टाइम टेबल रटा हुआ होता था।
1: ट्रेन का यहाँ पे के मुंबई में,
0: इंडिया में, नासिक में। हम लोग जब एक बार कैंप के लिए गए थे तो वहाँ पे यू नो तुम पूरा टाइम साथ में रहते हो ना। तो रात को कोई ट्रेन का आवाज आ रहा है, दिन में कोई ट्रेन का आवाज आ रहा है, वो बंदे को मालूम है कौन सी ट्रेन है। अब पता नहीं वो फेक कर रहा था लेकिन हम लोग ने सब बिलीव किया उसको।
1: मुझे लगता है
0: हमको नहीं पता था।
1: कहानी ऐसी कि तुम लोगों को पता नहीं था कौन सी ट्रेन है, नॉट कि उसको पता था।
0: That's right.
1: इसलिए कुछ भी बोल रहा है तो तुम लोग मान रहे हो।
0: हम लोग हाँ, हम लोग फिर बोल रहे
1: हैं। बहुत इजी होते ना अगर किसी को नहीं पता होता है तो बताना कि ऐसे ऐसे हो रहा है
0: आजकल। लेकिन सबको सभी पता है। क्योंकि वो बोलते है ना उसके ऊपर वो अपने AI को बोलते है ना कि इसके बारे में बता, तो वो वहां से रिप्लाई करता है और सब बताता है।
1: AI से
0: अभी आजकल मतलब फिंगर टिप्स की भी जरूरत नहीं पड़ी है।
1: अभी तो बोल के आती है। सो एनीवे, सो वैसे हमने पहले भी आपको बताया है और इनफैक्ट अभी भी WHO की मैं वो न्यूज़ देख रही थी कि उन्होंने बोला है कि ये जो हंटा वायरस है ये अनदर COVID-19 जैसी वेव नहीं होने वाली है, इसके लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है
0: अभी के लिए
1: कंटेंट है फॉर नाउ एंड इसका कोई इतना बड़ा इशू किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके क्या होने वाला है।
0: अच्छा, कोई बात करना चाहता है सैंडी आपसे। जी बोलिए। हाय।
2: हेलो सैंडी एंड रिज़बे।
0: हेलो
1: जी। हाय।
2: हाउ इज़ द ड्राइव स्टिल गोइंग?
0: नहीं, ब्रेकफास्ट शो जा रही है ना अभी तो।
2: ब्रेकफास्ट शो?
1: हाँ कितने बजे?
2: मॉर्निंग में फोन किया रे।
0: अरे क्या यार, अभी चेंज हो गया। अभी हम सिर्फ ब्रेकफास्ट शो करते हैं अभी।
1: अरे ब्रेकफास्ट आजकल
2: इवनिंग में,
1: ब्रेकफास्ट आजकल हर एक टाइम पे मिलता है ना। ऐसा है, ब्रेकफास्ट हर टाइम पे खा सकते हैं आजकल।
0: हाँ बताओ
2: जी कुछ कह रहे हैं।
0: हेलो कौन बोल रहे हैं?
2: सैंडी जी आप?
1: मैं ये कह रही थी कि आजकल ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम पे खा सकते हैं।
2: आज का ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम पे खा सकते हैं?
0: अरे छोड़ो, इतना मत,
1: कोई बात नहीं।
0: इतना मत सोचो यार, आज हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं।
1: आप बताओ,
0: आप बताओ यार, आप थोड़े इम्पोर्टेंट बात बताओ।
2: इम्पोर्टेंट तो क्या बताओ यार, अभी हम तो शर्मा गए हैं।
0: अच्छा ठीक है, शर्मा जाओ फिर, कोई बात नहीं। ओके, यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़वी। अभी आपके लिए हम थोड़े मैसेजेस लाएंगे और फिर उसके बाद होपफुली अगर आपको शर्म ना आए तो आप कॉल कीजिए यहाँ पे।

0: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: So, jaldi join karein to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. So, dehen mat kijiye. Call 0800-4626-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like LA and San Francisco from just $939 one way. Or fly to Vancouver from only $999 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
4: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
5: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz
0: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
9: Hamesha saath dene wale dost.
10: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
11: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है अभी और सैंडी बताओ यार क्या चल रहा है
12: वेल जो चल रहा है वो ये है तुम्हें पता है एक ना टाउन है अमेरिका में इस टाउन का नाम है मनोवी मनोवी इस टाउन का नाम है ठीक है उसकी पॉपुलेशन पता कितनी है
11: नहीं
12: वन
11: एक ही है
12: एक ही पॉपुलेशन है एक ही बंदी वहां पे रहती है जिसका नाम है एलसी आइलर टाउन की ओनली रेजिडेंट है मतलब ट्रैवल करने के लिए वैसे टूरिस्ट आते हैं बट रेजिडेंट सिर्फ ये एक अकेली है मेयर भी है क्लर्क भी है वहाँ पे लाइब्रेरियन भी है ये बारटेंडर भी है सो वो अपने आप को टैक्स पे करती है
11: अपने आप को टैक्स पे करती है वो
12: ग्रांट अपने आप को खुद उसका लाइसेंस जो है लेती है
11: का नाम क्या है
12: इसका नाम है मनोवी MONOWI एंड टाउन की लाइब्रेरी चलाती है वहाँ का पेपर वर्क संभालती है विजिटर्स आते हैं वहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड उनको वेलकम करती है सो साउंड्स लाइक अ मूवी बट रियल है वन वुमेन एक ही टाउन है सो कम्युनिटी का जो साइज है इज जस्ट वन पर्सन ओवर देयर बेसिकली वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग रहना नहीं चाहते हैं तो उस जगह को मैनेज करने के लिए बेसिकली एक बंदी वहाँ पे रह रही है
11: ओ, अच्छा।
12: इस वे से है वो
11: तो वहाँ का रबिश कलेक्शन और वो सब भी क्या मतलब कैसे होता है
12: बाहर से आते होंगे ना
11: ओ वाओ
12: या बाहर से आते हैं फैसिलिटीज के लिए भी तो बाहर ही जाना पड़ता होगा बट बाहर से आते हैं लोग वहाँ पे, लेकिन उस छोटी सी कम्युनिटी में, छोटे से टाउन में वो खुद ही रहती है।
11: और मनोवी का मतलब पता है आपको क्या है?
12: क्या है?
11: इट मींस फ्लावर।
12: ओके।
11: फ्लावर इन एन अनआइडेंटिफाइड नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज। या एक्चुअली वाओ यार, दिस इज, मैं ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च किया इसके बारे में। तो एक्चुअली 1902 से ये जगह बनी है, प्लेटेड।
12: तो कोई ज़्यादा लोग वहाँ पे, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है ना, इसलिए काफ़ी लोग वहाँ पे प्रेफर नहीं करते रहने के लिए, स्पेशली फैमिली वाले लोग वहाँ पे प्रेफर नहीं करते रहने के लिए।
11: मनोवी का पीक पॉपुलेशन हुआ था 1930s में, जब भी वहाँ पे 150 लोग रहे थे उस विलेज में। तो 150 लोग मतलब वो पीक पॉपुलेशन। तो मतलब क्या ये हॉन्टेड जगह कुछ है क्या ऐसा?
12: हॉन्टेड नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे।
11: व्हाट इफ, ओके, आई वांट टू ओपन दिस, ओपन आवर फोन लाइंस अप। व्हाट इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आपको इस जगह पे जाके रहना है, कितना आप चार्ज करोगे ऐसे जगह पे रहने के लिए जहाँ पे और कोई नहीं रह रहा है, आपको अकेले रहना है? हाउ मच मनी पर मंथ वुड यू नीड टू गो एंड लिव इन एन आइसोलेटेड प्लेस?
12: आप अकेले रेजिडेंट है वहाँ पे,
11: अकेले रहेंगे आप वहाँ पे? हाय
13: रेता नहीं होगा तो रबिश कहाँ से आएगा?
11: वो एक इंसान का तो रबिश होगा ना,
13: इसका
11: एक जो इंसान रह रहा है,
12: खाते पीते थोड़ा रबिश तो बनेगा ना, मतलब कि रबिश तो हो ही जाएगा ना किसी भी इंसान का। जैसे अगर बाकी सब आपके घर पे सभी छुट्टी पे चले गए, आप घर पे अकेले हैं, तो रबिश तो फिर भी बनेगा।
13: पेपर और ये सब तो मार्किंग होता नहीं होगा ना?
12: नहीं, हाँ। उनको दूर से लेके आनी पड़ती है चीजें।
13: तो जहाँ से लाते हैं वहाँ ले जाके डंप कर देते हो जरा।
11: ठीक है,
12: ये भी सही है।
11: जैसे आप जाओगे रहने के लिए ऐसे अकेले कहीं एक ऐसे जगह पे?
13: हाँ मैं रहा।
11: हाँ आप रहे हो, कहाँ पे रहे हो?
13: साउथ आइलैंड में।
12: साउथ आइलैंड में?
13: साउथ आइलैंड में एक शहर है मतुई का। वहाँ पे
11: अकेले रहे हो आप, मतलब कोई नहीं था आसपास?
13: अकेले भी, फार्म था, फार्म हाउस था, एक हो रही है। 6 महीने वहाँ पे चले।
11: 6 महीने आप अकेले रहे वहाँ पे?
13: हाँ।
11: वाव, कैसा था एक्सपीरियंस? बढ़िया,
13: बना के खा के सो जाऊँ।
11: वाव, बढ़िया जय भाई, थैंक यू।
12: कभी जाना चाहोगे वापस आप?
13: हां, जाने का दिल है। ब्यूटीफुल प्लेस।
12: ओके,
11: ब्यूटीफुल प्लेस, नाइस।
13: उसका उसका बगल में सेंसपिट, फेयरवेल सेंसपिट है।
12: ओके, वाओ, नाइस।
11: क्या बोले वो सैंडी
12: के बगल में
11: क्या
12: है? फेंस वो है क्या?
13: फेयरवेल, फेयरवेल सेंसपिट, फेयरवेल
11: फेयरवेल,
13: बालू का बना है।
11: अच्छा,
13: वो समुंदर में जाता है।
11: वाओ,
13: सेंट पीट जैसे होता है, और वही जैसे फेयरवेल करते हैं जब शिप और कुछ जाती है तो।
11: हाँ हाँ, बाय बाय बाय बाय वैसे मतलब।
13: हाँ, बाय बाय करके बस अपना घर पे आ जाओ। चुके गोल्डन बेबी है वो, गोल्डन बेबी।
12: अरे वाह,
11: ओके, गोल्डन बेबी है।
13: आप फाइन पार्टिकल देख सकते हैं पानी के नीचे, सोने के।
11: सोने के? अच्छा, सोना होना दिख रहा है वहाँ पे।
13: गोल्डन बे,
11: गोल्डन बे,
12: तभी नाम है उसका गोल्डन बे।
11: चलो ठीक है, ढूंढते इसके बारे में भी। थैंक यू सो मच जय भाई, थैंक यू आपके कॉल के लिए। आप भी बताइए, आप अगर ऐसे अकेले कोई आइलैंड पे अगर रहना आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो पहले तो कितना पैसा आप लोगे महीने का
12: रहना चाहोगे? अगर रहे तो
11: मैक्सिमम कितने टाइम तक आप रह पाओगे वहाँ पे?
12: तुम कितने देर तक रह सकते हो अकेले जहाँ पे कोई भी नहीं है?
11: एक पल भी नहीं सैंडी,
12: एक पल। तुम्हें तो कोई ना कोई चाहिए होता है बात करने के लिए।
11: नहीं, अगर आप मुझे 2.5 साल पहले पूछे रहते तो फिर मैं बोला रहता आपको कि हाँ, मैं तो रह सकता हूँ।
12: हाँ,
11: अब तो मैं एक पल भी।
12: अच्छा, 2.5 साल पहले अगर रहना होता?
11: हाँ,
12: तब का सिचुएशन बताओ.
11: मैं एक्चुअली नहीं प्रेफर करता अकेले रहना. बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्किल टू हैव यार, टू बी एबल टू लिव अलोन
12: 100%.
11: बहुत डिफिकल्ट होता है. मुझे लगता है मैं आज ही एक रील देख रहा था, 90% लोगों को अकेले लंच करना, अकेले डिनर करना या अकेले कॉफी भी पीना पॉसिबल नहीं होता है. मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है काफी लोगों को. सो फॉर समवन टू बी एबल टू लिव अलोन आई थिंक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एंड अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल एज वेल. खुद के साथ रहना बहुत मुश्किल है सैंडी.
12: या आई डोंट, काफी लोग आते हैं यहाँ पे, अकेले आते हैं यहाँ पे.
11: नहीं नहीं, आना तो सही
12: आते
11: है,
12: रहते भी है,
11: सब अकेले ही आते हैं सैंडी. मोस्टली जो जुड़वा होते हैं वो दो साथ में आते हैं.
12: नहीं मुझे पता है, मैं कंट्री की बात कर रही थी.
11: अच्छा.
12: और काफी लोग अकेले रहते भी है. मैं काफी समय रही हूँ अकेली.
11: या
12: रही हूँ. इट वॉज लाइक, हाँ बट ऑफकोर्स कम्युनिटी होती है, आसपास लोग होते हैं. आइसोलेटेड जगह नहीं थी.
11: आइसोलेटेड नहीं थी बट डिफिकल्ट होता है ना अकेले रहना कंपेयर टू.
12: नहीं
11: अच्छा,
12: डिपेंड्स या फेज ऑफ द लाइफ.
11: ओके ठीक है, मैं आपके बहन को भेजता हूँ ये रिकॉर्डिंग अभी कट करके.
14: Hollywood's most wanted.
15: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
16: मैं लाऊं अपना A game.
14: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. आपके लिए Tinsel Town मतलब Bollywood की बातें भी हम यहाँ पे लेकर आते हैं. And Mother's Day काफी Bollywood celebrities ने भी celebrate किया. And Salman Khan and Ulia Vantur, ये लोग ने throwback photos share किए with Salman Khan and Helen.
1: Oh yeah, मैंने फोटो देखी थी ये वाली. Mother's Day के बारे में बात करते तो मैंने एक एक्चुअली मैं पॉडकास्ट भी देखा रिसेंटली. मैंने तुम्हें बताया था सोहा अली खान के बारे में.
0: सोहा अली खान का पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी, काफी लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में.
1: एंड द मोर आई वॉच द पॉडकास्ट द मोर आई थिंक कि यार ये बंदी काफी इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो मूवीज में नहीं चलते हैं. ऐसा अक्सर होता है. सोहा अली खान इज एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट. नॉट ओनली द वे वो क्वेश्चन पूछती है लेकिन जिस वजह से वो सुनती भी है. एक पॉडकास्टर को लिसनर होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना सही सवाल पूछना या सही कन्वर्सेशन करना. सो शी इज डूइंग इट रियली गुड. उसका मैंने एक पॉडकास्ट एक्चुअली में रिसेंटली देखा है.
0: किसके साथ?
1: सो पुराना पॉडकास्ट है. इट वाज अबाउट विद हिज विद हर मदर शर्मिला टैगोर एंड सारा अली खान. बेसिकली थ्री जनरेशन का उसने किया वहाँ पे. सो इट वॉज नाइस इंटरेस्टिंग. शर्मिला टैगोर को मैंने ऐसा बोलते हुए ज़्यादा नहीं कभी देखा था तो उसके जो कुछ टेक्स थे वो मैंने वहाँ पे सुने विच वॉज गुड. तुम सलमान खान की बात कर रहे हो. अभी उसने वैसे सलमान खान ने पोस्ट किया अबाउट बॉबी देओल उसके नई मूवी के लिए. सो बॉबी देओल की पहली कोलैबोरेशन है बेसिकली अनुराग कश्यप के साथ.
0: हाँ, बंदर ना.
1: बंदर. सो उसने सलमान खान ने लिखा है बी फॉर बॉबी देओल, ए फॉर आग, एन नहीं जाओगे तो पछताओगे, डी देओल अपसरी देओल, ए अभी क्या आमिर खान. ऐसा लिखा आमिर खान लिखूंगी ए से. आर रेस सो रेस टू सिनेमा टू से इट. सो बेसिकली बंदर का जो मैंने देखा है टीजर इज वेरी इंटरेस्टिंग दो. टोटल अनुराग कश्यप का
0: प्रोडक्ट है. लेकिन मेरे को एक ही चीज समझ में नहीं आई. सलमान खान ने जब वो मतलब वो उसके पेज पे शेयर किया और मैं देख रहा हूँ अनुराग कश्यप का ये प्रमोट कर रहा है उसके भाई के साथ, तो वाकड़ा हुआ है ना?
1: वो अलग है.
0: वो अलग है लेकिन
1: वो अलग है. उसके साथ तो वाकड़ा है लेकिन अनुराग कश्यप के साथ तो काफी बनती है.
0: बनती है उसकी अनुराग
1: कश्यप बहुत बनती है. रिसेंट मैंने एक्चुअली मैं 2 महीने हो गए मैंने एक पॉडकास्ट देखा था. अनुराग कश्यप था उस पॉडकास्ट में एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट सलमान खान. ही वॉज टॉकिंग अबाउट खान बेसिकली थ्री खान.
0: वो नहीं वो भाई है उसका ना.
1: या उससे एक्चुअली मैं बात की थी. ही सेड कि तीन खान है जो कि अपनी मूवीज में जब ये लोग मूवीज करते हैं उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग में ये लोग पैसा कमाते हैं. ये इन फ्रंट होके हमसे पैसा नहीं मांगते हैं. आजकल के जो एक्टर्स हैं फ्रंट से पैसा मांगते हैं. अगर मूवी नहीं चलती है तो वो उसको कभी कई बार रिटर्न कुछ परसेंटेज रिटर्न नहीं करते. बट ये जो एक्टर्स है स्पेशली सलमान खान के बारे में ही सेड कि अगर उसकी मूवी नहीं चलेगी ना ही विल जस्ट रिटर्न द मनी जितना भी है कुछ नहीं वहां से वो लेगा.
0: अच्छा.
1: अदरवाइज ही वर्क्स ऑन प्रॉफिट शेयरिंग ओनली.
0: वाओ दैट्स अमेजिंग.
1: सो ही सेम थिंग अबाउट आमिर खान एंड शाहरुख खान.
0: बट उनके खुद के प्रोडक्शन हाउसेस है अभी तो शायद मेरे को लग रहा है.
1: हाँ लेकिन काफी समय से इंडस्ट्री में तो काम कर ही रहे हैं ना विद अनुराग कश्यप.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbi.
3: Hamesha saath dene wale dost.
4: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: Bro, look at you. Blue light screen ko itna ghoor hai, jaise wo tujhe promotion de dega. Aur ye coffee? Lukewarm. टेस्ट बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा. प्लीज सर तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
4: लिसन टू हम ऑन रोवा एवरी वीकडे एट 8 AM, 11 AM, 1 PM एंड 5 PM. हम देंगे एक स्पेशल कोड वर्ड. यू गॉट 60 मिनट्स टू एंटर इट इन द रोवा ऐप एंड गो इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू फिजी. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द रोवा ऐप नाउ. विन अ ट्रिप टू फिजी ओनली ऑन हम ऑन रोवा. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई. Accurate traffic.
6: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
7: A few showers tonight with a low of 13 degrees. Out of Auckland City on the southern motorway, it's around a 35-minute drive to Monaco. Traffic queuing up in patches, Green Lane to Highbrook Drive. The southwestern is slow onto the southern from Puanui Road. On the northwestern, it's still heavy between Great North Road and Te Atatū. And the northern congested around Asman, just over half an hour out to Constellation.
6: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
8: Cooking ka asli flavour chahiye?
5: switch to Kashish Foods ginger garlic paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar-free. Sirf clean, natural taste. Bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho, ya perfect combo. Har dish banegi full of flavor. Aur ha, buy any Kashish dosa batter, any size. Aur pao, 250 grams ginger garlic paste, bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
8: With a Gem Personal Loan, you can give your old kitchen a makeover. Combine multiple debt repayments into one. Or get from A to B in a new CAR. And for a limited time, pay zero establishment fee, saving $240. Search Gem Personal Loans and check your personalised rate in under 2 minutes with no impact to your credit score. Establishment fee waived till May 19th, 2026. Lending criteria, TC's fees and other charges apply.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
12: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's अप्लाई।

0: Show with Sandy and Rizvi.
1: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
2: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Throwback.
3: थ्रोबैक में आपके लिए एक गाना लेकर आएंगे जो 2000s में आपने सुना होगा काफ़ी बार. और आज का जो गाना है वो तो ऐसा गाना है कि वो तो डेफिनेटली आपने काफ़ी बार ये सुना होगा. दिस इज़ फ्रॉम द मूवी. अरे यार, वो मुच्छड़ होता है और एक क्लीन शेवन होता है और वो उसकी बीवी पहचान नहीं पाती है कि ये कौन
4: है. रब ने बना दी जोड़ी.
3: हाँ हाँ, रब ने बना दी जोड़ी.
4: उस मूवी का ये गाना सुनने वाले हैं. और आज ट्रेंड मेकर्स में एक लिरिसिस्ट के गाने सुनने वाले हैं. और ये जो लिरिसिस्ट है, इन्होंने 90s में और आज के टाइम में भी कुछ हिट गाने दिए हैं. अपनी मर्जी से काम करते हैं. इनका नाम है महबूब.
3: ओ, महबूब.
4: यस, महबूब.
3: नहीं, ये महबूब अलग है.
4: तुम कौन से महबूब की बात कर रहे हो?
3: वो भी है ना, लकी अली के पिताजी, वो भी महबूब.
4: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं.
3: वो अलग है ना.
4: वो अलग है. हाँ. ये महबूब है.
3: वो भी महबूब ही है.
4: वो महमूद है.
3: महमूद है वो.
4: या
3: अच्छा, ओके, महमूद है. अच्छा,
4: ये महबूब कोटवाल. हाँ. ये है वो. सो इट्स ओके.
3: नहीं नहीं, ठीक है ना यार, होता है यार, किसी को भी होता है कंफ्यूजन. उसमें क्या, महबूब
4: सिंगर है, क्योंकि नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं ना. ये महबूब है, वो महमूद है.
3: ये जिनके बारे में आप बता रहे हो, इनके बारे में डिटेल थोड़ा बताना आप.
4: नहीं, ये भी नहीं जो तुमने
3: सर्च
4: किया. वो महबूब खान है. ये महबूब कोतवाल है.
3: महबूब कोतवाल.
4: या ये इनका नाम है, महबूब कोतवाल. सो ये लिरिसिस्ट है जिन्होंने रंगीला के जैसे लिरिक्स लिखे हैं, उस मूवी के लिरिक्स लिखे हैं. 90s की मूवीज जो काफ़ी पॉपुलर रही है, जैसे कि बॉम्बे मूवी, रंगीला मूवी, इन मूवीज के दौड़ मूवी.
3: अच्छा.
4: यू नो, हम दिल दे चुके सनम, ऐसी एपिक मूवीज के इन्होंने गानों के लिरिक्स लिखे हैं.
3: ओह वाओ, क्या बात है. ये एक्चुअली इस्माइल दरबार को मिले थे पहले.
4: या
3: और फिर वहां से ही इज गॉन अप. चलो, उनके बारे में और भी बातें करेंगे हम.
4: ट्रेंड मेकर्स, ट्रेंड में 6 बजे के बाद करेंगे.
3: काफी मूवीज लिखी है इन्होंने, मतलब मूवी के गाने लिखे हैं इन्होंने
4: बहुत सारी मूवीज के.
3: ओह वाओ, चलो ठीक है, डिटेल्स देंगे थोड़ी देर में.

0: handed to local police. Officers turned to Facebook in the hope of tracking down the owner and have finally found her. The woman had lost track of the locket on the way to her 90th birthday. To sport, a one-season reprieve for cricket's Super Smash competition, New Zealand Cricket has delayed the new privately-backed franchise T20 League. The talent drain in New Zealand rugby, All Blacks and Blues first five, Stephen Perifetta is reportedly off to Japanese club Yokohama. And to football updates brought to you by Hisense, Iran has issued a 10-point ultimatum for FIFA to guarantee involvement at next month's World Cup finals.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: Overnight temperature is going to be as low as 11 degrees. One layer of clothing is recommended right now. Abhi mehsoos kar rahe hain around 16 degrees. Light winds ka saath rahega. Thodi bahut barish hone ki sambhavna hai kuch kuch jagahon pe. 5:27 pe hoga sunset. Kal ka din barish bhara hone wala hai.
2: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
5: Hamesha saath dene wale dost.
1: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizvi.
7: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: 5:03, you're listening to The Drive Show with Sandy and Rizvi. Power Drive at 5. Hi Sandy.
8: Hi Rizvi. And in this hour, we take a segment for you which is called Desi or Not So Desi Behavior.
2: Desi or Not So Desi.
4: इसमें होता यह है कि हम आपको एक बिहेवियर के बारे में बताएंगे और आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है इफ इट इज देसी और इफ इट इज नॉट सो देसी बिहेवियर,
8: कि ऐसा सिर्फ हमारे देसी लोग करते हैं या फिर बाकी लोग भी ऐसा करते ही है, मतलब हर कोई ऐसा करता है.
4: सो आज का क्या बिहेवियर है सैंडी?
8: आज का बिहेवियर ऐसा है कि आपने एयरप्लेन में तो ट्रेवल किया ही होगा. सो एयरप्लेन जब लैंड करता है, प्लेन जब लैंड करता है एंड उस समय पर लैंडिंग हो चुकी है प्लेन की, लेकिन अभी सेफ नहीं है, सीट बेल्ट आपकी लगी हुई है,
4: साइन ऑन है अभी भी, मतलब
8: अभी भी ऑन है. एग्जैक्टली. एंड सब खड़े हो जाते हैं, लोग जो खड़े होना शुरू हो जाते हैं, वो देसी ही सिर्फ ऐसा करते हैं या फिर नॉट सो देसी भी करते हैं. मतलब अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि सब क्लियर है, कुछ भी है, लेकिन उसी समय अपनी सीट बेल्ट खोल के खड़े हो जाना. क्या लगता है आपको, देसी बिहेवियर है या फिर ऐसा हर कोई करता है? सो फार आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, कॉल करके बताइए.
4: 0800 004 866 आप कॉल कर सकते हो, आपके किस्से यहाँ पे शेयर कर सकते हो. आई थिंक इट इज नॉट सो देसी बिहेवियर.
8: तुम्हें लगता है नॉट सो देसी बिहेवियर?
4: बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल स्टैंड और मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो, मतलब अभी मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे भी लोग खड़े हैं. मैं बैठा हूँ बीच में, राइट, और सामने तो लोग खड़े ही है, लेकिन जब निकलने की बारी आती है तो मैं जो पीछे खड़े हैं उनसे पहले मैं निकल जाता हूँ.
8: हाँ, क्योंकि तुम अपने टर्न के हिसाब से निकलोगे ना वहाँ पे.
4: एग्जैक्टली. सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज एन एवरीवन बिहेवियर एंड मालूम नहीं मेरे को क्यों लोगों को खड़े, मतलब आई थिंक लोग बोर हो जाते हैं ना बैठे बैठे, फ्लाइट लंबी फ्लाइट होती है,
8: लंबी फ्लाइट. हाँ, कईयों का ये रीज़न हो सकता है, नॉट एवरीवन, लेकिन कईयों का ये रीज़न हो सकता है कि उनको बैठे बैठे थोड़े तंग हो जाते हैं तो उनको खड़े होना होता है, लेकिन वो तो कभी भी खड़े होके इधर उधर चल सकते हैं ना प्लेन में, ऐसा मना ही नहीं होता है until unless वार्निंग हो तो कभी भी आप चल फिर सकते हो.
4: लेकिन चलना इतना लोगों को, मतलब people don't feel comfortable ना lot of times to like बहुत लोग तो वॉशरूम जाने से भी शर्माते हैं कितना तो.
8: हाँ,
4: अगर वो लोग अंदर वाली विंडो सीट में बैठे हैं तो कैसे बोले कि अरे हमको जाना है
8: थोड़ा साइड हो जाओ, हमको
4: और
8: जाना
4: लोग
8: है.
4: तो फैल के सोते हैं ना काफी.
8: हाँ,
4: तो और भी ज्यादा इनकन्वीनियंस,
8: स्पेशली अगर आपकी ऐसी फ्लाइट है जहाँ पे रात का ट्रेवल है, मतलब.
4: हाँ, मैं इसलिए मैं तो ले नहीं पाता हूँ विंडो सीट यार, मेरे को तो आइल सीट ही, मतलब. हाय,
9: हेलो
4: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका.
9: संजू
4: फ्रॉम संजू हाउ आर यू?
9: आई एम गुड.
8: और अंजू आप वाया रोवा सुन रही है क्या?
4: आप अंजू हो या संजू हो?
9: नो, एट द मोमेंट आई एम लिसनिंग फ्रॉम माय कार, बट आई डू लिसन फ्रॉम माय रोवा एफएसएल.
8: ओके,
4: आपकी गाड़ी में आ रहा है रेडियो अभी भी?
9: हाँ, आ रहा है, बीच बीच में प्रॉब्लम होता है, जब वो

0: कोड आता है तब वो बंद हो जाता है.
1: ओके.
0: व्हाट आई मिस्ड टू पुट सम कोड्स ऑन.
2: अरे वो हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, वैसे भी इट इज 104.2 एफएम जुलम से जुलम तक.
1: कस सफर तय कर रहे हैं.
0: प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी का.
2: हाँ,
1: जी
2: हाँ,
1: बताइए अभी. तो बताइए, प्लेन के बारे में कुछ बोलना था आपको.
0: हाँ बिल्कुल बोलना था. मेरे हस्बैंड है मेरे साथ में, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं. जैसे ही सीट बेल्ट, जैसे ही प्लेन टैक्सी फिनिश हुआ, वो अपना सीट बेल्ट खोल देंगे.
1: हाँ.
0: जबकि ऑन होता है. और लेकिन मालूम है जब तक पूरा प्रॉपर टैक्सी नहीं होगा और प्लेन रनवे पे बंद नहीं होगा,
1: Yeah.
0: कोई फायदा नहीं है. जब तक हमारे आगे वाले लोग नहीं उतरेंगे
1: तब तक फायदा नहीं है ना. तो आप खड़े रहोगे.
0: जस्ट रिलैक्स एंड बी पेशेंट.
1: और क्या होता है ना, वो सिचुएशन भी ऐसी होती है, मेरे को समझ में नहीं आता. सब खड़े होते हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि बाहर देखने के लिए तो कुछ नहीं है ना.
2: अरे उनके हस्बैंड को तो बोलने दो.
1: हाँ.
2: आपके हस्बैंड को तो बोलने दो.
3: मेरे पास तो पेशेंस होती नहीं सर, क्या करूँ मैं.
2: हाँ नहीं, वो समझ सकते क्यों नहीं है आप में पेशेंस.
3: आपको आपको पता ही होगा क्या होता है.
2: मेरे पे मत डालो. Okay. मेरे को भी घर जाना है.
3: 10 hour, you know that the 10 hour journey, the 11 hour journey, people they are sitting on the 11 hour.
1: So
3: after that plane the landed on the floor, the people are there standing up immediately.
1: थक जाते हैं ना.
3: That's the problem.
1: और ये आप नोटिस करते हो कि सिर्फ देसी नहीं करते, बाकी भी करते हैं.
0: बिल्कुल, सब लोग करते हैं. सब लोग जैसे ही हुआ वैसे ही खड़े.
2: जी,
1: उनकी आवाज बंद हो गई.
2: आना जाना है उनका. मोबाइल का फ्रीक्वेंसी भी हमारे रेडियो के फ्रीक्वेंसी की तरह ही है. हाय.
0: हेलो.
2: जी हाँ. नहीं नहीं, सुनाई दिया हमको आपका. नहीं बट बहुत अच्छा लगा अंजू आपसे बात करके. आपके हस्बैंड का नाम क्या है?
0: सुनील.
2: थैंक यू. आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके. कुछ कह नहीं सकते अभी. अब ये है
1: मतलब हर किसी का अपना रीज़न है. किसी का ये रीज़न है कि तंग आ गए बैठे बैठे, किसी का ये भी रीज़न होता है. या फिर तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम ऐसा खड़े, तुम कभी नहीं खड़े हुए?
2: नहीं, मैं नहीं.
1: तो हमेशा बैठे रहते हो?
2: हमेशा बैठे.
1: जब तक तुम्हारी बारी नहीं आती है.
2: हाँ, जब तक नहीं आती है. इट्स ऑल्सो साइन ऑफ पेशेंस ना. तो आई लाइक टू शो दैट के मतलब एटलीस्ट कि भाई मैं बहुत
1: ये कर सकता हूं. तब तक अपनी मूवी जो आप देख रहे हो वो कंप्लीट कर सकते हो?
2: नहीं, वो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि बीच-बीच में अनाउंसमेंट करते तो ब्रेक हो जाता है ना.
1: ओके.
2: ना Nah, it's a good time to observe people. Hi.
4: Hey, Rusbe, how are you?
2: Very good, very good. Aap bataiye.
4: Good, thanks. Hey, regarding this topic, I just want to add on. Maine last night hi main reach hua hu Auckland mein. So yes, the behavior is to everybody. It's not specific to Desi. Meri 5 saal ki beti thi, to wo mujhe kal bolti hai कि पापा हम सबसे पीछे क्यों बैठे हैं. इवन दो शी एंजॉयड हर फ्लाइट एंड एवरीथिंग, बट जब वो उतरने का टाइम आया ना तो वो बोलती है कि उसको इम्पेशेंस हो रही थी वो, कि आई हैव टू गो अर्ली. तो वो सबसे पहले उन लोगों को इवन वो क्रॉस करके भी निकलने की कोशिश कर रही थी. ऑफकोर्स दैट्स अ चाइल्डिश बिहेवियर, बट टिपिकल जो देसी बिहेवियर है हम लोगों का वो हमें देखने को मिलता है जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और वहां पे बोलते हैं भारत माता की जय.
2: दैट इज देसी बिहेवियर.
4: नोटिस दैट, बट वो एक एक अच्छी, लाइक आई डोंट नो, कई लोग उसको पॉजिटिव में लेते हैं, कई नेगेटिव में लेते हैं, बट आई वुड से दैट इज द देसी बिहेवियर. बट सीट बेल्ट खोल के इधर उधर चलना या खड़े होना, वो तो
2: आप जब भी दिल्ली लैंड करते हो भारत माता की जय बोलते हैं.
4: बहुत ज्यादा मैंने काफी ट्रेवल किया है तो 70% or 80% of the time I have noticed that.
1: Wow, मैंने कभी notice नहीं किया.
2: मेरा कभी नहीं हुआ यार. I would love to do that.
4: नहीं नहीं, वो तो वो एक वो जब भी वो plane land होता है ना, वो जैसे वो touch करता ground वहाँ तो वो नारे लगाने लगते हैं. I don't know whether मैंने notice किया या जिस flight में मैं गया होगा उसमें ज्यादा देसी होंगे, बट आई हैव नोटिस दैट
2: कहीं आप ही तो नहीं शुरू कर रहे हो
4: दैट इज देसी बिहेवियर नहीं नहीं नहीं
2: नहीं अच्छी बात है
4: मैं तो मन में जय बोलता हूँ बाकी आई डोंट गो लाउड इन
2: मेरे को मेरे को अंदर से इतना मन करता है जब ही वो थिएटर में मतलब ये इंडिया की बात है इंडिया में थिएटर में ना नेशनल एंथम बजता है मूवी के पहले मेरा इतना मन करता है कि मैं चिल्लाऊं आज मैं चिल्लाऊंगा क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई एक तो होता है जो चिल्लाता है भारत माता की जय आफ्टर द नेशनल एंथम
1: ओके ओके
2: बट आई हैव नेवर हैड द गट्स टू डू इट मायसेल्फ
1: नाइस ओके
4: नेक्स्ट टाइम मेबी
2: या बट थैंक यू फॉर कॉलिंग
1: क्या नाम क्या था आपका
2: अभी रह गए अभी चले गए हाय प्रशांत बोलिए
5: हाय प्रशांत हां नॉट ओनली द रेडियो I mean, not only the plane, but even when my experience is when I go to travel somewhere like Japan or Korea, we had like a 38 people or 40 people in the bus. As soon as the bus stops,
1: सब खड़े हो जाते
5: हैं. They just stand up. Even they don't reverse park the bus and they just stand up and just start.
1: Yeah.
5: So not only the plane, even in the bus when you go to the group tour and it happens the same thing.
2: मैं एक मिनट के लिए डर गया प्रशांत मेरे को लगा आप बोल रहे हो कि इवन जापान एंड कोरिया हर जगह भारत माता की जय होता है लैंड के टाइम पे मैं बोला भाई
1: हो जाएगा टू मच हो जाएगा वो
5: आई कांट बी रूड इन द ग्रुप लाइक आई वाज ओनली वन पर्सन एशियन पर्सन सो आई कांट बी दैट वे
2: हां नो नो कमिंग सून
1: सही है
5: दैट्स नॉट दैट देसी थिंग्स
2: थैंक यू मैन थैंक्स फॉर शेयरिंग मैन थैंक्स
1: थैंक यू प्रशांत बाय
2: या रुश्मा का भी मैसेज है यहाँ पे आई ऑलवेज ट्राई टू गेट द फर्स्ट सेकंड रो ऑफ सीट्स इजी टू गेट आउट डोंट हैव टू स्टैंड एंड वेट
1: ये भी सही है क्या तुम्हारा मन करता है कि सबसे पहले जाके बैठ जाओ या फिर सबसे पहले निकल जाओ बिकॉज दोनों साथ में नहीं मिल सकते ना अगर तुम्हें सबसे पहले जाके बैठना है तो एंड वाली सीट्स मिलेंगी अगर सबसे पहले निकलना है तो फ्रंट वाली सीट्स होंगी
2: ओ अच्छा वैसे बोल रहे हो प्लेन में राइट राइट जी आप भी शेयर कीजिए यहाँ पे 5599 पे मैसेज करते हैं

0: celebrating local artists.
1: Back your backyard beats.
2: बैक योर बैक यार्ड बीट्स में आज हमारे जो आर्टिस्ट है वो हमारे अपने जिनका आज बर्थडे भी है.
3: Yes, birthday boy. We're talking about विजय वर्मा.
2: जी विजय वर्मा जो एक लोकल आर्टिस्ट भी है. वो आर्टिस्ट तो पहले से ही थे, अभी वो सिंगर भी क्या सॉन्ग प्रोड्यूसर बन गए.
3: Yeah, वो गाना लिखते हैं एंड बनाते हैं गाना. तो ये गाना उन्होंने बनाया है एंड अपने गानों के जरिए एक्चुअली में ही इज ट्राइंग टू शेयर हिज फीलिंग्स towards emotions towards Fiji.
2: Oh right.
3: Yeah. So ऐसे कुछ emotions उन्होंने इस गाने में भी express किए हैं. तो different गाने actually में सुबह से आपने यहाँ पे सुने and this one song also. कैसा लगा आपको जरूर यहाँ पे बताइएगा message करके MM keyword के साथ. और उसमें कॉल करना चाहोगे तुम try कर. वैसे मुझे नहीं लगता नहीं है कि he will pick the call. Hmm. He will talk but you never know.
2: तो एक गाना ये गाना सुनते और फिर गाने के बाद कॉल लगाते हैं.
3: Okay.
2: हैप्पी बर्थडे टू विजय. उनका ही बनाया हुआ ये गाना आपको सुनाते अभी.

0: विजय वर्मा का प्रोड्यूस ये गाना आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि बर्थडे बॉय से आज हम बात कर पाए यहाँ पे,
1: लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो फोन उठाएंगे। आज तो वो ऑफिशियली छुट्टी पे थे। वैसे
0: वो आज छुट्टी पे थे ऑफिशियली?
1: आज ऑफिशियली छुट्टी थी।
0: क्या बात है, बर्थडे
1: लीव। आज बर्थडे लीव थी।
0: तो यार ये गलत रहेगा उनको कॉल करके डिस्टर्ब करना ना सैंडी।
1: चलो एनीवे,
2: हाय दिस इज विजय फ्रॉम हैमिल्टन। अनफॉर्चूनेटली आई कांट टेक योर कॉल राइट नाउ, प्लीज लीव अ मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू।
1: लीव अ मैसेज।
3: हाय विजय, हाउ आर यू डूइंग? आई जस्ट वांटेड टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Hope you had a good one.
1: क्या यार,
0: हंसो मत यार सैंडी, अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड किया मैंने।
1: अभी इतना नकली बोला ना तुमने अभी।
0: नकली क्या?
1: आप बताइए कॉल करके।
0: मैं बस चाहता हूँ कि विजय ये जो मैसेज है ये पूजा के सामने सुने।
1: मुझे क्या लेना देना।
0: Alright, और भी बातें करेंगे आपके साथ, सुनते रहिए हम।
4: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी।
5: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
6: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं।
7: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover. Accurate traffic.
8: Auckland Airport Park and Ride.
9: A few showers and a low of 13 degrees tonight. We've had a crash on the northwestern motorway heading away from town. That's just before Pātaki Road. Delays are pretty much all the way back to town. Looking heavy for that stretch. 40 minutes out to Massey from the city. We've also got reports of an incident on the Harbour Bridge. It certainly looks heavy getting out of town. Around 50 minutes to get up to Silverdale.
8: Park and Ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door. The bell has gone, but is the day really over? Between sports meetups, play dates, homework, and late shifts, you need to be putting in the right stuff. Packed with calcium, vitamins, and protein, grab some Anchor. Real milk, real good.
10: Professional financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
11: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
10: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
11: Professional financial solutions. Your future our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's lend and credit criteria apply.
12: Jen didn't think she needed a DVS system.
13: Oh, I've got insulation in that.
12: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
13: Ah, yeah.
12: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
14: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
15: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
16: हाँ। अच्छा
15: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
16: मिसेस सिंह,
17: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
18: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
7: हमेशा साथ देने वाले दोस्त।
11: Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. With sleepyhead queen mattress frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
7: Power Drive at 5.
5: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Hollywood's most wanted.
19: Gundi khadgao. सीधा अंदर आऊं।
20: मैं लाऊं अपना ए गेम।
21: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: जी दोस्तांश की आवाज और ये बहुत ही प्यारा सा गाना यू लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। टाइम आ गया है अभी यहाँ पे हम आपको अब दे फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड जिसे आप जीत सकते हैं रिटर्न टिकट फॉर फिजी।
1: सो फ्लाई अवे फ्रेंजी का आज का कोड है सोको सोको SOKO ऐसे नहीं एक मिनट SOKO
0: सैंडी यार कंफ्यूज कर रहे हो आप यार।
1: या SOKO इज अ स्पेलिंग गाइस। इसका मतलब है बेसिकली जर्नी बाय सी क्रूज। इसका मतलब ये है जो मैंने पढ़ा है। अगर आपको कुछ डिफरेंट पता है तो बताइए यहाँ पे। इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे सोको ही बोलते हैं या फिर कुछ और होता है।
0: ये चार लेटर भी अगर आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो
1: नहीं क्योंकि कई बार बहुत इनविजिबल लेटर्स होते हैं ना प्रोनाउंसिएशन में। जैसे कहीं पे एन एन बोलते हैं लेकिन एन होता नहीं है कई जगह पे। तो ऐसी चीजें हो सकती है।
0: That's right.
1: So, बताइए अगर सोको ही बोलते हैं इसको कॉल करके 0800 हम पर।
0: बट फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड अगर आपको मतलब वो लिंक अगर आपको चाहिए तो आप FF लिख कर भेजिए 5599 पे एंड वी विल सेंड यू द लिंक एज वेल फॉर द कोड एंटरिंग ताकि फिजी की रिटर्न टिकट आपके नाम हो सके।
1: या ये टिकट आपके नाम हो सकती है एंड फुल ऑन फिजी में हॉलीडे आप इंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम तुम ओवरसीज कब गए थे हॉलीडे के लिए?
0: मैं एक साल पहले लास्ट ईयर
1: कहाँ पे?
0: बाली।
1: वो यार तुम्हें एक साल हो चुका है।
0: एक साल हो गया यार मैं ट्रैवल ही नहीं किया एक साल से। या
1: सो तुम्हें ट्रैवल अभी कहाँ पे तुम्हें लिस्ट में क्या है अगर ट्रैवल ऐसा करना हो?
0: काश मेरी ऐसी लिस्ट होती और मैं वो लिस्ट को पूरी कर पाता।
1: नहीं अगर
0: इज मोर लाइक अ सैड लिस्ट।
1: अगर हो बन जाए लिस्ट कि भाई यहाँ पे जाना है मुझे अगर नेक्स्ट मैं हॉलीडे प्लान करता हूँ तो यहाँ पे मुझे करनी है हॉलीडे।
0: मेरे को चाइना जाना है।
1: वो चाइना
0: क्योंकि okay. मैंने सुना है चाइना के में बहुत ही ऐसा मतलब बिजनेस है एयर में चाइना के एयर में।
1: तो वो बिजनेस क्या एयर लेके आना
0: तुम्हें? कोरोना भी था बट बिजनेस आई हैड टू
1: या वो या
0: बट या आई वांट टू गो टू चाइना एंड आई वांट टू चेक लाइक फ्यू प्लेसेस इन चाइना। और अगर बजट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट एट ऑल देन यूरोप में रोड ट्रिप करना चाहूंगा
1: 6 महीने
0: की रोड ट्रिप। चलो
1: 3 महीने इज फिजिबल मेरे को लगता है।
0: फिजिबल है क्या? करो ना फिर स्पॉन्सर।
1: मैं क्यों करूं जो सुन रहे वो करेंगे ना। मैं स्पॉन्सर करूं तो मैं खुद ना चले जाऊं।
0: ये अच्छा आइडिया है ना। अगर आप चाहते हो मेरे से मुक्ति तो स्पॉन्सर कीजिए मेरी यूरोप ट्रिप 3 महीने की।
1: क्या युक्ति है।
0: क्या युक्ति। ये वेरी नाइस।
1: 5599 पर मैसेज करके आप अपने आइडिया दे सकते
0: हैं। मत दो आइडिया क्यों 20 सेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो यार। मैसेज करने के लिए मत स्पेंड करो।
1: एनीवे फिलहाल तो अगर आपको स्पेंड ज्यादा नहीं करना है तो रोवा पे जाइए और वहाँ पे कोड एंटर कर दीजिए। आज का कोड 1 आवर के लिए एक्टिव है। सोको इसका नाम है SOKO।

0: सकते हैं जैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स. मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media works. Media that works.
1: Hum. Accurate traffic.
2: You gotta go to the boat show.
3: A few showers and a low of 13 degrees tonight. We've had a crash on the northwestern motorway heading away from town. That's just before Pātaki Road. Delays are pretty much all the way back to town, looking heavy for that stretch. 40 minutes out to Massey from the city. We've also got reports of an incident on the Harbour Bridge. It certainly looks heavy getting out of town. Around 50 minutes to get up to Silverdale.
2: Don't miss the Hutch Wilco New Zealand Boat Show this Thursday to Sunday at Auckland Showgrounds.
4: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
5: Big Points Blitz is on now. Get up to $30 worth of everyday rewards vouchers when you shop at Woolworths or Fresh Choice. Boost the offer in your everyday rewards app, shop in store or online and collect big bonus points. Hurry, Big Points Blitz offer ends 24th of May. T's and C's apply.
6: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: The Drive Show with Sandy and Rusby.
8: Hamesha saath dene wale dost.
9: Brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from $449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
10: Power Drive at 5.
7: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
11: You're listening to The Drive Show with Sandy and Rusbe. वैसे यहाँ पे बिनाइफर का मैसेज आया है. वो बोल रही go to Japan या फिर ईरान जा और ईरान में जाके अपने roots के बारे में पता कर.
12: ये बड़ा अच्छा पता है यार. करना चाहिए तुम्हें रुस्बे.
11: करना चाहिए. आप भी चाहते हो मैं वापस ना आऊँ ना.
12: अभी ईरान के जाने की भी फ्लाइट नहीं मिलेगी तुम्हें तो.
11: Yeah, I think it's a bit difficult and sad right now.
12: काफी ज़्यादा sad. तुमने कुछ देखा over the weekend? कोई series देखी तुमने? कोई movie या series?
11: मैं अभी currently एक Apple TV पे एक series है Shrinking, वो ही देख complete कर रहा हूँ. Sandy, slowly.
12: ओह हाँ, Shrinking तुमने मुझे बताया था इसके बारे में. और मुझे वो
11: देखनी है. सपने versus everyone 2 देखना है मुझे. Season 2 जो उसका है.
12: हाँ, season 1 तो कब का है, लेकिन season 2 yes Amazon पे है वो.
11: बट अभी तक देख नहीं पाया हूँ मैं.
12: मैंने एक मूवी देखी फ्रैंकेनस्टीन. हाँ, इसका नाम है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मूवी. अगर आपको कभी मौका मिले देख सकते हैं. इसमें एक इंसान जो कि यू नो सर्जन भी है, मेडिकल लाइन से है, वो ट्राई करता है हमेशा कुछ डिफरेंट करने के लिए. तो उसका सपना है, सबके सामने प्रेजेंट करता है एक ऐसा ह्यूमन बनाने के लिए. जैसे एक डेड बॉडी होती है, उसमें से वो उसमें कुछ ऐसी चेंजेस करता है कि उसमें लाइफ लेके आ जाए वो.
11: अरे बाप रे.
12: तो ऐसे ही उसका एक्सपेरिमेंट एक कामयाब होता है, लेकिन जिसमें वो लाइफ लेके आता है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके, डिफरेंट पीसेस को कनेक्ट करके वो जिसमें लाइफ लेके आता है, वो क्या होता है उसका. सो उसके ऊपर ये कहानी है. सो
11: क्यों ऐसी क्रेजी चीजें देख रहे हो आप?
12: अरे वो ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है अभी.
11: ट्रेंडिंग है क्या वो?
12: या वन ऑफ द ट्रेंडिंग है वो अभी. तो आई थॉट की गिव इट अ गो. तुम्हें पता है इसके ऊपर एक प्रॉपर दो, मुझे लगा कि दो पार्ट्स है. जो सेकेंड है वो बिहाइंड द सीन्स है. मतलब लोगों को इतना पसंद आया कि बिहाइंड द सीन्स लोगों ने देखना चाहा कि इसको कैसे बनाया है.
11: साउंड्स लाइक धुरंधर.
12: ओ या, धुरंधर की तरह. बढ़िया, काफ़ी अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी है. ये नुक्कड़ नाटक एक ये भी है. एंड इसकी कास्टिंग मुझे ओके ओके लगी. मुझे लगा कि कंसेप्ट बहुत अच्छा है मूवी का.
11: बजट नहीं था ना ये मूवी का कोई भी.
12: यस,
11: होममेड मूवी है ना ये. नॉट फ्रॉम बॉलीवुड
12: एग्जैक्टली. फिर भी अच्छा ट्राई किया जो कास्ट है उन्होंने, अच्छा ट्राई किया. एंड कुछ ना कुछ लेके आए हैं उसमें. सो अगर आपको कभी मौका मिले तो इसको भी आप देख सकते हैं. नुक्कड़ नाटक होते नहीं है ना यहाँ पे. मैंने देखा नहीं है कभी यहाँ पे ऑकलैंड में
11: नुक्कड़ नाटक ना.
12: या
11: नुक्कड़ पे लोग दिखे आपको कि नाटक दिखेगा?
12: वो वाले नाटक तो बहुत दिखाई दिए हैं कि अपने लोग नुक्कड़ में खड़े होके बातें कर रहे होते, नाटक कर रहे होते, लेकिन प्रॉपर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नुक्कड़ नाटक वाला, स्ट्रीट प्लेस जो होते हैं, वो यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखाई दिए.
11: लोग चाहिए ना उसके लिए सैंडी, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि सड़क पे लोग भी चाहिए. आप अभी कोई स्ट्रीट पे जाओ, कितना सुनसान है वो स्ट्रीट, अभी
12: सब मोटरवे पे है ना.
11: हाँ, तो मोटरवे नाटक कर सकते हैं हम जो हम कर रहे हैं ना ऑन एयर.
12: या

0: बातें आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे। हम
1: या You already know what it is.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: believes his win at Watkins Glen today may be his best ever. The Giz erased a 29.2 second deficit in just 17 laps and worked his way through from 24th to win it. And New Zealand cricket has pushed back the new privately backed franchise T20 League to the 2027-28 season.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
3: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशन.
4: स्वर्गीय रमेश चंद्र की पत्नी प्रेम कृष्ण और सरिता गाउंडर की माँ नांदी फीजी की भूतपूर्व निवासी वनट्री हिल की ऐश्वर्यम्मा चंद्र की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार 13 मई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 48 स्टेलेटा कोर्ट रैंडविक जा सकते हैं या प्रेम को 021-2382-412 पर कॉल कर सकते हैं. स्वर्गीय रमेश चंद्र की पत्नी प्रेम कृष्ण और सरिता काउंडर की माँ नांदी फीजी की भूतपूर्व निवासी वनट्री हिल की ऐश्वर्यम्मा चंद्र की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार वेनसडे 13 मई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 48 स्टेलेटा कोर्ट रैनविक जा सकते हैं या प्रेम को 021-2382-412 पर कॉल कर सकते हैं.
3: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
5: शिद्दत के साथ करते हैं.
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: Hamesha saath dene wale dost. Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
5: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
4: छह बज चुके हैं, मतलब ट्रेंड मेकर्स आपके लिए शुरू हो गया है. ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए हम एक थीम लेकर आते हैं या शाउट आउट लेकर आते हैं किसी के लिए. और आज शाउट आउट से पहले सैंडी गुड इवनिंग, वेलकम टू ट्रेंड मेकर्स.
7: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग रुजवे. यस, ट्रेंड मेकर्स में आज हम शाउट आउट देने वाले हैं महबूब कोतवाल को, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड फेमस लिरिसिस्ट हैं.
4: जी, इन्होंने एक्चुअली में ये भी जीता है, मतलब अपना फिल्म फेयर भी जीता है 1996 में.
7: Yeah.
4: Film Fair R.D. Burman Award for New Music Talent.
7: In fact, 90s में 2000s में इन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी है रुजबे, एंड अपने पोएटिक लिरिक्स एंड इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं ये.
4: और सिर्फ 90s और 2000s में नहीं, बट एक्चुअली 2022 में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है.
7: Yeah.
4: जैसे कि हीरोपंती 2 के गाने इन्होंने लिखे हैं कुछ गाने, और एक पोनियन सेल्वन उसका हिंदी डब्ड वर्जन भी उन्होंने किया है.
7: सो आज हम गाने सुनने वाले हैं जो कि महबूब कोतवाल ने लिखे हैं. तो ये गाने जब नेक्स्ट टाइम आप सुनेंगे, नाउ यू नो कि ये गानों के पीछे जो लिरिसिस्ट थे ये कौन थे.
4: एंड एक ऐसा गाना है जो मुझे लग रहा है हर फ्रेंडशिप डे पे ये गाना बजता है.
7: वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. और ये गाना एक्चुअली में फेमस अपने लिरिक्स की वजह से ही हुआ है
4: 100%. और इसीलिए ये गाना, मतलब इस लिरिसिस के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है. अ लॉट ऑफ टाइम्स ना वो लिरिसिस पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता है.
7: या
4: बट विद दिस न्यू सेगमेंट वी आर ट्राइंग टू यू नो पुट सम लाइट ऑन द लिरिसिस्ट एज वेल.
7: द स्पॉटलाइट इज ऑन द लिरिसिस्ट.
4: सो दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप, के और लेस्ली लुइस की आवाज में आपके लिए, ओनली ऑन हम.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज हम shout out दे रहे हैं to a very renowned lyricist
1: Mehboob Kotwal. Yeah, so Mehboob Kotwal के बारे में information भी यहाँ पे आपके साथ हम share कर रहे हैं, जिन्होंने different movies में music दिया है.
0: ये इसके पहले जो गाना आपने सुना अभी, ये गाना भी बहुत ही प्यारा गाना है, AR रहमान की पेशकश थी है, युवा movie का गाना.
1: Oh yeah.
0: और युवा मूवी में भी काफ़ी गाने इन्होंने लिखे हैं. बट एक चीज़ जो मैंने इनके बारे में पढ़ी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी इज दैट ही हैज़ गिवन लिरिक्स फॉर यारो, जो पहला गाना आपने सुना, एंड ऑल्सो द अदर के का हिट गाना जो है प्यार के पल.
1: Yeah.
0: पल रहे या ना रहे.
1: Yeah, beautiful song.
0: ये पल.
1: So KK के लिए काफी गाने लिखे हैं उन्होंने.
0: क्या beautiful. बहुत ही बढ़िया लिखा है.
1: वही ना, इमोशंस अपने अच्छे से ही देते हैं. चाहे तुम हम दिल दे चुके सना भी देख लो, रुस्बे, उस मूवी के जितने भी गाने हैं, तड़प तड़प के उस गाने से लेके एंड देन यू नो ढोल तारो ढोल बाजे, वो सब गाने जो है नहीं नॉट ढोल तारो निम्बुड़ा
0: निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा. एक्चुअली मैं एक और गाना, एक और मतलब हमने मूवी के बारे में सुना है डोली सजा के रखना, बट उसका एक गाना बहुत प्यारा गाना है.
1: एक्चुअली मैंने देखी है ये मूवी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी. इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवी.
0: उसका एक गाना आपको भी पता रहेगा, ये गाने के बारे में आपको तो पता ही होगा, लेकिन जो हमें सुन रहे हैं उनको भी पता होगा. किस्सा हम लिखेंगे, किस्सा हम लिखेंगे. वही वो गाना बहुत.
1: ये अक्षय खन्ना की मूवी थी. इट वाज वेरी नाइस. प्रिया दर्शन की मूवी थी एक्चुअली में ये.
0: अच्छा.
1: सो इट वाज वेरी नाइस मूवी एंड अक्षय खन्ना, और इसमें जो एक्ट्रेस थी उसको हमने हिंदी मूवीज में ज्यादा नहीं देखा, ज्योतिका.
0: राइट, ओके. सो एनीवे बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया. अर्ली इयर्स में इस्माइल दरबार के साथ इन्होंने काफ़ी पार्टनरशिप की, और संजय लीला बंसाली के हम दिल दे चुके सनम पे तो काम किया ही, बट बहुत ही
1: एआर रहमान के साथ काफ़ी काम किया.
0: एआर रहमान के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया, केके के साथ काम किया. और भी डिटेल्स देंगे इनके बारे में, लेकिन कुछ मैसेजेस के बाद.
2: ट्रेंड मेकर्स. किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
3: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka, aur Vecity Omoda JQ ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System. Performance bhi, efficiency bhi, aur All Electric J5 EV, Zero Emissions, Maximum Savings. आज ही Vecity Auto Group पहुँचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. For more info, visit vecityautogroup.nz or search for Vecity Auto Group on socials.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
5: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
4: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: The Vibe Mix Events presents
8: The Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken, Botany Downs on 23rd May at Manureva Netboard from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chakpar alongside Money, Monto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jess Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Kes Manureva and Wicked Chicken Botany.
7: Don't miss out. The Drive Show with Sandy and Rusby.
9: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
10: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: 104.2 FM, Roa app और वेबसाइट के जरिए आपके स्मार्ट स्पीकर्स पे भी आप हमें सुन सकते हैं from anywhere in the world. This is Hum.
1: एंड महबूब कोतवाल, इनको आज हम इनके गानों को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. महबूब कोतवाल जो कि लिरिसिस्ट है, काफ़ी समय से गा रहे थे लेकिन इनको फेम मिला रंगीला के साथ.
0: रंगीला में इनका जो कॉम्बो हुआ था, और ये रंगीला ए आर रहमान के साथ इनका ये पार्टनरशिप हुआ था, शुरू हुआ था.
1: तो इसमें इन्होंने जो गाने लिखे, मुझे लगता है कि रंगीला मूवी में ना बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्स इन्होंने डाला, जैसे कि रोमांटिक गाने भी डाले, एक टपोरी टाइप ऑफ गाने भी डाले. मतलब उन्होंने एक्चुअली में फ्लेवर समझा मूवी की कहानी को, उस हिसाब से गाने दिए जिसकी वजह से फुल एल्बम हिट थी.
0: एंड एक्चुअली जो मैं कहीं इसके बारे में पढ़ रहा भी था कि पूरा जो साउंड है बॉलीवुड का, इसको रीडिफाइन किया था रंगीला मूवी ने. क्योंकि एक लाइक सॉन्ग्स लाइक क्या करे के ना करे के कैसी मुश्किल है, लाइक यू नो दिस वर्डिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट.
1: वर्डिंग्स भी, गाने का स्टाइल भी,
0: गाने का स्टाइल भी काफी डिफरेंट था. एक्चुअली कंप्लीट मूवी भी काफी अलग थी अगर आप वैसे देखा जाए तो. रंगीला मूवी आमिर खान वाज द हीरो, बट ही वाज नॉट प्लेइंग द हीरो, ही वाज प्लेइंग लाइक अ लूजर इन द मूवी, जो यूजुअली इसके पहले होता नहीं था. हीरोज वर ऑलवेज द हीरोज,
1: परफेक्ट
0: होते थे, बट इस मूवी में काइंड ऑफ ग्रे शेड था हीरो का भी.
1: एंड ऑल्सो साउंड ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मूवी के लिए. जो गाने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आज तक एक्चुअली में ये बात सच है. जब हमने धुरंधर देखी कि एक साउंड ट्रैक और गानों के साथ मूवी बड़े अच्छे से कैरी होती है, एंड सेम थिंग तब भी था. सो रंगीला मूवी का ये हिट ट्रैक अभी आप सुनने वाले हैं. तुम्हें पता है ही एक्चुअली बिकेम द लिरिसिस्ट फॉर देवदास मूवी एज वेल, बट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस द प्रोजेक्ट वेंट टू अनदर राइटर.
0: और ये क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट जो इनका हुआ था वो इस्माइल दरबार के साथ ही हुआ था, जिनको ये सबसे पहले बार मिले थे.
1: वाओ.
0: सो या बिकॉज ऑफ दैट उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था बाद में बाय नुसरत बदर.
1: ओके.
0: बट अभी के लिए रंगीला मूवी का ये बहुत ही कमाल गाना आपके लिए.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आज महबूब कोतवाल जो एक lyricist है जिनके गाने आपने कई बार सुने हैं and not just emotional, romantic, melodious like ऐसे गाने नहीं लेकिन पम्पी ट्रैक्स को भी इन्होंने लिरिक्स दिया है.
1: Yeah, so mix of songs इनके गानों में emotional depth भी आप देखेंगे, meaningful भी देखेंगे, dance numbers भी देखेंगे. हर गाना ये लिखते आए हैं. मुझे नहीं लगता रुजबे के आज के टाइम पे जो लिरिसिस्ट बनते हैं वो एक ही जॉनरा की ओर सोच, मतलब डिफरेंट जॉनरास की ओर सोच पाते हैं. कई बार क्या होता है कि आप एक ही जॉनरा के ऊपर फोकस करते हो कि भाई मुझे अगर शायरी लिखनी है, सैड शायरी लिखनी है, यू नो, इसी के ऊपर फोकस करना है या गाना इसी के ऊपर फोकस करना है. बट टू बी एबल टू राइट एवरीथिंग,
0: वर्सटाइल, एकदम
1: वर्सटाइल.
0: क्योंकि अभी देखो ना, शक्ति मूवी का जो गाना है इश्क कमीना, बहुत पॉपुलर गाना, शाहरुख खान के ऊपर फीचर्ड, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, इश्क कमीना, लाइक यू नो, इट्स फॉर समवन हु इज नोन फॉर उर्दू पोएट्री टू कम अप विद समथिंग लाइक सो
1: लाइक समवन फ्रॉम बॉम्बे मूवी के जिसने गाने लिखे है, तू ही रे, कहना ही क्या, वो इश्क कमीना लिख रहा है.
0: या सो रेंज, काफ़ी रेंज थी. बट या ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस उनका थोड़ा काम बीच में ये भी हो गया था, स्टॉप भी हो गया था
1: एक्चुअली मे 2000s में ही स्टेप्ड अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो काफ़ी साल लगे उनको कमबैक करने के लिए.
0: जी, और कमबैक की स्टोरी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम दिल दे चुके सनम का ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल ट्रैक आपके लिए.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: Hamesha saath dene wale dost.
2: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku. Accurate traffic.
3: Club Rebel.
4: A low of 13 tonight with a few showers across Auckland. We do have a crash on Upper Harbour Highway heading westbound, so away from the northern motorway as you approach Greenhithe Road. Delays are starting to back up there with a lane blocked. If you're getting out of town on the northern motorway, there's a bit of traffic around Oniwa, and the southwestern looks very heavy just getting onto the southern motorway.
3: Club Rebel. Shop and be in the draw to win ultimate VIP sports experiences. T's and C's apply.
5: Discover the magic at Go Bananas Chaike, आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो हम हमेशा आपके पास हैं
6: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस
5: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स और सबसे खास बात गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम तो देर मत कीजिए कॉल 0800 46 26 26 टुडे
6: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस टीज एंड सीज अप्लाई

0: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
1: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
2: अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz

0: बटा लव इश्क बबुआ।
1: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं।
4: ट्रेंड मेकर्स ये शो जारी है आपके लिए और जिसमें कम्युनिटी की बातें भी आपके लिए हम लेकर आते हैं और कम्युनिटी में काफी इवेंट्स हो रहे हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।
5: भोजन मेला फूड कार्निवल हो रहा है 17th मई को 11 AM to 4 PM। इसके लिए आप रामा रामा में पहुंच सकते हैं, 378 अरारीमो रोड रामा रामा में, साउथ ऑकलैंड में।
4: एंड 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे ये होने वाला है सैटरडे 16th मई को और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग रहने वाली है ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकग्निशन। मलावेला कम्युनिटी सेंटर 16 वाउकोरी प्लेस मैंगरी, यहाँ पे आप जा सकते हैं 4:30 बजे शाम से लेकर 8:30 बजे तक, जहाँ पे नेटवर्किंग आप कर सकते हैं, टी एंड स्नैक्स रहेंगे, लेकिन आप आ जाइएगा जरूर शार्प एट 4:30, फ्री एंट्री रहेगा यहाँ पे।
5: वाइब मिक्स इवेंट आपके लिए ग्रैंड मस्ती नाइट लेके आ रहे हैं 23rd मई को, जिसमें फीजी के कुछ फेमस अनाउंसर्स रहने वाले हैं एंड डांसिंग लेजेंड्स भी रहने वाले हैं एंड ऑल्सो कुछ स्किट्स रहेंगी स्टेज पे, बहुत सारा एंटरटेनमेंट रहेगा। केतन गाने वाला है वैसे स्टेज पे, केतन हमारा अपना केतन कुमावत
4: जी, वो भी रहेंगे और बहुत ही ये बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया ये शो होने वाला है जिसका आप हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। टिकट्स अवेलेबल है काफ़ी जगहों पे जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बट यस, वाइब मिक्स इवेंट प्रेजेंट्स द ग्रैंड मस्ती नाइट, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। आज हम महबूब कोतवाल, जिनको प्यार से महबूब नाम से जाने जाते हैं, वो लिरिसिस्ट है ये, इनको हम शाउट आउट दे रहे हैं इनके गानों को। पिछले लिंक में हमने कहा था कि ड्यू टू हेल्थ रीजंस ही हैड टू टेक अ ब्रेक मिड 2000s में एंड जस्ट रिसेंटली कुछ साल पहले, अराउंड 4 साल पहले इन्होंने री एंट्री मारी बॉलीवुड में विथ टाइगर श्रॉफ्स और वो गाना है आपको भी सुनाने वाले।
5: ये गाना काफी हिट हुआ था,
4: अरे बहुत हिट गाना था ये और पॉपुलर पंपी ट्रैक था ये। सो या दिस इज विसल बजा 2.0 ओनली फॉर यू ऑन हम।

0: listening to हम playing Bollywood's biggest hits और देखते ही देखते हमारे कल्टी मारने का टाइम यहाँ पे आ गया है, लेकिन जाने से पहले
1: जाने से पहले आपके लिए प्ले किए आज हमने महबूब कोतवाल के गाने, उनके लिखे हुए गाने, तो ये गाना भी एक बहुत ही बड़ा हिट जो था ये भी हम सुनते जाएंगे. वन ऑफ द फ्यू लिरिसिस्ट आई विल से जिनके गाने 90s में हिट हुए और आज तक इनके गाने ट्रेंड करते हैं, आज तक इनके गाने प्ले किए जाते हैं.
0: हमने रियलाइज नहीं किया लेकिन इनके कुछ गाने ऐसे हैं जो एंथम बन चुके हैं और ये गाना तो डेफिनेटली जो हम अभी आपको प्ले करेंगे आपके लिए प्ले करेंगे. दिस इज बीन एन एंथम फॉर पीपल फ्रॉम इंडिया.
1: या बहुत सालों से बहुत सारी जगह पे जब भी एक यू नो इंडिपेंडेंस डे होता है या फिर रिपब्लिक डे होता है, ऐसे डे पे ये गाना डेफिनेटली प्ले हो रहा होता है हर जगह पे.
0: बात कर रहे हैं हम गाने की जिसका नाम है वंदे मातरम
1: और ये लिखा है महबूब कोतवाल ने. इंटरेस्टिंग टू नो, आई नेवर हैड आइडिया. इतने जो हमने आज गाने प्ले किए हैं यारो दोस्ती से लेके यहाँ तक, मुझे नहीं पता था कि राइटर कौन है इनके.
0: सो या टुडे वी नो समथिंग बेटर, बट या हमारा साथ देते रहिएगा. कल मुलाकात होगी आपसे ड्राइव शो में 4 से 7 के बीच.
1: बाय
0: बाय.

0: नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है,
1: रंग केसर शूर।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
4: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
5: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping aid beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Medical or Puke Kohe, where dreams begin.

0: No Logic Monday.
1: No Logic Monday जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जिसमें कुछ लॉजिक नहीं होता है और गाने भी वैसे ही आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। थाईलैंड की ये स्टोरी है, पटाया से हमने स्टोरी को लिया है। 3 January 2026 को हुआ है, फेली रीसेंट स्टोरी, जहाँ पर एक टाई फॉर्चून टेलर ने एक महिला का जो फ़ोन है आईफोन को चोरी कर लिया आफ्टर प्रिडिक्टिंग दैट शी वुड लूज समथिंग वैल्यूबल। ये जो विक्टिम है अपेरेंटली यहाँ पर गई थी टू सीक स्पिरिचुअल गाइडेंस, इन्होंने पे किया था फॉर हर सर्विसेज और इंस्टेड गॉट रॉब्ड एज अ बोनस। पुलिस ने लेटर इस महिला को ट्रैक डाउन किया और इस साइकिक थीफ को गिरफ्तार किया। तो लॉजिक इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आप पे करते हैं किसी ज्योतिष के पास जाने के लिए, आप गाइडेंस स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए जाते हैं और वही ज्योतिष आपको बताता है कि आप अपना कुछ वैल्यूबल खो दोगी और तुरंत कुछ मोमेंट्स बाद मौका पाते ही यही फॉर्चून टेलर ने ही उनका फ़ोन चोरी कर लिया। एनीवे, मैं और भी इंटरेस्टिंग खबरें आप तक लेकर आऊँगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। ये जो अगला गाना है ये भी कम लॉजिक इसमें नज़र आता है। समोसे में आलू जब तक रहेगा तब तक शालू इनकी रहेगी, तो ऐसा ही कुछ इसमें लॉजिक है। आप खुद ही सुने और बताएं कि आपको क्या लॉजिक नज़र आता है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: Why nonsense makes perfect sense. No Logic Monday. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रात 12 तक हमारा साथ रहेगा, लेकिन फिलहाल 9 तक जारी है आपके लिए No Logic Monday. No Logic की बातें करें तो ये स्टोरी हमारे हाथ लगा है. टोक्यो जापान में ये घटना घटी है 2 जनवरी ऑफ दिस ईयर, जहां पर एक आदमी ने अपना पूरा कपड़ा उतार दिया मोमेंट्स आफ्टर ग्रीटिंग जापान्स एम्परर. ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हुआ था इसी साल. सिक्योरिटी ने जल्दी से इस आदमी को एक ब्लैंकेट से ब्लैंकेट को ओढ़ाया, और फिर काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर जो थे कन्फ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है, और किसी को नहीं पता है कि गेम प्लान इसके बाद क्या हुआ. अब ज़रा सोचिए, कोई ग्रीट करने आता है एम्परर को और पूरे कपड़े उतार देते हैं. अभी ये मुझे इसमें भी लॉजिक नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इस आदमी को पता है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने जा रहा था इनके साथ में अगर ये ऐसा करते, और वो भी जापान में, लेकिन उन्होंने ऐसा किया. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, और भी एनोलॉजिक गाने आपको सुनाते हैं. ये जो गाना है, जैसे हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि आपको पाप चढ़ेगा या पाप लगेगा, अब तो गाने में भी अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को लोग बोल सकते हैं, और ऐसा ही कुछ गाना ये है जिसमें ये चीज़ बताया गया है. आप सुने, और भी इंटरेस्टिंग खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे. सुनते रहो नो लॉजिक मंडे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.

0: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. No logic Monday जारी है. ऐसे गाने जिनमें logic कम है, lyrics कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं. It doesn't make sense at all or some sense. लेकिन फिर भी अच्छे चलते हैं गाने, लोग पसंद करते हैं. तो ऐसे ही गाने कुछ हम लेकर आए हैं आपके लिए. Interesting खबरें भी लाते हैं No logic Monday में, जहाँ पर कुछ stories में logic नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हुआ है हमारे आस पास, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं. चाइना की स्टोरी है. 6th February of this year ये स्टोरी पब्लिश हुई है, जहाँ पर एक महिला ने मल्टीपल कार एक्सीडेंट्स को कोस किया आफ्टर शी सीक्रेटली एडजस्टेड ए ट्रैफिक मिरर टू इम्प्रूव फेंगशुई. क्या आप फेंगशुई में बिलीव करते हैं? जो आई बिलीव वही है ना, कि आप अपने घर के फर्नीचर को रीअरेंज करते हैं कि किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, ताकि गुड लक आए और बैड लक नहीं आए. तो इंस्टेड ऑफ रीअरेंजिंग फर्नीचर, इस महिला ने शी रीअरेंज्ड रोड सेफ्टी. और पुलिस वर अंडरस्टैंडेबली नॉट इम्प्रेस्ड विद द स्पिरिचुअल ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो ये लेकर आने की कोशिश कर रही थी. ऐसे भी लोग रहते हैं और चाइना में ये हुआ है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. एक और गाना सुनाते हैं. इस गाने में भी बहुत लॉजिक मुझे नज़र नहीं आया. आप सुने और हमें ज़रूर बताएं 5599 पर कि आपको इसमें कुछ लॉजिक नज़र आ रहा है या नहीं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Crispy on Rover, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo, and used cars with big deals, big choices, and big savings. On now, but ends Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany, and Pukekohe.
2: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो. तो याद रखिए, प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए. रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है. सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स. Tamaki Turuki, ऑल टुगेदर ऑकलैंड.
0: The beat of Bollywood.
3: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: हम. Night Cafe on Hum. Where sense takes a break.
4: No Logic Monday.
5: नो लॉजिक मंडे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इंटरेस्टिंग खबरें भी आपके लिए हम लेकर आते हैं. अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कुछ लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है. तो ये ओम हाना यूनाइटेड स्टेट्स की स्टोरी है. 1 जनवरी ऑफ दिस ईयर पब्लिश किया गया है और यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस का एक फ़्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा अर्जेंटली आफ्टर इसमें जो एक पैसेंजर था, शी स्टार्टेड शेडो बॉक्सिंग इन द आइल और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, दिस इज सिमुलेशन. अदर पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाह रहे थे, नहीं कि उनको ऐसा कोई लो बजट साईफाई मूवी नहीं देखना था, लेकिन उनको बर्दाश्त करना पड़ा इनको. और इससे पहले कि ये और लंबा अपने इस शेडो बॉक्सिंग में जाती है, राउंड 2 राउंड 3 तक, वहीं पर प्लेन को जल्द ही एक जगह पर लैंड किया गया बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस. तो ऐसा भी होता है कि लोग प्लेन में खड़े होकर ऐसे भी करने लगते हैं. आपने शायद लोगों को राउडी होते सुना होगा, नशे में होकर काफ़ी कमोशन क्रिएट करते सुना होगा, लेकिन ये महिला पूरा होल एयरलाइन को डाइवर्ट कर दिया जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू शेडो बॉक्स इन द आइल और ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगी, दिस इज सिमुलेशन. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. एक और बहुत ही प्यारा गाना आपको मैं सुनाता हूँ, ये गाना आप ज़रूर इन्जॉय करें और आप हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको इस गाने में कुछ लॉजिक नज़र आता है या नहीं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: બાપુ આ ગાયન તો જબરજસ્ત હિટ છે.
1: No Logic Monday.
2: You're listening to Night Cafe on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ फिलहाल अभी आज का स्पेशल सेगमेंट No Logic Monday. 9 PM तक ये चलता रहेगा और कुछ ही देर तक और ये चलेगा. इंटरेस्टिंग खबरों में No Logic News में ये एक स्टोरी मैंने पढ़ा और सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करता हूँ. रोबोट डॉग्स जो टेक बिलियनियर्स के फेसेस को पहन कर चल रहे थे, इन्होंने एक्सक्रीट किया AI जनरेटेड आर्ट. और ये हुआ था आर्ट बेसल मायामी बीच में. और समहाउ कलेक्टर्स जो यहाँ पर थे उन्होंने 100,000 USD पे किया फॉर द आर्ट वर्क. और मॉडर्न आर्ट ऑफिशियली एंटर्ड इट्स फाइनल एवोल्यूशन स्टेज, जहाँ पर रोबोट डॉग्स वेयरिंग बिलनिया फेसेस ने जो एक्सक्रीट किया उसका दाम $100,000 लगाया गया. ये 6 जनवरी ऑफ दिस ईयर की स्टोरी है फ्रॉम USA मायामी बीच में ये हुआ है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. No Logic Monday में आज के लिए बस इतना ही. अगले हफ्ते पर मिलते हैं विद मोर No Logic स्टोरीज और No Logic सॉन्ग्स. फिलहाल एक और गाना आपके लिए मैं पेश करने जा रहा हूं, और ये भी एक और गाना है जिसमें लॉजिक कम दिखाई देता है या सुनाई देता है मुझे.

से भी हो सकता है ये प्यार तो।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. NZ Music Month अभी जारी है फिलहाल. अगर आप भी एक लोकल सिंगर है और आपके बहुत सारे प्यारे गाने आए हैं तो बैक योर बैकयार्ड बीट्स ये हमारा थीम है, क्योंकि हम लोग लोकल आर्टिस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको आगे आने का मौका भी दे रहे हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग लोकल म्यूजिक एज वेल. अगर आप कोई गाना सुनते हैं जो इस महीने भर बजाया जा रहा है रेडियो पर, हम पर 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM और 10 PM ऑन वीकडेज, तो ये ट्रैक्स को आप वोट कर पाएंगे. अगर आप इस सॉन्ग को पसंद करते हैं या रिपीट मोड पर सुनना चाहते हैं या आप स्किप करना चाहते हैं, जो भी आपकी राय है आप उसको अपने वोट्स के ज़रिए दे. टेक्स्ट ऑन 5599 विद कीवर्ड MM. और एवरी इंटरेक्शन आपको, आपका जो इंटरेक्शन होगा हेल्प करेगा आपके फेवरेट आर्टिस्ट को टू क्लाइम इनटू द टॉप 3. और जो गाना टॉप 3 पर आएगा वो रोवा पर भी फीचर किया जाएगा. हमारे सोशल्स पर जाए, अपने फेवरेट आर्टिस्ट के वीडियो देखें, लाइक शेयर कमेंट करें टू शो योर सपोर्ट. और विनर विल बी डिसाइडेड बाई टोटल एंगेजमेंट जो आपके बदौलत होगा और आपके वोटिंग के आधार पर विनर को चुना जाएगा. अगर आप एक सिंगर हैं, मैं आपको बहुत ही जल्दी बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप इस NZ Music Month में भाग ले पाएंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ ये सिर्फ म्यूजिक नहीं ये है इमोशन पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स गूगल PFSL टुडे And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: Denny didn't think he needed a DVS system.
3: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
2: But it didn't sort the whole house, did it, Denny?
3: Nah, only one room. It was just too noisy.
2: So Denny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज तो उसे सीधा बिन में ना डालें पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ऑलटुगेदर ओकलैंड
5: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now, but end Sunday at South Auckland Motors, Manukau, Botany and Pukekohe.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
6: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Night Cafe on Hum. A moment. Krishka Magic. Only on Hum.
7: एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे साइंस की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये सभी कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे आज आपके लिए नाइट कैफे में इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए हम लिख रहे हैं AI का ज़माना चल रहा है तो यहीं पर एक साइंस से संबंधित जानकारी ये है कि AI कुड डिस्टॉर्ट ह्यूमन रियलिटी ये स्टोरी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगा आज नाइट कैफे में सुनते रहो हम क्रिश का साथ है

0: listening to Krish.
1: Let's go.
2: अभी AI का ज़माना चल रहा है और इसमें प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं आगे चलकर, ऐसा मानना है रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटा. यहाँ पर इन्होंने कहा है कि AI चैटबॉक्स काफ़ी फॉल्स बिलीव्स लोगों में ला सकते हैं इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग देम. स्टडी ने वॉर्न किया है कि लोग हेलुसिनेट कर सकते हैं विद AI थ्रू रिपीटेड कॉन्वर्सेशंस, और कहा गया है कि चैटबॉक्स काफ़ी सपोर्टिव और इमोशनली वैलिडेटिंग साउंड करता है और कॉन्स्पिरेसी थियरीज और डिल्यूजन्स में फील मोर रियल इनके थ्रू, और लोनली और वनरेबल यूजर्स काफ़ी ईजिली और स्पेशली अफेक्ट हो सकते हैं बाय AI कंपेनियंस दैट ऑलवेज अग्री विद देम. अगर आप कुछ सवाल पूछते हैं काफ़ी टाइम AI आपसे अग्री करेगा जस्ट टू गिव यू दैट कम्फर्ट, और उन पर आप काफ़ी रिलाई करने लगेंगे. रिसर्चर्स वांट स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड, अफेक्ट चेकिंग और लेस ओवरली अग्रीएबल AI बिहेवियर, क्योंकि AI रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा जो भी आपको बताता है. डिस्क्लेमर हमेशा इनमें होता है, और जो लोग इन पर निर्भर हो आएंगे आगे चलकर, क्योंकि अभी होने लगे हैं और आगे चलकर और स्ट्रांगली होने लगेंगे, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है जैसे इस रिसर्च ने पब्लिश किया है. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूं और 12 तक हमारा साथ रहेगा.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: Welcome back, everyone. You're listening to number one. Hum playing Bollywood's biggest hits. NZ Music Month jari hai. Agar aapke paas ki original music hai, it's not late to be part of it. Aap apna best track apne bio ke saath buzz@humfm.com par bheje ya phir mm likhe to 5599 aur aapko details mil jayega. Aur artist yani aaj agar artist details dekha jaye to Vijay Verma ko aap sun payenge. Inka jo gana in fact aapne sun liya hai Fiji Girmit par. Inhone ek bahut hi pyara gana banaya hai jo aaj aapne सुना बैक टू बैक सॉन्ग्स में, जो 30 मिनट्स के सेगमेंट में हमने इस गाने को रखा था. और बहुत ही प्यारा ये ट्रैक विजय ने पेश किया है. ट्यूसडे जसराज बसरा का गाना रहेगा, वेंसडे एंड थर्सडे सेंसी प्रभाकर. और सेंसी प्रभाकर जो है ये एक इंडियन R&B आर्टिस्ट है फ्रॉम साउथ ओकलैंड, क्रिएटिंग म्यूजिक स्ट्रेट फ्रॉम द सोल. एंड शी हैज़ रिटन ओवर 350 सॉन्ग्स इन्होंने लिखे हैं. और काफ़ी स्मूथ साउंड और इमोशनली ऑनेस्ट लिरिसिज्म इसमें होता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ रात 12 तक.

0: You get money, get cash. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 0984699934 फॉर सर्च PFSL T&Cs लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: Night Cafe.
6: You're listening to number 1. हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रात 12 तक हमारा साथ रहेगा. Night Cafe जारी है. 11th मैं है. Online listeners आपको याद करते हैं. Truck drivers और taxi drivers, Uber drivers आपको शामिल करते हैं. काफी factory workers हैं around. काफी लोग warehouse में काम करते हैं. Fruit packing में आप काम कर रहे हैं. Bakery में अगर आप काम कर रहे हैं. Overnight ये चलता रहता है. आप हमारा साथ दे रहे हैं. Thank you so much. ऐसे ही साथ देते रहिएगा. क्योंकि आपके लिए आपके favorite songs हम लेकर आएंगे. कुछ ही देर में color changing Katy did discovery पर जानकारी देंगे ये पनामा रेन फॉरेस्ट में हुआ है मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ
7: लो जी धम से गिरी तेरी काई शुरू तेरी फाइट

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. पनामा रेनफॉरेस्ट में ये डिस्कवरी हुआ है 2 May ऑफ दिस ईयर, जहाँ पर साइंटिस्ट ने एक रेयर ब्राइट पिंक कैटिडिड को फाइंड किया है इन अ रेनफॉरेस्ट, और इट ग्रेजुअली शिफ्टेड कलर इनटू ग्रीन कैमोफ्लेज ओवर टाइम. और रिसर्चर्स का मानना है कि इससे इनको हेल्प होता है विद सर्वाइवल एंड हाइडिंग फ्रॉम प्रेडेटर्स. और इस फाइंडिंग से काफ़ी बायोलॉजिस्ट सरप्राइज्ड है, जो अभी फ़िलहाल इंसेक्ट एडेप्टेशन स्टडी कर रहे हैं. और ये भी कहा गया है कि इससे ऐसा लग रहा था कि लाइव स्किन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या स्विचिंग मोड हो रहा है बाय द एडेप्टेशन स्किल्स ऑफ दिस इंसेक्ट. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. अगले घंटे पर मिलते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर म्यूजिक.

0: Night Cafe on Hum. Aapka moment, Krish ka magic, only on Hum.
1: Welcome back everyone, you're listening to Night Cafe. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ 12 तक रहेगा. This is our final hour. इस घंटे पर चर्डल कॉम्पिटिशन और साथ में फ्लाई अवे फ्रेंजी पर जानकारी देंगे. रिटर्न ट्रिप टू फीजी जीतने का मौका रहेगा. लाजवाब ये मौका है आपके पास. बट फर्स्ट अप लेट्स हियर 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक, जो बहुत ही प्यारा सेगमेंट है. कुल मिलाकर 7 गाने आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो आप बहुत इन्जॉय करेंगे. एन्जॉय एवरी वन.

0: Jay on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
5: वो भी I love you वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया? वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
7: क्यों क्या हुआ
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424
8: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. आए और enjoy करें इनका sophisticated dining experience, जहां पर आपको तरह तरह के flavors मिलेंगे. Creative Asian fusion dishes से लेकर zesty seafood तक, साथ में refreshing cocktails, सब कुछ एक बहुत ही elegant और stylish अंदाज में. ये open है for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
9: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
10: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे
11: चूड़ी कंगन पायल बाली झुमके और चोकर ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं समझे
10: सोना संसार पापा टोटो जहां था वहां अभी भी है शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो
12: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो सोना संसार यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Go.
13: Zabardast hits.
14: Shuru ho jaye to rukte nahi.
13: Playing Bollywood's biggest hits.
15: Hum.
13: Night Cafe on Hum.
16: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. अगर आप एक कीवीवुड विजिट है तो आपको उसको टेस्ट पे लाना होगा और जीतना होगा कैश हमारे साथ विथ चर्डल हर दिन कीवीवर्ड सेइंग या फ्रेज आपको दिया जाएगा एंड यू हैव टू क्रैक इट क्विक और शापा आप होते हैं तो बेटा आपका स्कोर बनता है और चांसेस ऑफ विनिंग होता है $100 अ डे जीतने का मौका रहेगा ईच डे यू प्ले यू इन द ड्रॉ टू विन $100 और एक गेम इक्वल्स वन एंट्री फास्ट आप आंसर करेंगे हिंट्स को अवॉइड करते हुए बोनस एंट्री आपको मिलेगा $7,000 है टू बी वन तो आज ही रोवा ऐप डाउनलोड कीजिए अगर नहीं है और अगर है तो आज ही इसमें भाग लीजिए ताकि आप शानदार इनाम हमारे साथ होकर जीत सकते हैं

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. पूरे हफ्ते भर नाइट कैफे में लेकर आऊंगा आपके लिए. अब कल मिलते हैं, ट्यूसडे है, फिर वेंसडे और थर्सडे को भी हमारा साथ रहेगा ड्यूरिंग नाइट कैफे 8 to midnight ये सफर. हैव अ रेस्ट, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर नाइट और साथ ही में हैव अ वंडरफुल एंड एंजॉयबल एंड ब्लेस्ड डे टुमारो. गुड नाइट एवरीवन.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: पट छपट चल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू,
1: कभी 101 कभी 102,
0: उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू,
1: कभी 101 कभी 100।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दूसरी तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल. Night Flight.

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: बहुत आएगा।
1: नाइट फ्लाइट ऑन हम
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
5: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
4: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
5: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे promotion दे देगा. और ये coffee? Lukewarm. A taste बिल्कुल heartbreak जैसा. Please sir, तू cubicle के लिए नहीं बनाए. तू beach के लिए बनाए. तू life को enjoy करने के लिए बनाए.
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 09278 8600.
3: Playing Bollywood's biggest hit.

0: बेस्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM।
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे।
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
8: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
9: You gotta go to the boat show.
0: Hum, time check.
2: Good morning, it's time. 1 minute ho raha hai, 6:00.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with Logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The general public are expected to self-manage their fuel use in the unlikely event of restrictions. Phase 4 of the government's response plan would put non-critical workers at the bottom of the priority list. Finance Minister Nicola Willis says it'll come down to common sense.
11: Make things simple for the New Zealand public. We're not going to ask every Kiwi to submit a fuel reduction plan. Instead, we're just going to say, look, we'll have a limit on how much you can buy at the pump.
10: Te Pāti Māori's Orini Kaipara has cleared up her position on the internal split. The Tamaki Makaurau MP says comments made about her leaving in favour of the new Tītai Tokoro party are untrue. Cold water is being thrown on fears of a mass Hunter virus outbreak. At least one New Zealander will be repatriated from the stricken cruise ship. David Heyman of Massey University says it's different to COVID.
12: It should be easier to manage than COVID, which was so much more transmissible, and you had asymptomatic cases.
10: Donald Trump has described the proposal put forward by Iran to end the war as stupid and garbage. The president says the ceasefire is also weak.
13: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
10: Football updates brought to you by Hisense. Tottenham manager Roberto De Zerbi is happy this morning's crucial English Premier League match against Leeds is being played in London. Relegation-threatened Spurs have won just 2 of their 17 home matches this season, but De Zerbi insists it's just a coincidence.
14: We are making not too many points for I don't know why, but it's a pleasure to play in that stadium.
10: Kick off in an hour, and Kiwi Ryan Fox has slipped one spot in the latest World Golf Rankings to 56.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
15: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
2: सूचित किया जाता है स्वर्गीय रमेश चंद्रिका की पत्नी यानी प्रेम कृष्णा और सरिता गाउंडर की माँ नैनी फिजी की भूतपूर्व निवासी यानी वन ट्री हिल की ईश्वरी अम्मा चंद्रा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 48 स्टेलाटा कोर्ट रेनविक पार्क जा सकते हैं या प्रेम को 02123824 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे, स्वर्गीय रमेश चंद्रिका की पत्नी यानी प्रेम कृष्णा और सरिता गाउंडर की माँ नैनी फिजी की भूतपूर्व निवासी वन ट्री हिल की ईश्वरी अम्मा चंद्रा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 48 स्टेलाटा कोर्ट रेनविक पार्क जा सकते हैं या 02123824 पर प्रेम को कॉल कर सकते हैं।
15: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल टेम्परेचर 12.9 डिग्रीज, आज हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड है, बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर आज का रहेगा 10 डिग्रीज तक. मौसम के लिए कहा गया है कि रहकर बारिश होगी, सुबह से शाम तक बारिश ही बारिश आज रहेगी. सनराइज होगा अगले घंटे 7:09 AM पर, सनसेट 5:26 PM पर.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
2: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. फिलहाल 5 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 6:00 और आज है ट्यूजडे 12th of May. वाओ, 2 days in a row और मैं पूजा गई हूँ आज आपका साथ देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. अगेन माइनस विजय टुडे, बट वादा यही कि आज का ये सफ़र भी आपके लिए हम अपनी ओर से भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर आएंगे. उम्मीद है कि आज के सफ़र का मज़ा उठाने के लिए आप एकदम तैयार है, जहाँ कहीं भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं. आप सभी का स्पेशल वेलकम है आज के सफ़र में ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ ऑफकोर्स हम कर रहे हैं शुरुआत, तो एक क्विक कैचअप तो करेंगे ही. खबरों में क्या कुछ है, विल कीप यू अपडेटेड बिकॉज ओ माय गॉड, देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. ऐसा लगता है कि पल के झपकते ही चीजें जो है तुरंत बदल जाती है, और इनसे अपडेटेड रहना हमारे लिए भी जरूरी है ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आसपास भाई हो क्या रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके लिए आपके फेवरेट गाने तो लेकर ही हम आएंगे. नॉट फॉरगेटिंग कि इस घंटे हम शुरुआत करेंगे सनी साइड अप, यानी कि एक हैप्पी स्टोरी के साथ, विद ऑल द लव एंड ऑल द पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी ब्रेकफास्ट शो की, ओनली ऑन हम

0: Inside Up.
1: तो हमने कहा था कि ये आपके लिए लेकर आएंगे आज की हैप्पी स्टोरी, और हैप्पी स्टोरी में एक बहुत ही यू नो ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप के बारे में आज आपके लिए हम लेकर आए हैं. ये एक रियल इंसिडेंट बोल लो या फिर सिचुएशन बोल लो या फिर कहानी बोल लो, जो भी आप बोल लो, ये बेसिकली सच में हुआ है एंड अपेरेंटली इसके बारे में काफ़ी बातें जो है ये भी हो रही हैं. नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेटिंग योर फ्रेंड्स अचीवमेंट्स. जब भी हम कुछ करते हैं लाइफ में, इट इज़ यू नो समथिंग जिसके बारे में हम खुद खुश होते हैं या फिर हमारे आसपास के लोग हमें अच्छा फील कराते हैं, तो बताते वाओ यू हैव डन अ रियली रियली गुड जॉब अबाउट इट. बट इफ़ योर फ्रेंड्स अराउंड यू, दे मेक यू फील लाइक कि भाई आपने जो अचीव किया है इट इज़ सो अमेजिंग, आपके अचीवमेंट के लिए इतना खुश हो जाते कि यू नो कहीं दूर से भी वो आपको आकर विश करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड. अपेरेंटली एक वीडियो जो है ये ऑनलाइन वायरल हो रहा है. वीडियो का एग्जैक्ट लोकेशन किस शहर का है वो नहीं पता, पर इट इज़ समवेयर इन इंडिया. और आदित्य _ किरण, इन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जाकर शेयर किया, जिसके बाद इट वेंट वायरल. सो व्हाट हैपेंस इज दोस्तों के जो यू नो बेसिकली सेलिब्रेशन को लेकर अवर अचीवमेंट्स ये दिखाया गया है, जहाँ पर एक लड़का है और वो अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा है इस वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ बिकमिंग अ पुलिस ऑफिसर, फाइनली बिकमिंग अ पुलिस ऑफिसर. बट व्हाट हैपेंस इज कि मिड सेलिब्रेशन एक गाड़ी आकर इनके घर के बाहर रुकती है और उसमें से उनका एक बहुत ही करीबी दोस्त जो है ये निकलकर भागते हुए अपने दोस्त की ओर जाता है, जो अपेरेंटली उनसे बहुत दूर किसी दूसरे शहर में रहता है. एंड ही सरप्राइज्ड हिज फ्रेंड ऑन द डे ऑफ सेलिब्रेशन, जब सब सेलिब्रेट कर रहे थे, दैट फाइनली दिस पर्टिकुलर बॉय has become a police officer. And this celebration video and this gesture of the friend traveling miles away just to celebrate an achievement of a friend, jo aajkal log waise bhi social media par hey congrats likh kar dete hain, inhone physically itne dur se travel karte hue unko wish kiya, so it has become really very popular. And I think it is a very beautiful thing to do, isn't it? Physically kisi ke liye समय निकालना, जाकर उनसे मिलना, उनकी खुशियों में खुश होना, उनकी कामयाबी में उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना इज डेफिनेटली अ बिग बिग डील.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: हे देखो आ गए.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल, और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से.
6: Gold Coast is on sale now at Qantas. From sun-soaked beaches and luxury retreats to lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Book now at Qantas.com. Hurry, sale ends Tuesday, May 19. Terms and conditions apply.

0: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी good branch भी है.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
4: ग्लोबल हेडलाइंस में आज आपके लिए जो डिटेल्स हम लेकर आए हैं, सबसे पहले जो टेंशन है इन द मिडल ईस्ट रिमेन अ मेजर इंटरनेशनल कंसर्न, विद द यूएन अर्जिंग की डी एस्केलेशन जो है ये हो अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड रीजनल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं टू यू नो लेट देम नो कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या इसका असर पड़ रहा है. वैसे एक और एक खबर जो है ये भी सामने आ रही है, जहाँ पर कहा गया है कि सेवरल कंट्रीज आर एंटरिंग इंपॉर्टेंट इलेक्शन पीरियड दिस मंथ, जिसमें पार्लियामेंट्री और जनरल इलेक्शंस दोनों शामिल है. पार्ट्स ऑफ यूरोप यूरोप अफ्रीका एंड कैरिबियन कंट्रीज जो है यहाँ पर भी ये होने वाला है. उसके साथ साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट्स वॉर्न कर रहे हैं कि एक पॉसिबल सुपर एल नीनो इवेंट जो है ये हो सकता है लेटर दिस ईयर पोटेंशियली, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर, फूड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, ड्राउट्स और रिकॉर्ड ग्लोबल टेम्परेचर्स जो है ये लोग फेस करेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2027. और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ फिलहाल मॉनिटर कर रहे हैं हंटा वायरस का एक आउटब्रेक विच इज़ लिंक्ड टू अ क्रूज शिप. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स ने कहा है देयर इज़ नो पेंडेमिक लेवल थ्रेट, लेकिन मल्टीपल कंट्रीज जो है फिलहाल अपने अपने कंट्रीज के पैसेंजर्स के को और उनके कॉन्टेक्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और जो भी सिचुएशन हो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करते रहेंगे. ग्लोबल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं एनर्जी प्राइसेस एंड ट्रेड रूट्स, जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है दे कंटिन्यू अफेक्टिंग द इंटरनेशनल शिपिंग एंड फ्यूल कॉस्ट्स एज वेल. भारत की खबरों में देखा जाए तो इंडिया इज कंटिन्यूइंग इट्स मेजर पुश टू बिकम ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, जहां पर कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स भी सामने आ रहे हैं विद चिप प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स जो रैपिडली बढ़ रहे हैं. और उसके अलावा इंडिया कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग इट्स इंटरनेशनल पार्टनरशिप अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन, जिनमें डीपर टाइज विद फिजी एंड न्यूजीलैंड जो है ये मेंशन किए गए हैं. और फिजी की बातें हुई तो देखा जाए फिजी जो है इट्स प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अपकमिंग जनरल इलेक्शन लेटर दिस ईयर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बातें जो है ये सामने आ रही है आए दिन. इनफैक्ट फिजी हेल्थ अथॉरिटीज़ जो है ये भी फिलहाल हंटा वायरस आउटब्रेक को मॉनिटर कर रहे हैं और असेस कर रहे हैं एनी पॉसिबल रिस्क टू द कंट्री.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
6: मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

नकेश अजीज और साथ में अंतरा मित्रा को आप सुन रहे थे आज सुबह सुबह चार्ट बस्टर्स में. इनकी आवाज हमने आपके लिए पेश की एंड दैट टू फ्रॉम द फिल्म आर राजकुमार. फिलहाल आपको ये याद दिला दे कि फिल्मों के बारे में हमने मेंशन किया तो आज सुबह सुबह आई केम एंड आई वाज लाइक यू नो लुकिंग फॉर अ फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट आपके साथ शेयर करने के लिए एंड आई केम अक्रॉस दिस स्टोरी. मुझे लगा कि भाई ये शायद मेरी आंखों का धोखा है पर नहीं, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन एंड इफ दैट हैपन्स आई फील लाइक इट्स गोन बी समथिंग रियली नाइस. बहुत अच्छा लगेगा ये क्योंकि जिस एक्टर के बारे में है मुझे लगता है वो है बड़े कमाल के एक्टर एंड वो बहुत अच्छे रोल्स करते हैं और अगर वो ये किरदार निभाएंगे तो बहुत बढ़िया काम करेंगे. इन द एक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट इज रणवीर सिंह. रिपोर्टेडली ये बात सामने आ रही है कि रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म में लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव इनका किरदार प्ले करने वाले हैं. ये एक हाईली एम्बिशियस ट्रिलॉजी बेस्ड है जो अमिश त्रिपाठी की बेस्ट सेलिंग बुक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा इस पे बेस्ड है और इसमें ये जबकि शिवजी के किरदार में दिखने वाले हैं तो ये काफ़ी एक्साइटिंग है. जब से अनाउंसमेंट हुआ है तो ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिएक्शंस टू इट और इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है कि अभी तो फ़िलहाल ये डेवलपमेंट फेज़ में है. कहानी लिखी जा रही है और कुछ और एक्टर्स को कास्ट करने पर काम किया जा रहा है. इट इज़ एक्सपेक्टेड 2028 में जाकर कुछ और चीज़ें इस फिल्म के बारे में पता चली एंड पता चलेंगी एंड लाइट इन 2028 ये फिल्म जो है ये हमें देखने को भी मिल सकती है. बट दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग. दूसरे प्रोजेक्ट्स जिस पर फिलहाल रणवीर सिंह काम कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली आदित्य धर की अगली फिल्म प्रलय इसका नाम है एंड द शूटिंग इज सपोजिडली स्टार्टिंग लेटर दिस ईयर. सो लेट्स सी. आदित्य धर और रणवीर सिंह ने धुरंधर के साथ तो बहुत बड़ा कमाल किया, अब प्रलय के साथ क्या प्रलय मचाते हैं समय के साथ पता चलेगा.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: तो फॉर्च्यून की ओर से आपके लिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं। 23 मिनट्स अवे फ्रॉम 7:04 नाउ। ठीक साथ पर आपके लिए रहेगा न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट, जिसके बाद मॉर्निंग मैडनेस का सफर भी हम शुरू करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग जो है फॉर दिस ईयर ये भी जारी है, और आज जो मैच खेला गया बिटवीन पंजाब किंग्स और साथ में दिल्ली कैपिटल्स, इसमें दिल्ली कैपिटल्स की जीत हुई बाय 3 विकेट्स। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बाद में चलकर भी कई मैचेस जो है ये खेले जाने हैं। वैसे कल जो मैच रहेगा ये रहेगा गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, तो आपके लिए डिटेल्स हम लेकर आएंगे। न्यूजीलैंड समय अनुसार सुबह 2 बजे ये रहेगा, सो लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट लाइक एंड किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, ये तो खैर आपको पता चलेगा ही कल आफ्टर द मैच हैपेंस। बट रिमेंबर आज सुबह जो मैच हुआ बिटवीन पंजाब किंग्स और साथ में दिल्ली कैपिटल्स, इसमें दिल्ली कैपिटल्स की जीत हुई बाय 3 विकेट्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट्स गंवाकर 216 रन्स बनाए, तो वहीं पर पंजाब किंग्स 5 विकेट ऑन द 20 ओवर्स का मैच जब कंप्लीट हुआ इन्होंने 210 रन्स जो है ये बनाए थे। बाय द वे कल हमने आपको अगर याद हो तो हमने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी मेंशन किया था, हमने बताया था ना फीफा वर्ल्ड कप ये जॉइंटली मेक्सिको यूएसए और कनाडा इस साल होस्ट कर रहे हैं, एंड अपेरेंटली कनाडा में तो रहेगा ही इसका ऑफिशियल ओपनिंग, लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ मेक्सिको हैज़ डिसाइडेड कि वो इस साल स्कूल टर्म जो है ये 40 डेज पहले ख़त्म कर देंगे, ताकि बच्चे जो हैं ये फीफा वर्ल्ड कप का फुल ऑन मज़ा जो है ये ले सके। नाउ दैट्स सम न्यूज़, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि वो स्कूल ईयर 40 डेज पहले ख़त्म कर देंगे, ताकि बच्चे स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का मजा ले सके। दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सो इट इज़ गोना हैपन दिस ईयर एंड लेट्स सी इस साल कौन सी कंट्री का कौन सा टीम उभर कर सामने आता है। फिलहाल गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस हमारे पास आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी ट्यूसडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे मिस्टर माटामाटा, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और आपके अलावा आज सुबह सुबह हमें मैंडी आपने भी याद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मैंडी आपके भी मैसेज के लिए, थैंक यू सो वेरी मच, गुड मॉर्निंग आपको एंड हैव अ वंडरफुल डे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बॉबी मान जी आपको भी आज सुबह सुबह हम ज़रूर याद कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच आपकी भी कंपनी के लिए, आपके भी मैसेज के लिए, आपको भी आज के इस दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, आपके साथ और आपके समय के लिए वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। राम राम, एन्जॉय द मॉर्निंग एंड ब्यूटिफुल डे, हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनी रहे, थैंक यू सो मच बॉबी जी फॉर योर मैसेज एज वेल। 20 मिनट बाकी हैं इस समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में, तो ऐसा करते हैं फिलहाल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का मजा लेते हैं, और इस गाने के ठीक बाद आज का हमारा सबसे पहला सवाल ये आपके लिए हम लेकर आएंगे। रिमेंबर आज 12th of May ट्यूजडे है, और अगर आज के दिन अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर शादी की सालगिरह मना रहे हैं, 5599 पर मैसेजेस हमारे पास भेज दीजिएगा, अगले घंटे हम आपको जरूर विश करेंगे।

मोहित चौहान की बहुत ही खूबसूरत आवाज आपके लिए हम लेकर आ रहे थे आज फ्रॉम द फिल्म प्लेयर्स. ये गाना उनके साथ वैसे श्रेया घोषाल ने भी गाया, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये जो गाना है इसका एक और एक वर्जन भी आया था जो अरिजीत सिंह ने भी गाया था. बट मोहित सिंह अ वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर और यू नो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक है ज़ाहिर सईद. लेकिन इनकी मोहित चौहान क्या बोल क्या रही हूँ मैं, अरिजीत सिंह और मोहित चौहान को मिक्स कर दिया मैंने. तो यस, मोहित चौहान बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक और बहुत खूबसूरत गाने जो है ये गाते हैं. लेकिन कमाल की बात ये है कि ये इतने सालों से गाने वगैरह गाते आ रहे हैं, वो पहला गाना आपको पता है जिसने इनको फेमस किया, मतलब इनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि इस गाने को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था. इफ़ यू हैव नो आइडिया तो लेट मी टेल यू, इनका जो वाइड स्प्रेड हिट सॉन्ग जो कह सकते हैं ना कि इनको रिकग्निशन मिला वर्ल्ड वाइड, वॉज तुम से ही फ्रॉम द फिल्म जब वी मेट. हैव यू हर्ड ऑफ दैट सॉन्ग तुम से ही? क्या आपको याद है ये कौन सा गाना है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ कि ये कौन सा गाना है जिस गाने से मोहित चौहान बहुत बहुत पॉपुलर जो है ये हुए थे.

0: remember the music? Now, आपको गाना भी याद आ गया होगा, लेकिन कमाल की बात ये है कि this came in 2007. इन्होंने जब शुरुआत की थी अपने इंडी पॉप गाने डूबा डूबा के साथ, तब भी इनको काफ़ी अच्छी रिकग्निशन मिली थी, लेकिन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक इनको वापस से जाकर वो रिकग्निशन मिला जो ये डिजर्व करते हैं. और खून चला जो गाना है इन्होंने 2006 में गाया था, ये गाना भी बहुत हिट हुआ था जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिली थी. रंग दे बसंती फिल्म के लिए इन्होंने इस गाने को गाया था. सो देयर यू गो, मोहित चौहान, जिनके बारे में थोड़ी डिटेल्स तो आज हमने शेयर की, लेकिन हमने कहा था ना कि आज हमारा जो पहला सवाल है इस शो का, ये आपसे हम ज़रूर पूछेंगे. जवाब आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं 5599 आफ्टर लिसनिंग टू द क्वेश्चन. और क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आपको बस ये बताना है, आई हैव 6 एग्स, आई ब्रेक 2, आई फ्राई 2, आई ईट 2, हाउ मेनी एग्स आर लेफ्ट. बहुत सिंपल है, बट लेट्स सी, कैन यू फिगर इट आउट. आई हैव 6 एग्स, आई ब्रेक 2, आई फ्राई 2, आई ईट 2, हाउ मेनी एग्स आर लेफ्ट. देखते हैं क्या आप सही जवाब बता पाते हैं या नहीं. दो मिनटों बाद चेक करेंगे किसका सही किसका गलत आंसर आया, पर फिलहाल BF लिखे सबसे पहले, फिर अपना आंसर और अपना नाम, और भेज दे इस सवाल का जवाब 5599 पर.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: चुबो जाओ पापियो, चुबो जाओ.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
3: ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ.

आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और ब्रेकफास्ट केचप है ये, जहां पर अभी हमारे साथ अगर आप शामिल हैं तो आपको याद दिला दे, बस 9 मिनट ही बाकी है सुबह 7 बजने में। और अभी हमने आपसे ये भी पूछा था थोड़ी देर पहले कि आई हैव 6 eggs, I break two, I fry two, I eat two, हाउ मेनी eggs आर लेफ्ट। इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं कहीं हमारे पास, सो वेरी क्विकली हैविंग अ लुक अभी तक अगर देखा जाए। रोनल्ड का जवाब आया है, कुछ लोगों ने अपने आंसर्स लिखे, नाम नहीं लिखा है। मिश्का, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एज वेल, इन्होंने कहा इट्स अ वेरी ओल्ड जोक, फिर जवाब जो है ये भी दिया है। सलेश फ्रॉम अपर हट वेलिंगटन, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, आपने उस गाने का टाइटल जो ये लिखकर भेजा जो हमने आपको सुनाया था, फोमोई चौहान। और साथ ही साथ सतीश जी, आपका भी मैसेज हमें मिला है। सतीश जी, आप सिर्फ BF लिखकर अपना नाम और अपना जो आंसर ये लिखकर हमारे पास ज़रूर भेज सकते हैं, आपको सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बट थैंक यू फॉर योर मैसेज एज वेल। हमेश फ्रॉम वेलिंगटन, गुड मॉर्निंग हमेश, एंड थैंक यू फॉर योर आंसर एज वेल। सगुन, आपका भी जवाब जो है ये मिला है, और साथ में मिस्टर माटा माटा, थैंक यू फॉर योर आंसर एज वेल। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, कई लोग हमारे पास अपना जवाब लिख कर भेज रहे हैं एज ज़ीरो। यस, ज़ीरो, हाउ हैज़ दैट हैपेंड, शायद आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा करते हैं एक बार फिर आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन उससे पहले शामिल हैं साथ में हमारे पास स्टेसी, आपका मैसेज आया है, नितेश है, भावना है, लोरेश है, शेरिल, आपका भी जवाब हमें मिला है, अनिका अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कृष्णिल गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज टू। आप सब ने अपना जवाब है ज़ीरो लिख कर भेजा है, सो एक बार सवाल अच्छे से सुनिएगा। I have 6 eggs, I break 2, I fry 2, I eat 2, how many eggs are left? क्या है आपका जवाब, आप हमें बताइए। सबसे पहले BF लिखे, फिर उसके बाद अपना नाम और अपना जवाब लिखकर हमारे पास आप 5599 पर सेंड कर सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो प्लेन्स जो है ये न्यूजीलैंड में लैंड हुआ है? If you have no idea, तो आपको हम बताएं, Antonov AN-124, ये touchdown हुआ है at Auckland Airport, and I think it's from Hawaii, which landed on Monday around 3:40 PM. और एयरपोर्ट जो है, आई मीन ऑकलैंड एयरपोर्ट जो है, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ये जो पर्टिकुलर कार्गो प्लेन है, इट इज़ पार्ट ऑफ अ प्लैंड प्राइवेट स्पेशलिस्ट फ्रेट मूवमेंट, और फर्दर डिटेल्स तो अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किए बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी रीजंस, लेकिन ये जो लार्जेस्ट कार्गो प्लेन है इसके बारे में कहा गया कि ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्गो प्लेन्स है जो इस्तेमाल होता है और जिसे इंजीनियर किया गया है स्पेशली टू ट्रांसपोर्ट एक्सेप्शनली हैवी या ओवरसाइज्ड कार्गोज, ओवरसाइज्ड कार्गोज, सॉरी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: राइट नाउ आपको याद दिला दें, सुपर सिटी ऑकलैंड में आज के मौसम के लिए कहा जा रहा है कि रह रहकर बारिश होगी। इनफैक्ट दिन भर कभी बारिश होगी, कभी बारिश थमती हुई नजर आएगी। आज का सनसेट होगा 5:26 PM पर। राइट नाउ टेम्परेचर 12.9 डिग्रीज है एंड ओवरनाइट टेम्परेचर रहेगा 10 डिग्रीज तक।
0: फॉर शो विद विजय एंड पूजा, ब्रॉट टू यू बाय फॉर

0: go.nz.
1: सो आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. मॉर्निंग मैडनेस हम शुरू कर रहे हैं. इस बार 3 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम. आप सबका स्पेशल वेलकम है जहां कहीं भी आप हैं, साथ हमारा दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू. देखिए, सफ़र की शुरुआत हमने की थी 6 बजे, अब देखते देखते 7 बज चुके हैं. इनफैक्ट इस घंटे जहां पर थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं योर राशि वाइब्स. सो वी विल फाइंड आउट कि आपके हॉरोस्कोप के अनुसार आज का आपका दिन कैसा बीतेगा. और उसके बाद न्यूज हेडलाइंस भी रहेगा जहां पर विल चेक आउट व्हाट्स हैपनिंग इन न्यूजीलैंड करंटली, क्या कुछ हो रहा है खबरों के वाइज, क्या कुछ जो है ये सामने आ रहे हैं. देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन एज फार एज द फ्यूल थिंगी इज हैपनिंग, फ्यूल थिंगी या मतलब जो शॉर्टेजेस वगैरह फेस किए जा रहे हैं, तो इस पर भी आपके लिए डिटेल्स हम ज़रूर लेकर आएंगे. हैप्पी बर्थडे विश करना है इसी घंटे, अगर शादी की सालगिरह है तो भी विश करेंगे ज़रूर. व्हाटएवर द सेलिब्रेशन रीज़न इज़, आपके साथ हम जुड़ने वाले हैं. सो डोंट फॉरगेट, अगर किसी स्पेशल के लिए आज आपको एक विश भेजना है तो दिस इज द आवर जहां पर हम विश करेंगे. दैट्स व्हाई सेंड इन दोज मैसेजेस ऑन 5599. पिछले घंटे जो सवाल पूछा था, रोनील है, मनप्रीत है, कवनीत है, साथ में सोम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर मैसेजेस. विनय, आपका भी जवाब जो है ये हमें मिला है. हरी जी, आपका भी आंसर मिल चुका है. अगेन कुछ लोगों ने सिर्फ आंसर लिखा है, नाम नहीं भेजा है अपना, बट नो वरीज. अमितेश, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज एज वेल. सतीश जी, आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारा साथ जबकि दे रहे हैं. थैंक यू सो मच आपके भी साथ के लिए. तो इधर चलिए, हमने आपसे पूछा था, आई हैव 6 eggs, आई ब्रेक 2, आई फ्राई 2, आई ईट 2, हाउ मेनी eggs आर लेफ्ट. द करेक्ट आंसर वुड बी 4. 6 अंडे हैं, 6 में से 2 को तोड़ा, 2 को फ्राई किया और 2 को खाया, उन्हीं 2 को. तो आंसर इज 4, जो कि बाद में चलकर ज्यादातर लोगों ने हमारे पास जरूर सही भेजा है. सो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. इधर चलिए, आपके साथ शुरू करते हैं आज का ये सफर. और एक मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग गाइज, आई वुड लाइक टू से कंग्रेचुलेशंस टू माई हस्बैंड जगमोहन फॉर गेटिंग वीजा टू न्यूजीलैंड, सो एक्साइटेड टू सी हिम सून. करण, आपकी ओर से ये मैसेज आया है. थैंक यू सो मच करण जी, और अच्छा लगा सुनकर, अपनी खुशी आप हमारे साथ बांट रही हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच. और जल्द ही आप दोनों की मुलाकात होगी, सो इवन दैट इज अमेजिंग एंड विशिंग यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट.
2: वाओ, यह

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chupo jao, papi ho. Chupo jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो चलिए जानते हैं आज का आपका दिन कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स. सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज आपके लिए कहा गया है कि आज जो भी एक्सपेंसेस आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एज इन यू आर ट्राइंग टू वर्क आउट योर फाइनेंसेस, यू विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. नौकरी के मामले में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज बढ़ सकती हैं और आपके कलीग्स भी आपका साथ नहीं देंगे, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स, चिंता और तनाव ये बढ़ सकते हैं. तो इसीलिए अपने हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. वृष ने टोरस, आपके लिए कहा गया है कि आज जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, खास तौर पर इन्वेस्टमेंट का काम जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो उसमें थोड़ा टाइम ले ले, अच्छे से अपनी खोजबीन आप कर ले इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग एनीवेयर एंड देन मेक योर डिसीजन. बिजनेस के मामले में कहा गया है कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आज का ये दिन जहां पर आपको फायदे काफ़ी मिलेंगे, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज जो आपको ये फायदे दिला सकते हैं. और

0: फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहेगा. इनफैक्ट आपके फैमिली की ओर से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट भी आज आपको मिलेगा. मिथुन यानी जेमिनाय आपके लिए कहा गया है, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा. नौकरी में आपके जो कलीग्स हैं ये भी आपका साथ देंगे. और आपके लिए ये भी कहा गया है कि रिस्क से जितना दूर रहे उतना अच्छा. कोई भी ऐसा काम जिसमें ज़रा सा भी इनफैक्ट 1% का भी रिस्क हो, आज आप उसे टाल दे तो इसमें आपकी भलाई है. करके ने कैंसर आपके लिए कहा गया है, कम्युनिटी में आपकी इज्जत, आपका नाम ये आज ज़रूर बढ़ेगा. ऐसी कुछ चीज़ें आप करेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी. और आत्म शांति जो कहते हैं ना, मन की शांति, पीस, ये आज आप ज़रूर महसूस करेंगे. अगर बिजनेस है आपका तो अच्छा चलेगा. यू विल गेट सम रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ जिससे आप अपने बिजनेस को आज ग्रो भी कर सकते हैं. दूसरों की मतलब जवाबदारी ना ले, दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना ले, दूसरों के बिहाफ पर आप कोई जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के लिए बिल्कुल भी ना ले. अदरवाइज यू विल सी योरसेल्फ एंडिंग अप इन अ मेस. सिंह यानी कि लियो आपके लिए कहा गया है कि आज आपके जो दोस्त हैं इनके साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा. यू विल एंजॉय सम लवली मोमेंट्स जो हमेशा आपके जहन में बने रहेंगे. और ये भी आपके लिए कहा गया है कि आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, इसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ें जो है ये कर पाएंगे अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए. कन्या यानी कि वर्गो आपके लिए कहा गया है कि परिवार में जो सदस्य हैं इनका सहयोग मिलेगा, हैप्पी रहेंगे आज आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से. और हो सकता है किसी के साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट अनबन हो जिससे आपका मूड थोड़ा स्पॉइल हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आपको एक रियलिटी चेक भी मिले कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ. तुला यानी कि लिब्रा, किसी बुजुर्ग के गाइडेंस की वजह से आज उनके साथ की वजह से आप एक बहुत मुश्किल भरा काम आसानी से कर पाएंगे. किस्मत भी साथ दे रही है आपका, तो इस अच्छे समय का, अच्छे किस्मत का भी फायदा आप ज़रूर उठाइए. किसी व्यक्ति की बातों में ना आए, उनके बहकावे में आएंगे तो आपका नुकसान होगा, ऐसा आपके लिए कहा गया है. वृश्चिक ने कि स्कॉर्पियो, मनपसंद कुछ खाने को मिलेगा जिसका आनंद उठाएंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी. और नौकरी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज बढ़ सकती है. जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा विच विल मेक यू फील रियली वेरी लव्ड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम. धनु यानी सेजिटेरियस, बिजी रहेंगे आज, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगी रहेगी जिसकी वजह से थकावट भी होगी. आज आपके लिए कहा गया है कि रिस्क से भरे कामों से दूर रहें फिलहाल के लिए, आर्ग्यूमेंट को बढ़ावा ना दें, और अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो इसका डटकर सामना करें. मकर यानी कैप्रिकॉन, समाज में आज आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा. और साथ में लेन देन के मामले में थोड़ा केयरफुल हो जाए, ये सलाह भी आपको दी जा रही है. कुछ ऐसे अननोन लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं जो अचानक से आपकी जिंदगी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन उनका आपके टुवर्ड्स बिहेवियर अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप उन पर अंधा विश्वास करना शुरू कर दें. कुंभ यानी कि अक्यूरियस, आपके लिए कहा गया है किसी बड़े काम को करने का आपका प्लान बनेगा, आत्मसम्मान बना रहेगा, और साथ में घर और बाहर दोनों ही ओर से आपको शुभ कामों में भाग लेने का मौका मिलेगा जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी और चैन महसूस होगा. फाइनली मीन यानी पाइसिस, अगर बिजनेस है आपका इसे आज आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान पर आप काम करेंगे. कीप वर्किंग ऑन दिस प्लान बिकॉज यही आपको सफलता दिलाएगा. बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका, ये भी कहा गया है, सो इस अच्छे समय में अच्छे अच्छे फैसले लीजिए, बड़े बड़े फैसले लीजिए. अपनी जिंदगी को पूरी तरह से आप इसी समय में बदल सकते हैं, ऐसा भी आपके लिए बताया जा रहा है. सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे. थोड़ी देर बाद आज का सेलिब्रिटी अलार्म, लेट्स फाइंड आउट आज किनकी आवाज है जो आपको पहचाननी है.
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स.
4: सुनते रहो सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like LA and San Francisco from just $939 one way. Or fly to Vancouver from only $999 one way. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent. Conditions apply.
8: Jen didn't think she needed a DVS system.
9: Oh, I've got insulation in that.
8: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
9: Ah, yeah.
8: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune.

0: सेलिब्रिटी अलार्म की बारी आई। अगर आपने आज आवाज पहचान ली तो कल एक नई आवाज लेकर आनी पड़ेगी आपके लिए, जिसमें भाई हमारी तो बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि आप तो फटाफट सारी आवाजों को पहचान रहे हैं। पर अगर जो आपने आज की आवाज नहीं पहचानी तो हमारे लिए फायदा यही होगा कि हम यही आवाज कल एक बार फिर आपको सुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक आप ना पहचाने तब तक यही आवाज जो है मेंटेन हो। टू सी हु गेसेस दिस पर्टिकुलर वॉइस, ये किन की आवाज है, लेट्स सी।
1: बेसिकली मोहब्बत है संगीत से, और हमारे गुरुओं ने भी सिखाया था कि जितना आप लोज का यानी नीचे के स्वरों का रियाज करोगे उतना आपका ऊंचे का सुर बुलंद होगा।
0: तो ये किन की आवाज है, आपको पता है ये कौन है? आप अगर हमें बता सकते हैं, हमने इनकी आवाज तो आपको सुना दी, अब देखना ये है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं या नहीं कि ये कौन है। थोड़ा जो इन्होंने बोला है उस हिसाब से शायद आपको थोड़ा तो अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि एक्चुअली ये करते क्या, इनका प्रोफेशन क्या है। पर अगर जो अंदाज़ा नहीं लगा है एंड यू स्टिल आर इन डाउट, तो एक बार फिर से आवाज़ सुना देती हूँ, उसमें क्या है। लेट्स सी, क्या आप इनको पहचान सकते हैं?
1: बेसिकली मोहब्बत है संगीत से, और हमारे गुरुओं ने भी सिखाया था कि जितना आप लोज का यानी नीचे के स्वरों का रियाज करोगे उतना आपका ऊंचे का सुर बुलंद होगा।
2: वाह,
0: तो चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर्स हमारे पास आप भेजिए। सबसे पहले लिखिए BF, फिर उसके बाद लिखना है आपको इनका नाम और लिखना है अपना नाम और भेज देना है 5599 पर। आज की ये आवाज जिनके बारे में बता दें, बड़ी कमाल की आवाज है, बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज है और जाने ही जाते हैं ये अपनी आवाज के लिए। क्या आपने इनको पहचाना? और अगर हाँ तो जैसे कि मैंने कहा BF यू आंसर योर नेम 5599 पर भेजना है। अगर नहीं पहचाना तो आज हमारी जीत होगी और कल आपके लिए एक नई आवाज।
3: Bollywood's most wanted. गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
4: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: आने वाली नई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें मृणाल ठाकुर और साथ में पूजा हेगड़े एंड वरुण धवन नजर आने वाले हैं। उसी का ये गाना आज आपके लिए हम बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में लेकर आ रहे थे मीका सिंह एंड असीस कौर की आवाजों में। फिलहाल हमने जो आपको आज सेलिब्रिटी अलार्म में आवाज सुनाई, लगता है कुछ कन्फ्यूजन है। आई एम हैप्पी बिकॉज देन कल यही आवाज हो सकती है, बट लेट्स सी कि क्या आप इनकी आवाज को पहचान पाते नहीं, बिकॉज हमारे पास नव ने अपना जवाब भेजा है, कुमार विश्वास, फिर उसके बाद भौमिक का आंसर आया है रूप कुमार राठौड़, फिर शमील ने अपना जवाब भेजा है इरफान अख्तर, और साथ में फरहान अख्तर इन्होंने फरहान अख्तर लिखना चाहा मेरे ख्याल से, और साथ में हमारे पास किसी ने तो भेजा है 4760, नाम नहीं इनका, इन्होंने लिखा है शान। विनील ने कहा है कैलाश खेर, तो कई अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कैलाश खेर आ गया, शान आ गया, फरहान अख्तर हो गया, कुमार विश्वास हो गया, रूप कुमार राठौड़ भी हो गया, और उस्ताद वडाली ये अंकुर आपने लिखा है अपना जवाब, क्या ये इनकी आवाज़ है? थिंक अबाउट इट। मैंने ये आपको ज़रूर बताया कि ये जाने ही जाते अपनी आवाज़ के लिए, तो चलो स्पेसिफिकली क्या करते यही बता देते हैं। मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट, आपने रूप कुमार राठौड़, शान और फरहान अख्तर का भी चलो हम ले सकते हैं इसमें, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सिंगर्स, गाते हैं ना ये, तो ये जिनकी आवाज़ है वो भी गाते ही हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये आखिरी बार सुना रही हूँ मैं।
1: अब बेसिकली मोहब्बत है संगीत से, और हमारे गुरुओं ने भी सिखाया था कि जितना आप लोज का यानी नीचे के स्वरों का रियाज करोगे उतना आपका ऊंचे का सुर बुलंद होगा।
0: तो किन की आवाज है ये जल्दी से बता दो, आपको लिखना है BF, फिर उसके बाद में अपना जवाब और अपना नाम। आपको ये हम जरूर बता देंगे कि फरहान अख्तर, कुमार विश्वास, शान, रूप कुमार राठौड़ और यहाँ तक की उस्ताद वडाली, ये सारे के सारे गलत आंसर्स है। क्या है सही जवाब आपको हम थोड़ी देर बाद जरूर बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप कोशिश बेशक कर सकते हैं BF आंसर योर नेम 5599 पर आपको भेजना है, एंड ऑल्सो रिमेंबर थोड़ी देर बाद न्यूज हेडलाइंस जो है ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। बाय द वे रजत आपने कहा है लखविंदर सिंह वडाली, इवन दैट इज इनकरेक्ट।

0: Radio.nz.
1: News headlines.
2: न्यूज हेडलाइंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज सुबह सबसे पहले आपको याद दिला दें, एक खबर जो है ये आ रही है कि एक महिला जो है इनके बारे में कहा गया है कि इनकी एक सर्जरी जो है ये हो रही थी एट ब्रेमा हॉस्पिटल इन न्यूजीलैंड, जहां पर ड्यूरिंग द ऑपरेशन शी वाज लाइंग ऑन अ हीटेड मैट्रेस जिससे उनका शरीर वार्म रहे, लेकिन जो मैट्रेस है इट स्टार्टेड ओवर हीटिंग। एक अलार्म भी ऑन हुआ ट्वाइस, लेकिन इसे इग्नोर किया गया। इंस्टेड ऑफ चेकिंग द प्रॉब्लम जो स्टाफ है उन्होंने बस अलार्म टर्न ऑफ कर दिया और मैट्रेस को रीस्टार्ट किया। आफ्टर द सर्जरी डॉक्टर्स ने ये पाया कि ये जो महिला है उन्हें कुछ सीरियस बर्न इंजरीज आई उनकी बॉडी पर, एंड लेटर उन्हें एक और एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ी जहां पर उनका स्किन ग्राफ्ट किया गया टू फिक्स इट। एक इन्वेस्टिगेशन भी की गई है जिसमें ये पता चला है कि दैट द स्टाफ डिड नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, इग्नोरिंग द अलार्म लाइकली कॉज द बर्न, और हॉस्पिटल ने एडमिट किया अपनी गलती को एंड दे वर टोल्ड टू अपोलोजाइज टू द वुमन, और स्टाफ को और प्रॉपरली ट्रेन करने के इंस्ट्रक्शन उनको मिले हैं। सो ऐसी चीजें दोबारा ना हो। इसके अलावा एक और एक खबर जो है ये सामने आ रही है, जहां पर कहा गया है कि जो एजुकेशन रिव्यू ऑफिस है न्यूजीलैंड में, इन्होंने एक नया गाइड तैयार किया है ताकि पेरेंट्स की हेल्प हो सके टू चूज गुड स्कूल्स। इस गाइड में एक्सप्लेन किया जाता है व्हाट मेक्स अ स्कूल गुड, व्हाट पेरेंट्स शुड लुक फॉर, और साथ में व्हाट क्वेश्चंस दे कैन आस्क टीचर्स एंड प्रिंसिपल, और कैसे कंसर्न्स जो है ये रेज किए जा सकते हैं इफ नीडेड। इस गाइड में 14 अन्य इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये लिस्ट की गई हैं दैट शो हाउ वेल अ स्कूल इज डूइंग, जिसमें हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग, चाहे वो रीडिंग राइटिंग या मैथ्स हो, बच्चों का अटेंडेंस, इफ किड्स आर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली ये मेंशन होता है, टीचिंग क्वालिटी, साथ में लीडरशिप एंड स्कूल मैनेजमेंट, सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स जिनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ती है, हाउ सेफ फेयर एंड वेलकमिंग द स्कूल इस बात के बारे में भी काफ़ी चीज़ें लिस्ट की जा रही हैं। ऑफिशियल्स का ये मानना है कि पेरेंट्स जो और इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन में, ये हेल्प करता है उनके बच्चों को टू डू बेटर इन स्कूल। वो ये भी कहते हैं कि मैनी पेरेंट्स वॉन्ट टू हेल्प, लेकिन वो अनसिक्योर या नर्वस फील करते हैं अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। इस गाइड से बहुत से पेरेंट्स की हेल्प होगी टू मेक दैट ईजियर एंड क्लियरर। इन शॉर्ट वी कैन से कि ये जो हैंडबुक है इट विल हेल्प द पेरेंट्स अंडरस्टैंड स्कूल्स बेटर एंड सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। इसके अलावा खेलकूद की ओर देखें तो सुपर रग्बी का जो अगला मैच है ये इसी फ्राइडे को होगा 7:05 PM पर, और ये मैच खेला जाएगा चीफ्स वर्सेस हाईलैंडर्स। तो इस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, बट डोंट फॉरगेट सैटरडे को 3 अलग अलग मैचेस खेले जाएंगे जिसमें 4:35 PM पर ड्रुआ और वारटर्स का सामना होगा, 7:05 PM पर ब्लूज और हरिकन्स एक दूसरे के साथ खेलेंगे, जबकि 9:35 PM पर फोर्स और रेड्स की भिड़ंत होगी।
1: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
4: 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: Mildale Health and Land Packages.
3: High of 17, cloudy today, wet at times. Southern Motorway, there could be an incident at Mount Wellington. We're slow from Papakura, heavy Manukau to Mount Wellington. Clear through to Ellerslie, but then heavy again from there. 51 minutes, Manukau to the CBD. Southwestern, heavy northbound through Whitty. Northwestern, 40 minutes from Massey. We're heavy on and off from Upper Harbour. Northern, 40 from Constellation, heavy Greville to the bridge.
2: Award-winning builders, wide range of homes. Mildale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
4: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
5: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
6: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with 134 Trade. For quick quotes and pricing, stock queries, order and delivery updates and general inquiries, contact the 134 Trade team today on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz
12: The Beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi branch nahi hai.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
12: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
15: Happy birthday to you.
17: A very happy birthday, many, many happy turns of the day आपको wish कर रहे हैं, जहां के भी अपना birthday आप celebrate कर रहे हैं, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से happy birthday, many, many happy turns of the day to you. आज अगर देखा जाए सबसे पहले तो अपना birthday celebrate कर रहे हैं none other than रितेश अ वेरी हैप्पी बर्थडे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू हमारी पूरी हम टीम की ओर से रितेश आज आपके जन्मदिन के खास मौके पर आपको हम ज़रूर याद कर रहे हैं और आपके समस्त परिवार वालों की ओर से खास तौर पर आपकी प्यारी सी पत्नी है सिमरनप्रीत इनकी ओर से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे हम विश कर रहे हैं अविचल आज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके भाई हैं केल्विन साथ में अविनेश और उसके साथ साथ सुशील जी इनकी ओर से भी आपके लिए मैसेज आया है सो हैप्पी बर्थडे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू Yeah.

बिफोर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, चलिए हमारे पास अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। इनफैक्ट हमारे स्टूडियोज में अभी 8 बजने में, ठीक 8 पर वैसे हम शुरुआत करेंगे ट्रेंड पेट्रोल के साथ। और आज का ट्रेंड पेट्रोल थोड़ा अलग होगा, उम्मीद है कि इसके लिए आप एकदम तैयार हैं। पर उससे पहले जो सवाल हमने पूछा था उसका आंसर जो है ये आपको दे दे, लेकिन आंसर देने से पहले देखते हैं और किसने क्या जवाब जो है ये भेजा हमारे पास। दिवनेश आपका आंसर आया है, सत्यमित धर्मी आपका भी जवाब हमें मिल चुका है, नवजीत थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर, वरुण है, प्रिसीला है, विनील आपने दोबारा कोशिश की है, प्रणिका गुड मॉर्निंग थैंक यू फॉर योर आंसर टू, अंकुर है, शुभम है, साथ में नितेश आपका भी जवाब हमें मिला है, फराना थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, नोट शो से राहिल का मैसेज आया है, और सलेश प्रसाद जी है अपाहट वेलिंगटन में, गुड मॉर्निंग सलेश जी अगेन, आपका भी मैसेज हमें मिल चुका है, निखिल है, योगेश नायडू है, नरेंद्र कौर है, कवि है, कुछ लोगों ने आंसर भेजा है, नाम नहीं लिखा है पर शुक्रिया आपके भी मैसेज के लिए, फ्रांसीना है, संदीप, नंदनी, साथ में कौशिक है, इसके अलावा हमारे पास प्रनील, आपने अपना जवाब जो दिया है ना बड़ा कमाल का, हिमेश रेशमिया, पर अफसोस ये भी गलत है, पर्ल आपका भी आंसर में मिल चुका है, और अगेन कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं लेकिन नाम नहीं आया है, बट नेवरदलेस चलिए आपको जवाब एग्जैक्टली बताने से पहले हम कुछ सुनाते हैं।

You know, when I was growing up, I think ये गाना मैंने टेलीविजन पर बहुत बार देखा है और कमाल की बात ये है कि ये जो गाना है यार, इस गाने का जो म्यूज़िक है वो तो है ही कमाल का, लेकिन उससे ख़ास बात ये है कि इसका जो वीडियो, ये यू नो आपको थोड़ा ट्रॉमेटाइज कर देगा. एट दैट टाइम व्हेन आई वाज दैट यंग, आई कुडंट रियली अंडरस्टैंड कि ये गाना एग्जैक्टली क्या है, बट देखने में बड़ा दुख लगता था. दिस पर्टिकुलर सॉन्ग केम इन द 2000, और अगर देखा जाए तो ये गाना इतना हिट हुआ बिकॉज द वे द आर्टिस्ट हिट संग इट, एंड द आर्टिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग हु ऑल्सो फीचर्ड इन द सॉन्ग इज नन अदर देन सुखविंदर सिंह, जिनकी आवाज़ आज हम आपके लिए लेकर आए थे सेलिब्रिटी अलार्म में. तो ये 2000 में इनका एक बहुत ही कमाल का, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड पॉप एल्बम नशा, ये रिलीज़ हुआ था और उसका ये गाना नशा ही नशा, ये आपको हम अभी सुना रहे थे. सो आज सेलिब्रिटी अलार्म में सुखविंदर सिंह, जितने लोगों ने लिखकर भेजा, एब्सोल्युटली करेक्ट.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

थ्रोबैक की बारी आई, लेकिन बिफोर थ्रोबैक चलिए एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका जो जवाब है आप मुझे सही सही देना, मतलब ऑनेस्टली देना कि व्हाट डू यू थिंक आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, ठीक है? अगर आपको मौका मिले, इफ यू गेट अ चॉइस कि आप $1 million जो है ये चुन सकते हैं, या फिर आपको मिलेगा मौका कि $1,000 अ वीक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप चूज करें, तो इन दोनों ऑप्शन में से आप क्या लोगे? व्हाट वुड यू चूज? $1 million राइट नाउ, जैसे कि अभी आप, अगर आपको कोई बोले कि मैं अभी आपको $1 million दे रहा हूँ, आप या तो ये चुन सकते हो या फिर $1,000 अ वीक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप ये चुन सकते हो, तो आप क्या चुनोगे? व्हाट विल यू चूज? आप अपनी चॉइस में बताइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है मेरे पास जो आपके साथ हम अगले घंटे जरूर शेयर करेंगे। और ये भी आपको याद दिला दें कि अगले घंटे हमारा जो फ्लाईवे फ्रेंजी का कोड, ये भी हम रिवील करने वाले हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। प्लस बैक योर बैकयार्ड बीट्स के तहत आज के आर्टिस्ट कौन रहेंगे जानने के लिए सुनते रहिएगा, क्योंकि मई इज द मंथ ऑफ म्यूजिक मंथ इन न्यूजीलैंड, और हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं म्यूजिक मंथ, हमारे लोकल आर्टिस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनके गाने आपको सुनने का मौका जो है ये मिलेगा, और उन गानों को सुनने के बाद आपको उनको वोट करने का मौका जो है ये भी मिलेगा। यू कैन चूज आप किनको वोट करना चाहते हैं, क्योंकि द टॉप 3 आर्टिस्ट जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उनको मिलेगा मौका एक इनाम जीतने का, और साथ में उनके गाने रोवा ऐप पर भी फीचर होंगे। एंड रिमेंबर टू वोट, आप हमारे पास MM लिख सकते हैं, यानी म्यूजिक मंथ का शॉर्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में उस आर्टिस्ट का नाम जिसके लिए आप वोट करना चाहते हैं आफ्टर लिसनिंग टू देयर सॉन्ग, और फिर उसके बाद में आप अपना नाम लिखकर 5599 पर भेज सकते हैं। विजिट आवर सोशल मीडिया एज वेल, क्योंकि इंस्टा पर भी आपको वोट करने का मौका मिलेगा। द सॉन्ग्स विल बी शेयर्ड देयर एज अ कोलैबोरेशन, एंड इफ यू लाइक द सॉन्ग then don't forget to like, comment and share, and to show your support and your vote towards that artist.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: रहकर बारिश होगी आज सुबह से शाम तक, ऐसा ही मौसम रहने वाला है. टेम्परेचर करेंटली 12.7 डिग्रीज है, हाई 17 एक्सपेक्टेड है. बाद में चलकर ओवरनाइट तो 10 डिग्रीज तक टेम्परेचर रहेगा और आज का सनसेट 5:26 PM पर होगा.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: ट्रेंड पेट्रोल की बारी है. जैसे कि हमने कहा था कि आज का ट्रेंड पेट्रोल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और ये कुछ स्पेशली होने वाला है, समथिंग डिफरेंट जो आपके लिए हम पेश करेंगे. बट बिफोर आई प्ले दिस फॉर यू, बिकॉज हमें ये प्ले करना है, आपको बता दें दिस इज़ द सेकेंड कोलेबोरेशन ऑफ अ वेरी पॉपुलर मराठी सिंगर. क्योंकि ये महाराष्ट्र ब्लेंड और हिंदी और रेगे और पॉप के इंडी पॉप गाने जो है ये या स्टाइल जो है ये मिक्स कर अपने गाने जो है बनाते हैं. इनका नाम है संजू राठौड़. इससे पहले आपने गुलाबी साड़ी, शेकी शेकी ये गाना सुना होगा. ये आफ्टर शेकी शेकी रीयूनाइट इन्होंने किया है विद ईशा मालविया फॉर अ न्यू ट्रैक विच इज़ बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ महाराष्ट्र रूट्स विद रेगे एंड इंडी पॉप, जैसे कि मैंने कहा. एंड इट इज़ बेसिकली ऑफ जो इंडियन वेस्टर्न फैशन बोलते हैं ना, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा इस गाने की वीडियो में. स्पेशल थिंग, द सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय संजू राठौड़, द लिरिक्स हैव बीन रिटन बाय हिम. उन्होंने गाना कंपोज भी किया है और ये गाना पिछले महीने ही रिलीज हुआ एंड इतना ज़्यादा पॉपुलर ये हो रहा है दैट इट इज़ ट्रेंडिंग एवरीवेयर. आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन कर देख लो तो आपको ये गाना वहाँ पर ज़रूर दिखाई देगा. पीपल मेकिंग दियर यू नो रील्स एंड वीडियोज़ एंड ऑल On this particular song. आज का ट्रेंड पेट्रोल खास आप सबके लिए. एंजॉय कीजिएगा संजू राठौड़ की आवाज. आपके नाम
3: शेकी शेकी.

0: लाल लाल कलर
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स सेलिब्रेटिंग लोकल आर्टिस्ट बैक योर बैकयार्ड बीट्स
3: बारी है कि आपके लिए हम लेकर आए आज का हमारा जो गाना फॉर आवर लोकल आर्टिस्ट ऑफ टुडे और इनकी जो आवाज़ है इनके जो गाने हैं इनके गाने से पहले मतलब गाना आपके लिए प्ले करने से पहले इनके बारे में आपको हम बताना ज़रूर चाहेंगे इनका नाम है जसराज बसराज जसराज जो है ये एक ऑकलैंड बेस्ड इमर्जिंग आर्टिस्ट है और इन्होंने अपना जो कदम है इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री रखा विद हिज डेब्यू पंजाबी रिलीज़ जहाँ पर एक फ्रेश और एनर्जेटिक साउंड आपको ज़रूर मिलेगा सो लेट्स एंजॉय दिस वन आज जसराज बसरा जो कि हमारे लोकल आर्टिस्ट फॉर टुडे हैं और इनकी आवाज इनका कॉम्पोजिशन स्पेशली फॉर यू ऑल

0: आज आपके लिए हम लेकर आ रहे थे म्यूजिक मंथ के तहत हमारे आर्टिस्ट फॉर टुडे, और ये रहे आपके नाम, खास तौर पर जसराज बसरा. और उम्मीद है कि इनके गाने को आपने पसंद किया. इफ़ यू हैव लाइक्ड हिज सॉन्ग तो इनको वोट करने के लिए MM और जसराज बसरा लिखकर 5599 पर आप सेंड कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया, हमारा जो इंस्टा पेज है यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं. इनके कोलेब्रेशन के लिए भी आप अपना वोट जो है ये ज़रूर हमें सेंड कर सकते हैं, वोट जो है अपना ये कर सकते हैं बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग हिज कोलेब्रेशन फॉर द म्यूजिक वीडियो एज वेल. राइट नाउ चलिए आपको ये बता दें कि फ्लाईवे फ्रेंजी का टाइम हो चुका है, और फ्लाईवे फ्रेंजी आपको पता है हम आपको देते हैं कोड वर्ड जो आपको रोवा ऐप पर जाकर एंटर करना होता है, या हम rova.nz पर. आई वुड डेफिनेटली एडवाइस कि अगर आपके पास ऐप नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, बिकॉज इफ़ यू हैव द ऐप इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू. आप कभी भी कहीं भी बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हुए कोड वर्ड्स भी एंटर कर सकते हैं और हमारे साथ भी बने रह सकते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आज का कोड वर्ड पहले तो हम आपको बताएंगे, फिर स्पेल आउट भी करेंगे करेक्टली. आप स्पेलिंग वगैरह नोट कर लीजिएगा और फिर आप इसे रोवा पर जाकर जरूर एंटर कीजिएगा, ताकि आपकी एंट्री जो है आज के फ्लाईवे फ्रेंजी इसके लिए जरूर रजिस्टर हो जाए. और याद रखिए, दिस इज द फाइनल वीक फॉर फ्लाईवे फ्रेंजी, सो इफ यू हैवंट टेकन पार्ट, ये आपका आखिरी अपॉर्चुनिटी है. तो आपको बस वर्ड आज का बता दे, ये याद रखना है, यानू यानू, यानू यानू, दैट्स द कोड वर्ड फॉर टुडे. और यानू यानू का मतलब होता है, ये ई तो कई भाषा में इसका मतलब होता है आइलैंड. इट रेफर्स टू एनी लैंड मास कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, और कॉमनली इसे जैसे कि हमने कहा ई तो कई यानी कि फिजियन लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द वर्ड आइलैंड, यानू यानू. सो द स्पेलिंग फॉर यानू यानू वुड बी YANU. Remember, YANU. एक ही वर्ड है ये, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन दीज, ओके. सो एक ही वर्ड है यानू यानू, आज का कोड वर्ड फॉर फ्लाईवे फ्रेंजी. जल्दी से जाकर रोवा ऐप पर एंटर कीजिए और अपने जीतने के चांसेस और रिटर्न एयर टिकट टू फिजी ये बढ़ाइए. रिमेंबर ईच वीकडे 8 AM टू 9 AM के बीच, 11 AM टू 12 PM के बीच, 1 PM टू 2 PM के बीच, और 5 PM टू 6 PM के बीच हम आपके लिए कोड वर्ड अनाउंस करते हैं. एज सून एज यू गेट द कोड वर्ड, आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होता है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द कोड वर्ड टू Date on Rover app and to win a return air ticket to Fiji draw में शामिल होकर. T's and C's के लिए हम rova.nz आप जरूर विजिट कर सकते हैं. आज का code word on the breakfast show यानू यानू, YANU, आप जरूर एंटर कर सकते हैं in the next 60 minutes.
1: Mornings made better.
2: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर, जैम और एक स्पेशल चाय.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Driving you home.
4: Drive show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
7: वो भी I love you वाला.
6: मैडम ने

0: कर लिया भी हाँ किसने बनाया। वो एक लड़की थी वो बोलती जहाँ तक तो बना रहा था बेटा।
1: अच्छा तो
0: आए आए बताओगे यार।
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
3: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM Havel. Havel का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट westcityautogroup.nz और सर्च फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
8: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
7: Bar and restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. Aaye aur enjoy kare inka sophisticated dining experience jahan par aapko tarah tarah ke flavors milenge. Creative Asian fusion dishes se lekar zesty seafood tak, saath mein refreshing cocktails. Sab kuch ek bahut hi elegant aur stylish andaaz mein. Ye open hai for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
1: 18 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 8:00। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द रश आवर। आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और इधर चलिए, आज आपके लिए हम जो यू नो टॉपिक लेकर आए हैं, दिस इज मेनली फॉर ऑल द फीमेल ड्राइवर्स आउट देयर। अगर आप ड्राइविंग करते हैं और आप एक महिला है, ये आपके लिए है। एंड इनफैक्ट इफ़ यू आर मैन, यू कैन ऑल्सो गिव योर टू सेंस इन दिस कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। बट दिस इज़ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने ये नोटिस किया है। एंड आई हैव सीन लाइक वेन एवर आई एम ड्राइविंग, तो बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो आर नॉट फीमेल ड्राइवर्स, उनकी ओर से थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा जजमेंट। और यू नो एक सिचुएशन की जब आप कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करते हुए रास्ते पर ड्राइव कर रहे होते हैं एंड दे डोंट रियली लेट यू फॉलो दोज रूल्स, वो थोड़ा अग्रेसिव लगते हैं अपने ड्राइविंग के वाइज, आपको चांस नहीं देते हैं टू मर्ज एंड स्टफ लाइक दैट, आपके बाजू से स्पीड अप करके जाएंगे, आपकी गाड़ी से गाड़ी एकदम ऐसे जिसको क्या बोलते हैं लाइक चिपका कर और सटा कर ड्राइव करते हैं। लाइक आई हैव एक्सपीरियंसड इट इन न्यूजीलैंड और मोस्टली इन ऑकलैंड, यहाँ पर ड्राइव करते समय। तो मैंने सोचा कि ना जिसी पर कुछ बातें जो है ये की जाए, बिकॉज देर इज़ बेसिकली अ रिसर्च रोड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। और 2019 में ये स्टडी की गई थी जहाँ पर अराउंड 2000 प्लस ड्राइवर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। एंड दिस पर्टिकुलर स्टडी वाज डन बाय नेक्स्ट बेस, जिसमें ये पता चला कि 49% ऑफ फीमेल ड्राइवर्स हैव एक्सपीरियंस्ड रोड रेज फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स, जबकि 17% ऑफ दोज वुमेन स्टेटिंग देयर जेंडर वर स्पेसिफिकली टारगेटेड। और ये भी बताया गया है कि हैरेसमेंट हो, ड्राइविंग वाइज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, जहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि बिना किसी महिला की गलती के भी उनको ज़्यादातर गलत जो ये ठहराया जाता है. और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि बहुत से फीमेल ड्राइवर्स जो है हैरेसमेंट भी फेस करती है वाइल ड्राइविंग ऑन रोड. हैरेसमेंट एज इन वर्बल अब्यूज़, यू नो, कोई आपको गाली वगैरह देकर चला जाता है, गलत जेस्चर्स कर चला जाता है, जस्ट टू शो द अग्रेशन दैट द फीमेल ड्राइवर इज़ नॉट गुड एट ड्राइविंग एंड द अदर पर्सन इन द अदर कार इज़ मच बेटर, यू नो, वो सारी चीज़ें. तो ऐसे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे, जबकि ये सर्वे भी हुआ है एंड इनफैक्ट अनदर सर्वे साइटेड बाय द वुमेन्स वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर ये किया गया था, जिसमें ये पता चला कि 55% ऑफ वुमेन ड्राइवर्स जो है दे एनकाउंटर अग्रेसिव बिहेवियर ऑन द रोड विद 20% एक्सपीरियंसिंग इट सेवरल टाइम्स अ वीक. तो आप एक महिला है, यहाँ ऑकलैंड में है या न्यूजीलैंड में है, यू ड्राइव एंड यू ड्राइव क्वाइट अ लॉट, तो आप हमें बताइए, हैव यू एवर फेस्ड एनी सच सिचुएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या किसी तरह का हैरेसमेंट ऑन द रोड या फिर यू नो दैट अग्रेशन टुवर्ड्स यू वाइल ड्राइविंग, हैव यू एवर फेस्ड इट इन न्यूजीलैंड? अगर हाँ या फिर इनफैक्ट नहीं, आपने नहीं भी फेस किया बिकॉज यू गॉट एक्सपीरियंस टू शेयर, वट एवर इट इज, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ आप शेयर कीजिए 0800 4866 पर कॉल करते हुए. And if you're a driver, not necessarily a woman, but if you were a driver on the road and you've observed this and you've got something to share, toh bhi aap hume zarur call kar sakte hain. Good morning, hum.
11: Good morning, Pooja. How are you?
1: I'm good, ji. Aap kaisi hain?
11: Very good, thank you. Actually, a nice topic.
1: Ji.
11: I haven't specifically faced harassment on the road myself. But I think there is a general attitude that, you know, if it's a woman driver, they don't know to drive, or they're too slow, or, you know, it's just that general discriminating attitude that people have actually got. And I've seen that firsthand. I know people with me who have actually made those same comments. That's a female driver, or you don't know to drive, or something like that. So I really think there is an attitude problem, but I haven't faced harassment or a road rage or anything of that sort.
1: You personally haven't experienced it?
11: No, I personally haven't experienced it.
1: But you've seen somewhat others verbally kuch aisa karte hue?
11: No, I haven't seen that. I mean... On the road, I've seen men doing it to men as well, but I haven't seen specifically targeting females.
1: Female, oh, okay.
11: But I know that, you know, people make such comments that, oh, that's a female driver, she can't drive properly, or, you know, why is she even on the road, why is she on a car? Such discriminating comments is what I've actually heard,
1: Okay, great. Thank you so much. Aapke call ke liye kya naam hai se aapka?
11: Radhika.
1: Radhika. Thank you, Radhika. Have a wonderful day. Thank you.
11: Thank you.
1: Good morning.
12: Hello, good morning, Pooja.
1: Good morning, Cheryl. Kaisi hai aap?
12: Main achhi hoon. Aur happy belated birthday to Vijay bhai.
1: Oh, thank you. I'll convey your message to him.
12: Cool, thank you. Achha, I will just share. I mean, I have been driving in New Zealand for more than 20 years and you have the rage. You definitely get it sometimes. I'll just share something happened last week, which was not even, I was just trying to take the vehicle out of my driveway. So I stay in Hill Park and every 3 months the council, एक पर्सन आके ग्रास कट करता है टॉप ऑफ वेयर वी स्टे. तो एंड ही ऑलवेज पार्क्स इट लाइक वन क्वार्टर, उसकी जो वैन होती है मेरी ड्राइववे में ही होती है. एंड व्हाट ही डज इज नॉर्मली, आई मीन एवरी, बिकॉज ही कम्स रियली अर्ली एंड आई लीव होम एट जस्ट आफ्टर 8 एंड ही विल पार्क ओवर देयर एंड देन आई विल बी रिवर्सिंग एंड ट्राइंग टू टेक माय व्हीकल आउट नॉट टू से एनीथिंग. And then last week, थोड़ा ज्यादा पार्क था तो आई वॉज एबल टू टेक माई वैन आउट. आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, कैन यू प्लीज क्लोज योर बूट, आई नीड टू गो एंड ड्रॉप ऑफ माई, आई मीन मुझे जाना है. एंड ही जस्ट सेड, ओह जस्ट टेक इट आउट. मैंने कहा योर बूट इज अप, सो ही क्लोज द बूट. देन मैंने रिवर्स किया एंड देयर वाज अ, जो वो होता है ना रेक, इट वॉज ऑन द ग्राउंड एज वेल. सो आई पिक दैट अप, मैंने ग्रास पे डाला. एंड फिर जब मैं आई तो, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, सो आई केम होम आफ्टर ड्रॉपिंग माई डॉटर. And then he was standing there, I mean, cutting the grass again, and the boot is still up, and now I can't get in. I didn't want to say anything to him, but he, of course, by andar bahar, I have to reverse and try to get in, and then he started swearing at me.
1: Right.
12: मुझे गालियाँ दे रहा है कि औरतों को गाड़ी चलाना नहीं आता है. Why do Indian women don't know how to drive? Bloody, I mean, ये Asians ये सब करके गालियाँ निकाल रहा है. मेरे driveway में park करके मैं उतरी, मैंने photo लिया उसकी गाड़ी का. क्योंकि सवेरे सवेरे ना कोई गाली दे अच्छा नहीं लगता. आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग.
1: सुबह सुबह क्या कोई भी कभी भी गाली दे अच्छा नहीं लगता.
12: अभी अभी तो मैं गाड़ी चला भी नहीं रही हूँ. यू पार्क्ड इन माय ड्राइवे. तो वो होता है. आई थिंक वो एशियंस करके बहुत हमें बोलते हैं. नेवर माइंड, यू आर मोर एक्सपीरियंस एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग.
1: इवन देन, राइट, ओके. थैंक यू फॉर योर कॉल. हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. कैसी हो परविंदर?
13: गुड मॉर्निंग. अच्छी हूँ. आप कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया. स्कूल जा रही हैं आप?
13: हाँ जी, बेटे को छोड़ के आई हूँ.
1: ओके, तो बताइए आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर, बिकॉज आप तो बहुत ज्यादा ड्राइविंग करती हैं एवरी डे ऑलमोस्ट.
13: मेरे साथ एक बार ही हुआ था ऐसे कि होता ना मोटरवे में लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में 80 का स्पीड, या इफ यू आर नॉट इन हरी यू कैन ड्राइव ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ना. तो मेरे को इतना कहीं जल्दी नहीं था जाने का, तो मैं उधर चला रही थी एक्सट्रीम लेफ्ट में. और काइंड ऑफ एक पुल जैसा होता है, नॉट एग्जैक्टली ब्रिज बट छोटा सा, जब एग्जिट लेते हैं तो एक आता नहीं है
1: जी जी जी
13: ब्रिज टाइप. तो मैं उधर के साइड थी और वहां पे हार्डली एनी स्पेस होती है ना. तो मेरे पीछे से एक बंदा मुझे ओवरटेक करके निकला. वहां पे रोड भी नहीं था. और वो मेरे लेफ्ट साइड से निकला ब्रिज के पास से ओवरटेक करके. और फैमिली है साथ में, और मतलब बहुत स्केरी था मेरे लिए कि यू डोंट वैल्यू योर लाइफ बट हम तो करते हैं. तो मैंने लाइफ में पहली बार ही हॉर्न बजाया था. मैं कभी हॉर्न नहीं देती क्योंकि आई अंडरस्टैंड है ना, कभी लोग स्टक हो जाते हैं, कभी दे स्किप आउट ऑफ देयर माइंड कि वो लाइट्स खड़े हैं. मैं कभी नहीं हॉर्न देती, पर उस दिन क्योंकि ऐसा लाइफ रिस्क का बात हो गया था ना, मैंने उसको हॉर्न दिया बंदे को बहुत बड़ा. कि व्हाट आर यू डूइंग, एक तो आप रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हो, वहां पे जगह भी नहीं है. उसने ऐसे विंडो डाउन करके मुझे मिडिल फिंगर दिखा के और हैंड जेस्चर्स करके चला गया ना. तो मेरी मम्मी जो थे मदर इन लॉ, वो कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, एक तो खुद की गलती है.
1: Exactly,
13: और वो ऐसे करके गया. तो वही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ऐसा, और मैं बहुत शॉक थी कि अपनी गलती
1: पे
13: भी कोई ऐसे कैसे
1: करता है. Exactly, होता है वो.
13: पहली बनी और रिस्किंग अदर पीपल लाइफ जो अपना आराम से चला रहे हैं. जहाँ पे मतलब इट्स अ नॉर्म, सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट चला रहे हो, और इफ यू आर इन अ हरी गो ऑन राइट साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्यों वो कर रहे हो ना.
1: एज लॉन्ग एज यू आर जस्ट इन द स्पीड लिमिट, यू नो, यू नॉट अंडर द स्पीड लिमिट, लाइक वे टू अंडर, or you're not over the speed limit, that's what matters. So yes, I understand what you're saying. जी
13: उसके बाद थोड़ा टाइम तो मुझे डर लगता था रोड पे जाने में कि कैसे पागल लोग होते हैं रोड पे. हो जाता है ना एक बार.
1: यू गेट ट्रू
13: ऐसा हुआ था मेरे
1: साथ. ओके परविंदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. थैंक यू. यू हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल डे अहेड, एंड ड्राइव सेफ. थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. सो चलिए कुछ कॉल्स आए. अगर आपके पास कुछ है एक्सपीरियंस टू शेयर, यू आर अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू कॉल एंड शेयर, तो आप ज़रूर हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन 5599. जैसे कि मैंने कहा कि आज ये टॉपिक मैंने इसीलिए छेड़ा क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंसड इट क्वाइट अ लॉट. ये जो यू नो हैंड जेस्चर्स करना, गालियाँ निकालना. इनफैक्ट एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि लिटरली एक बंदे की गलती किसी और की थी, बट आई वॉज फॉलोइंग ऑन माई रूल्स एंड एवरीथिंग एंड आई वॉज गोइंग नॉर्मल. तो उन्होंने क्या किया, जब वो मेरी गाड़ी के पास से गुजरे तो उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे लाकर अपनी गाड़ी पार्क की व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग, फोर्सिंग मी टू डू अ सडन स्टॉप एंड गॉट ऑफ द कार एंड देन मेरे विंडो के पास आकर मुझको इतनी गालियाँ निकाली. और पीछे मेरी बेटी बैठी हुई थी एंड शी वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम. और आई थैंक गॉड आई हैव दिस हैबिट कि जब भी आई मेक श्योर लाइक बिफोर लीविंग द हाउस, बिफोर इवन मूविंग द कार, आई लॉक माई डोर्स एंड माई विंडोज आर ऑलवेज अप. तो उस टाइम पर वो था लकीली बाय गॉड्स ग्रेस. एंड और अपन देखिए उस बंदे ने गालियाँ निकालनी शुरू की और बहुत अग्रेसिव बिहेवियर था, बैंक द विंडो वन और टू टाइम्स एज वेल. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड गॉड्स ग्रेस कि उन्होंने जब पीछे मेरी बेटी को बैठे हुए देखा तो वॉक्ड अवे लाइक डिडंट डू मच बट जस्ट वॉक्ड अवे फ्रॉम देयर अग्रेसिवली. That was like one of the worst experiences I've had in like while driving in Auckland basically. और एक बार अभी recently हुआ जहाँ पर एक बंदे ने मुझे merge करने नहीं दिया when it was my turn basically. But I waited, there was no issues and all. फिर भी मेरे को you know गलत gesture कर गालियाँ निकाल कर चला गया. And आज सुबह भी ऐसा ही कुछ experience मैंने किया which made me you know get this topic today on radio just to get the feel out there कि क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में. But yes, getting back to it, different researches and surveys have been done जहाँ पर ये proof हुआ है कि yes, जो फीमेल ड्राइवर्स होती हैं वो फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर करती हैं हायर रेट्स ऑफ जेंडर बेस्ड हैरेसमेंट अग्रेशन या स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रोड कंपेयर्ड टू अदर जेंडर्स. दैट डज हैपन, ये रिसर्च ने भी बैक किया है. बट योर एक्सपीरियंस कुड बी डिफरेंट, आई मीन नॉट नेसेसरली कि आपने ऐसा कुछ फेस किया. जैसे कि हमारी पहली कॉलर ने कहा नहीं फेस किया, दूसरी कॉलर ने रास्ते पर नहीं अपने खुद के ड्राइवर पर फेस किया, एंड द थर्ड कॉलर सेड दैट यस शी फेस्ड इट. सो If you've got anything to share on the topic, remember 5599. That's the number jis par aap hamare paas messages apne send kar sakte hain.
9: Bollywood's most wanted.
14: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao. Main laau apna A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Tubo jao, papi ho. Tubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Switch to AMI car insurance.
4: High of 17, cloudy and a bit wet today. Into the city, Southern Motorway, 51 minutes, Manukau to the city. We're slow from Takanini, heavy Otahuhu to Rimuera. Southwestern, heavy northbound through Whitty as well. Northwestern, 39 minutes in from Massey. Slow all the way from there, heavy patches, Te Aratu to St. Luke's. Northern, 33 from Constellation. Heavy at Silverdale and Greville to the bridge. Upper Harbour Motorway, slow northbound.
3: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
5: With Qantas points, you can turn your everyday into a holiday. Turn supermarket checkouts into holiday check-ins with everyday rewards. Turn drives into flights by earning points on car hire with Avis. And turn short stays into staying longer when you earn points with Qantas Hotels. Become a Qantas frequent flyer today and start earning Qantas points towards your next holiday. Join for free at Qantas.com. T's and C's apply.
6: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखिए प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
7: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
10: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
11: Shower dome.
0: Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: आपको याद है मैंने आई थिंक इसी घंटे की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था और आपसे मैंने कहा था कि अगर आपको ऑप्शन मिले, ऑप्शन ये कि क्या आप $1 million जो है ये इंस्टेंटली लाइक ये चाहते हैं, अगर कोई बोले कि अभी आपको $1 million जो है ये दिया जाएगा, या फिर यू कैन चूज $1,000 पर वीक विल बी पेड टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट विल यू चूज? Would you choose $1 million right now or $1,000 a week for the rest of your life? आपकी चॉइस क्या होगी? आप ऐसा कीजिए, अपने नाम के साथ 5599 पर अपना चॉइस जो है ये लिखकर बताइए और फिर इस गाने के ठीक बाद मैं आपको इस सवाल से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ये बताने वाली हूँ।

तो आज आपके लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में इस बार हम शामिल कर रहे थे जयेश गांधी और साथ में अलका याग्निक की आवाजों को. और ये जो गाना है आज हमने लिया फ्रॉम द मूवी मिलेंगे मिलेंगे, 2010 में ये फिल्म आई थी. हैवन सीन द मूवी इज येट, बट इस फिल्म के गाने जो है ये पता है कि काफ़ी पॉपुलर है और बहुत पसंद भी किए जाते हैं. फिलहाल 14 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजने में. ठीक 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए रहेगा और उसके बाद व्हाट्स गोइंग ऑन ये भी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे. हमने आपसे एक सवाल पूछा तो उसके लिए कुछ जवाब हमारे पास जरूर आए हैं. अभिषेक ने कहा है 1 मिलियन नाउ, और किसी और का जवाब आया है 8280, उन्होंने कहा 1 मिलियन बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट. उसके अलावा एक और एक मैसेज आया है, हाई दिस इज निकिता एंड श्रेया एंड वी विड पिक द $1,000 अ वीक बिकॉज इफ यू गेट $1 million राइट नाउ यू विल यूज इट ऑल, बट इफ यू गेट $1,000 वीक एवरी वीक यू विल हैव मनी फॉर एवर एंड यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन ऑल्सो सेव दैट मनी फॉर समथिंग एल्स. गुड इंटरेस्टिंग. सो मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा, चलिए मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्यों. क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ये सामने आई है. ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये हकीकत में किसी से पूछा गया है और उन्होंने एक चॉइस की. एक यंग महिला है क्यूबेक कनाडा से और ये वायरल हुई है आफ्टर रिपोर्टेडली चूजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओवर इंस्टेंट वेल्थ फॉलोइंग अ लॉटरी विन, जिसके तहत उनको ये ऑप्शन जो मिला. नाउ मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये लॉटरी जिसका नाम बताया गया है गन या वी, ये दरअसल फ्रेंच का मतलब होता है, फ्रेंच में इसका मतलब होता है विनर फॉर लाइफ. एक पॉपुलर $4 स्क्रैच टिकट गेम है जो लॉटो क्यूबेक लेकर आते हैं. दैट ऑफर्स अ टॉप प्राइस ऑफ $1,000 अ वीक फॉर योर लाइफ या फिर $1 million लमसम आपको पेमेंट मिल सकता है. सो दिस पर्टिकुलर गेम रिक्वायर्स मैचिंग 3 आइडेंटिकल सिंबल्स टू विन और टॉप प्राइज में ये आपको ऑप्शन दिया जाता है टू चूज बेसिकली. तो ये जो महिला है इन्होंने क्या चूज़ किया, इनका इनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, 20 ईयर ओल्ड है ये. और इनके इनका पहला नाम या फिर इनका नाम बेसिकली ब्रेंडा है और इन्होंने इस लॉटरी विन के तहत चूज़ किया $1,000 a week for the rest of her life instead of choosing $1 million lump sum payout. वैसे इन्होंने ये guaranteed lifetime payment इसलिए choose की क्योंकि इनका ये कहना है कि ये जो option है इससे इनका ज़्यादा फ़ायदा होगा. Mathematically अगर देखा जाए for the अभी ये 20 years की हैं और अगर 60 years तक अगर ये $1,000 a week का payment लेती है which will be until she turns 80, तो इनको total of 3.1 मिलियन जो है ये मिल सकता है. इट डिपेंड्स ऑन लाइफ स्पेन ऑफ कोर्स, लेकिन अगर 80 तक ये जीवित रहती हैं और एवरी वीक $1,000 अ वीक का पेमेंट लेती हैं तो 3.1 मिलियन मिलेगा इंस्टेड ऑफ 1 मिलियन लमसम. एंड दैट्स हाउ शी मेड दिस चॉइस. एंड इनके इस एक्सेप्शनल चॉइस के बाद इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिल रही है और लोग इनकी तारीफ भी कर रहे कि भाई क्या बात है, एक सिक्योरिटी इनको मिल चुकी है इनकी पूरी जिंदगी के लिए. $1,000 a week बिना कुछ किए इनके हाथों में आएगा.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate traffic.
2: Visit a Ryman village this week.
3: Morning showers, quite cloudy today, 17 hour high into the city. Northern motorway starting to ease, 33 minutes in from Constellation Drive, heavy at Silverdale and Greville to the bridge. Northwestern, 34 in from Massey, slow from Tiata to south, heavy patches to St. Luke's. Southern, still 50 minutes in from Monaco, slow from Manurewa, heavy Papatoetoe right to Remuera. Southwestern, heavy northbound through Wiri.
2: Ryman villages are open to view Friday and Saturday, 10 till 2. Search Ryman open days.
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
8: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. आए और enjoy करे इनका sophisticated dining experience, जहाँ पर आपको तरह तरह के flavors मिलेंगे. Creative Asian fusion dishes से लेकर zesty seafood तक, साथ में refreshing cocktails, सब कुछ एक बहुत ही elegant और stylish अंदाज में. ये open है for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoetoe and Hamilton. Throwback.
11: $1,000 a week तो नहीं, लेकिन आप हमारे साथ रोवा पर चर्डल खेलते हुए $100 each day जरूर जीत सकते हैं. टोटल ऑफ $7,000 जरूर हम गिवअवे कर रहे हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपना शेयर जीतने का अगर आप रोवा पर जाकर चर्डल, जो हमारा वोट गेम है, ये खेलते हैं. इट्स अ कीवी वर्ड विजिट बेसिकली, जहाँ पर आपके लिए कुछ कीवी वर्ड्स, सेइंग्स या फिर फ्रेजेस जो है ये लिखे जाएंगे एंड यू विल हैव टू क्रैक इट. मतलब आपको उसका मतलब जो है ये बताना है, आपको बताना है कि ये क्या मतलब, कीवी वर्ड, कीवी स्लैंग, कीवी फ्रेज एक्चुअली में व्हाट डज इट मीन. एंड अगर आप ये हमें बता देते हैं झटपट, जैसे ही आपने सवाल देखा वैसे ही बिना किसी क्लू का इस्तेमाल किए, तो आपको बोनस एंट्रीज मिलते हैं, बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, विच मीन्स हायर चांसेस ऑफ विनिंग. सो अगर आप भी अपना लक ट्राई करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं योर शेयर ऑफ $7,000 $100 ईच वीकडे या ईच डे सॉरी, तो रोवा पर जाकर चडल जरूर खेलिएगा.

0: accurate traffic.
1: Switch to AMI car insurance.
2: Cloudy with some showers, high of 17 today. Into the city, northern, still fairly heavy, Greville to the bridge and at Silverdale. 33 minutes in from Constellation to the city, 54 from Silverdale. Northwestern a bit better, 30 in from Massey, slow from the causeway, heavy patches to St. Luke's. Southern, 45 minutes in from Mataco, fine to Mataco, but slow from there, heavy from Papatoetoe. Southwestern, heavy northbound through Whitty.
1: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
3: You can enjoy a flexible personal loan with zero establishment fee when you apply for a GEM personal loan by the 19th of May 2026. GEM loans can be used for all kinds of things, like a new car, your dream holiday, a much needed renovation, or simplifying debt. With weekly, fortnightly, or monthly repayment options available. Apply online in under 7 minutes, and if approved, we'll waive the loan establishment fee. That's a saving of $240. Establishment fee waived until 19th of May 2026. T's and C's apply.
4: Cooking ka asli flavor chahiye? Switch to Kashish Foods Ginger Garlic Paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar free. Sirf clean, natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho, ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur ha, buy any Kashish dosa batter, any size, aur pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
5: South Auckland Motors' biggest sale ever is on now. Save thousands on new, demo and used cars. With big deals, big choices and big savings. On now, but end Sunday at South Auckland Motors, Mataco, Botany and Pukekohe.
6: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujuda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. Squirrel.co.nz.
7: Danny didn't think he needed a DVS system.
8: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
7: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
8: Nah, only one room. It was just too noisy.
7: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: Good morning, Isimitik Nobajre here.
10: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. The freight sector will get uncapped access to fuel under a revision to the government's plans for a potential shortage. Main Freight's Don Braid says it's important for key industries.
12: Diesel is the main component of how we move freight around this country, whether it's trucks, trains or on ships. Probably what has surprised the rest of the country is how much diesel is used for industry in general.
11: The ill-fated Hunter Virus cruise ship has set sail for the Netherlands after evacuating all passengers, including a Kiwi. Two more former passengers have tested positive, one returning to the US and the other to France. The ship's captain says he is grateful for the community on board.
13: What moved me the most was your patience, your discipline and kindness that you show to each other throughout.
11: A 600-ton crane is being used as part of Auckland Council's flood risk reduction work in Mangere. Project manager Leighton Gillespie says it'll help shift an equally gigantic steel pipe.
14: That's one of the largest in the southern hemisphere, and it was built in Hawke's Bay in Napier. So we sort of had to get a team to actually prove that it could meet the standards.
11: MBIE is monitoring a recall of Sheen baby rattles and teethers in Australia. New Zealand officials say they've reached out to the company to see if the products were also sold here. Rugby with shift four, the Chiefs are readying themselves for an all-Kiwi finish to Super Rugby Pacific. Their final three regular season games are against the Highlanders, Crusaders and Blues. Chiefs prop Ollie Norris says that these games will help them keep building for the playoffs.
15: I think at the moment we're happy for where we're standing, but looking to keep growing and growing because it doesn't really mean anything till the back end of the season. We found that out last year.
11: And world number one, Jannik Sinner, has breezed into the quarterfinals of the Italian Tennis Open in Rome.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best. Hamari good brands, Mia.
10: Wow. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: So, याद रहे आज के मौसम के बारे में कहा जा रहा है कि बारिश होगी समय समय पर, स्पेशली इन द आफ्टरनून. आज वेदर जो है ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बारिश जो है ये होगी. 13.9 डिग्रीज टेम्परेचर है फिलहाल, हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. ओवरनाइट 10 डिग्रीज रहेगा और आज का सनसेट 5:26 PM पर होगा.
10: Breakfast show with Vijay and Pooja,
0: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on? क्या बकते हो?
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: आज का जो क्या बकते हो आपके लिए हम लेकर आए हैं यार, दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट एक्चुअली हैपेंड इज़ समथिंग दैट जो मुझे और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भाई ऐसा भी होता है क्या. ये दरअसल स्टोरी है यूपी से, इंडिया से, जहां पर एक स्ट्रेंज चोरी की खबर जो है ये सामने आई. सीतापुर उत्तर प्रदेश, जहां पर एक यंग व्यक्ति है जिन्होंने ना केवल चोरी की लेकिन अपनी जेनरोसिटी भी दिखाई चोरी करने के बाद. जो चोर है उन्होंने दरअसल एक रोटरी टेलर जो है ये इसकी चोरी की जो एक शॉप में रखी गई थी. लेकिन हाउएवर द इंसिडेंट, बिफोर द इंसिडेंट इन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी टू द शॉपकीपर, उनसे ये वादा किया कि वो दरअसल इसके लिए जो पूरे के पूरे पैसे हैं सूद समेत यानी विद इंटरेस्ट अगले 3 सालों में वापस कर देंगे. चोर ने लिखा, जय श्री राम, आई एम टेकिंग योर इक्विपमेंट, इट्स करंट वैल्यू इज अराउंड 90,000 एंड इन 3 years द इंटरेस्ट एट 10% विल बी 27,000. इंटरेस्ट जो है ये इसका रहेगा, मेकिंग द टोटल टू 1,000 या फिर 117,000 एंड यू विल रिसीव द अमाउंट विद इन 3 years. मतलब 90,000 रुपये जो है ये इसका एक्चुअल वैल्यू है और 27,000 रुपीज़ जो है ये 3 सालों का जो 10% इंटरेस्ट मिलाकर हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 1,17,000, 1,17,000 रुपीज़. और आपको ये सूद समेत विद इंटरेस्ट मैं अगले 3 सालों में वापस कर दूंगा. मई गॉड प्रोटेक्ट यू डे एंड नाइट. ये चोर ने चिट्ठी लिखी और इस शॉपकीपर के नाम छोड़ दी और फिर वहाँ से ये जो चोरी का सामान है बेसिकली ये लेकर फरार हो गया. अब जब इसके बाद अगले दिन जो शॉपकीपर है ये वापस आए और उनको पता चला कि उनके शॉप से ये सामान जो है इसकी चोरी हुई है, तो उन्होंने पुलिस को तो इत्तला किया ही किया, लेकिन साथ में उन्होंने ये जो लेटर चोर ने उनके लिए छोड़ा था वो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला, जिसके बाद चलकर जैसे कि मैंने कहा इस चोर की जेनरोसिटी और इनका ये जो लेटर टू द शॉपकीपर ये भी वायरल हो रहा है. एक रोटरी टिलर जो है बेसिकली एक माउंटेड एक चीज़ होता है टिपिकली माउंटेड टू द बैक ऑफ अ ट्रैक्टर जो कि 3-point hitch के साथ होता है और ये ट्रैक्टर का एक मतलब एक सामान है जो ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता है. सो आई बिलीव द चोर मस्ट हैव नीडेड दैट. शायद उनके पास पैसे नहीं थे वो ख़रीदने के लिए, इसीलिए उन्होंने चोरी की और फिर ये पूरा जो चिट्ठी जो है ये लिखकर उनके शॉपकीपर के लिए छोड़ा कि 3 सालों में पैसे जो है ये वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट. कीप दैट इन माइंड. 6 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर आपके लिए. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM या रोवर ऐप पर अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया. डू लेट मी नो कि आप कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि आई कैन गिव यू अ शाउट आउट एज वेल.

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: So let's find out हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में स्पेसिफिकली क्या कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और कैसे हम इसका हिस्सा बन सकते हैं. सबसे पहले आपको हम याद दिला दें कि होने वाला है इसी वीक सैटरडे को यानी 16th ऑफ मई को मलायोलो कम्युनिटी सेंटर 16 वॉकहरी प्लेस मैंगरी में द 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे. ये रहेगा 4:30 PM टू 8:30 PM के बीच, बट द डोर्स विल ओपन एट 4 PM, जहाँ पर आपको नेटवर्किंग करने का, लोगों से मिलने जुलने का बेसिकली, और टी एंड स्नैक्स का मजा उठाने का मौका जो ये मिलेगा. बट शार्प 4:30 द ऑफिशियल प्रोग्राम विल स्टार्ट, जहाँ पर एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री. कैंडल कमेमोरेशन होगा, आर्टिफैक्ट डिस्प्लेज होंगे यहाँ पर, सीनियर्स को रिकग्निशन अवार्ड मिलेगा, कल्चरल परफॉर्मेंसेज बहुत सारे रहेंगे, लाइव सिंगिंग होगा, रोल प्ले होगा, एंड इनफैक्ट यहाँ पर ऑन स्पॉट प्राइजेस भी आपको जीतने के मौके मिलेंगे. क्विज में आप हिस्सा ले सकते हैं. बहुत सारे स्पीचेस भी रहेंगे जिसमें जो कम्युनिटी के जाने माने लोग हैं ये भी आपका साथ ज़रूर देंगे ऑन द नाइट. द 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, बेसिकली गिरमिट दिवस जो है ये फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन विद ISAP आपके लिए लेकर आ रहे हैं. दिस इज़ बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल इवेंट जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडियंस इन फीजी, इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड गिरमिट क्या होता है, गिरमिट डे क्या होता है, फिजी में जो भारतीय हैं उनका इतिहास, उनके एंसेस्टर्स का इतिहास क्या है, उनके स्ट्रगल्स क्या कुछ थे, ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर आपको ये सब कुछ पता चलेगा. एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने कल भी ये बोला था एंड आई'ड लाइक टू रिमाइंड दैट अगेन टुडे, अगर आपकी पैदाइश फिजी के है

0: फिजी की है या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी पैदाइश फिजी के हैं और आपके बच्चे की पैदाइश यहाँ की है, बट यूड लाइक देम टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर एंसेस्टर्स हैव बीन थ्रू और कैसे उनका एग्जिस्टेंस एज ए फिजी इंडियन जो है ये हुआ, तो आप ज़रूर उनको इस इवेंट का हिस्सा बनाइएगा। जैसे कि मैंने ये भी बताया, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, नो एंट्री फीस इज रिक्वायर्ड, सो आप डेफिनेटली इसका हिस्सा बन सकते हैं मज़े से, आराम से। ऑन दी अदर हैंड, श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट भोजन मेला लेकर आ रहे हैं, यानी कि फूड कार्निवल, और ये रहेगा इसी संडे 17th of May को, 378 अररिमू रोड रामारामा, जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर अपना जो भी योगदान आप करेंगे, इट विल बी बेसिकली अ सपोर्ट टुवर्ड्स लॉर्ड वेंकटेश्वरा का जो टेंपल प्रोजेक्ट है उसके लिए। फ्री एंट्री है यहाँ पर भी, इनफैक्ट फ्री ड्रिंक्स और फूड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत सारे रिटेल स्टोर्स रहेंगे जिसमें आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, हिना आर्टिस्ट से आप जो हिना डिज़ाइन से मेहंदी ये लगवा सकते हैं, फेस पेंटिंग और बाउंसी कासल भी रहेगा बच्चों के लिए जो वो इन्जॉय कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिमाइंडिंग यू ऑल, नेक्स्ट वीक सैटरडे यानी कि 23rd of May को वाइब मिक्स इवेंट्स लेकर आ रहे हैं द ग्रैंड मस्ती नाइट, ये रहेगा नेटबॉल हॉल मनुरेवा में, जहां पर फिजी के बहुत ही जाने माने आरजेज एसएन एंड जय भैया जी विद राउडी नमन ये ऑन स्टेज परफॉर्म करने वाले हैं, बहुत सारे अमेजिंग स्किट्स रहेंगे, कॉमेडी रहेगा, डांस, मस्ती, मज़ा, टोटल मैडनेस ऑन स्टेज जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द डांसिंग लेजेंड चर्फर आफ्टर 17 ईयर्स ये न्यूजीलैंड में आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, साथ में यहाँ पर आपको एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस मिलेगा फ्रॉम द ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा, जो कि मेल एंड फीमेल वॉइस दोनों में गाने गाते हैं, एंड अमेजिंग डांसर मोंटो मोनिका ये भी रहेंगे, और साथ में युवा डांस ग्रुप का परफॉर्मेंस रहेगा, सम अमेजिंग डीजेज इन ऑकलैंड ये यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, एंड वेरी ओन लंच बॉक्स के जो होस्ट हैं केतन ये भी यहाँ पर आपके लिए कुछ गाने लेकर आएंगे अपनी खूबसूरत आवाज़ में। एंड बाय द वे आपको ये भी बता दें कि अगर आप द ग्रैंड मस्ती नाइट का हिस्सा बनते हैं तो बहुत सारे इनाम जीतने के भी मौके रहेंगे, यहाँ पर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ओर से वाउचर्स, रॉयल गोल्ड हैम्पर की ओर से पैक्स, या रॉयल गोल्ड की ओर से हैम्पर पैक्स, ग्रीन हॉर्न इनकी ओर से गिफ्ट हैम्पर्स, और विकेट चिकन बोटनी डाउन्स ब्रांच इनकी ओर से फूड वाउचर्स भी जीतने का मौका आपको मिलेगा। फ्री पार्किंग एंड सिक्योरिटी भी रहेगा, फूड एंड लिकर वगैरह भी यहाँ पर फॉर परचेज अवेलेबल रहेगा, दैट यू कैन डेफिनेटली एन्जॉय वाइल हैविंग fun at the show the grand musty night next saturday 23rd of May ko hunters food town papatoy toy jay's fresh mart papatoy toy get fresh supermarket mangri kes hair and beauty saloon manureva aur wicked chicken botany downs branch saath mein gender hair and beauty saloon kevin dish drive yahan par aap tickets le sakte hain aur is event ka maza bhi definitely aap utha sakte hain now let me also remind you ki hone wala hai bahut hi jald खास आपके लिए एक और इवेंट जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं, अ वेरी स्पिरिचुअल ब्यूटीफुल इवेंट टू बी पार्ट ऑफ, जिसमें आप ज़रूर भाग ले सकते हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली श्रीमद् भागवत कथा जो 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर एंड ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन श्रीमद् भागवत कथा के साथ, ये रहेगा पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा द्वारा, ये फ्राइडे 5th से लेकर थर्सडे 11th जून तक रहेगा, 4 PM डेली, फ्री इवेंट है और यहाँ पर आप ज़रूर भाग ले सकते हैं, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। द इवेंट इज़ फ्री, ये महात्मा गांधी सेंटर में रहेगा बाय द वे, राधा कृष्ण मंदिर पर, 145 न्यू नॉर्थ रोड इन टेरिस, लेकिन आपको रजिस्टर ज़रूर करना होगा एंड रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सो इफ़ यू नीड टू रजिस्टर, आप दरअसल श्री राधा कृष्ण मंदिर को ज़रूर संपर्क कर सकते हैं इसके लिए और डिटेल्स हासिल कर सकते हैं।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Hey, the Komage.
1: You get money, get cash. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
3: Big Points Blitz is on now. Get up to $30 worth of everyday rewards vouchers when you shop at Woolworths or Fresh Choice. Boost the offer in your everyday rewards app, shop in store or online and collect big bonus points. Hurry! Big Points Blitz offer ends 24th of May. T's and C's apply.
2: Absolutely everything is on sale at Freedom. My Freedom members unlock early access and get up to 60% off everything. Not a member? Join today. Sale on now. Only at Freedom.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट एनजेड।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: फॉर्च्यून की ओर से आप भी द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा का मजा उठा रहे हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम पर या रोवा ऐप पर. आप हमारे साथ देर हमने कहा था अपने मैसेजेस भेजिए. आई लव टू गिव यू अ शाउट आउट. वैसे पवन कुमार जी हैं पापा टोयोटा से. थैंक यू सो मच पवन आपके मैसेज के लिए. विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू आपके साथ के लिए भी. फ्लाईवे फ्रेंजी कोड स्टिल गोइंग दिस वीक, ये किसी ने पूछा है तो आपको बता दें येस, बट दिस इज द फाइनल वीक. जैसे कि हमने आपको रिमाइंड किया है आज का कोड भी हमने दे दिया एंड आई थिंक जो टाइम है वो भी इज अप नाउ फॉर द ब्रेकफास्ट शो कोड एंटर करने के लिए. बट डोंट फॉरगेट आज दिन में 11 से 12 के बीच और फिर आज दो से इफ आई एम नॉट या जस्ट अ मोमेंट यस आज 1 to 2 PM के बीच और फिर 5 PM to 6 PM के बीच जो माय टाइम लंच बॉक्स और ड्राइव शो के कोड्स हैं फॉर फ्लाईवे फ्रेंजी ये भी रिवील किए जाएंगे. इफ यू मिस द ब्रेकफास्ट शो का कोड तो बाकी तीन कोड जरूर ट्राई कीजिएगा ग्रैब करने का एंड टू एंटर इट ऑन रोवर ऐप फॉर योर चांस टू विन अ रिटर्न एयर टिकट टू फिजी. टीज एंड सीज के लिए hum.rover.nz जरूर विजिट कीजिएगा. फिलहाल चलिए आपको याद दिला देते हैं हमारे म्यूजिक स्टेशन के बारे में भी. इफ यू मिस्ड आउट ऑन इट तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि हमारे जो म्यूजिक स्टेशन है हम रिवाइंड ये रोवा पर नंबर वन म्यूजिक स्टेशन है. फिलहाल बॉलीवुड के गोल्डन ईरा का जो बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक 60s एंड 70s से ये आप सुन सकते हैं नॉन स्टॉप बैक टू बैक. और ऑफ कोर्स नंबर टू म्यूजिक स्टेशन इज 80s जुकबॉक्स. Who would have thought Rover par 1 and 2 dono hi hum ke music stations hai that you can definitely enjoy non-stop 80s ke music ka maza aap utha sakte hai. And talking about Fiji se jo waha ka bahut hi you know religious spiritual Fiji bhajan and Fiji kirtan ye bhi aapko yahan par sunne ko milega. Fiji bhajans mein 24/7 duniya ka pehla free bhajan streaming platform hai jo aap enjoy kar sakte hai. Aur Fiji kirtan sangra जो कि दुनिया का पहला 24/7 फ्री फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे अमेजिंग कीर्तन आर्टिस्ट्स हैं जो फीजी के उनके कीर्तन को आपको सुनने का मौका मिलता है फीजी कीर्तन संग्रह के तहत. और इनफैक्ट अब नए जो कीर्तन है ये भी आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं. सो इन्जॉय अ बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट्स और डेफिनेटली इसका मजा आप उठा सकते हैं. इफ़ यू एन्जॉय द फन पैपी वाइब द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ म्यूजिक दीज डेज पंजाबी सॉन्ग्स तो आप चढ़दी कला पंजाबी हिट्स जो है ये भी कर सकते हैं. बैक टू बैक पंजाबी हिट्स जो ओनली ऑन रोवर ऐप आपको मिलेंगे. एंड ऑफ कोर्स राहत फतेह अली खान, इनकी खूबसूरत आवाज़, इनके खूबसूरत बॉलीवुड के गाने, इनकी कव्वालियाँ, इनके सूफी सॉन्ग्स, ये सब कुछ आप इनके म्यूजिक स्टेशन में जरूर सुन सकते हैं. दैट इज अवेलेबल फॉर यू ऑन रोवर ऐप. सो डू चेक इट आउट.
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
3: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नेहा कक्कड़ और साथ में मिका सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे रमैया वस्ता भैया। 2013 में ये फिल्म आई थी, इसी का ये गाना स्पेशली आपके लिए। एंड आई थिंक इस गाने में जैकलिन फर्नांडिस, साथ में देवा श्रुति हसन एंड ऑफ कोर्स नहीं गिरीश कुमार, नॉट श्रुति हसन, गिरीश कुमार और साथ में प्रभु देवा जो है ये दिखे थे। तो उसी फिल्म का ये गाना आज आपके लिए हम पेश कर रहे थे। बट फॉर नाउ बातें करें अक्षय कुमार की। वेरी वेरी अमेजिंग एक्टर व्हेन इट कम्स टू 2000 की इनकी कॉमेडी फिल्म। यार आई लव्ड वॉचिंग द फिल्म्स ही हैड डन। एंड रिसेंटली मैंने नमस्ते लंदन जो है ये वापस से देखी। आई एंजॉयड इट, आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ द मूवी, स्पेशली फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी, जो गाने थे, एवरीवनस परफॉर्मेंस, आई लव्ड इट। बट टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार पर्टिकुलरली, इनकी जो फिल्में आती थी 2000 में, बेट, वेलकम हो या फिर भूल भुलैया जो ओरिजिनल आई एम टॉकिंग अबाउट, साथ में हे बेबी, देर वर सो मेनी मूवीज दैट ही हैड डन। नमस्ते लंदन वाज वन ऑफ दोज मूवीज एट दैट टाइम। और भागम भाग, लाइक हाउ कैन वी फॉरगेट भागम भाग, हाउ कैन वी फॉरगेट हेरा फेरी। तो ऐसी बहुत सी फिल्में इन्होंने की हैं जिनमें इनके रोल्स जो है ये कुछ कॉमेडी के साथ आते हैं। पीपल लव्ड वॉचिंग हिम। रिसेंटली इनकी भूत बंगला जो फिल्म आई थी, जिसमें इन्होंने एक बार फिर काम किया विद प्रिया दर्शन, अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस वर देयर, अनफॉर्चुनेटली दोज एक्सपेक्टेशंस वर नॉट मेट। बट अब एक और एक फिल्म अनाउंस की है इन्होंने विद अनदर डायरेक्टर, जिनके साथ इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, जिसमें वेलकम, सिंग इज किंग और थैंक यू जैसी फिल्में शामिल हैं। वी टॉकिंग अबाउट अनीस बज़मी। अपेरेंटली कहा गया है कि अनीस बज़मी एंड अक्षय कुमार दे आर गियरिंग अप फॉर अ हिलेरियस फैमिली कॉमेडी मूवी, जो इसी साल एक्सपेक्टेड है टू रिलीज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो लेट्स सी अनीस बज़मी और अक्षय कुमार, इनका कोलैबोरेशन क्या कमाल करता है दिस ईयर दिसंबर में विद दिस फैमिली कॉमेडी फिल्म जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अनदर फिल्म जिसमें अक्षय कुमार दिखने वाले हैं इज वेलकम टू द जंगल, जो कि जून में रिलीज होने को है। आई बी ऑनेस्ट, वेलकम टू द जंगल मैंने देखा हुआ है, इसका एक कोई गाना तो इन्होंने शूट किया था और समथिंग। इतने सारे एक्टर्स हैं उस फिल्म में, आई डोंट नो किसको कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा या कितना जस्टिस होगा उनके कैरेक्टर के साथ। बट आई फील लाइक कि शायद ये फिल्म जितना हाइप्ड अप हो उतना एक्सपेक्टेशंस शायद ना मीट कर पाए। आई एम टॉकिंग अबाउट वेलकम टू द जंगल। बट लेट्स सी, आई कुड बी प्रूवन रॉन्ग एज वेल, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। 23 मिनट्स अवे फ्रॉम 10 फॉर नाउ, कमिंग अप वेरी शॉर्टली आपके लिए लेकर आएंगे आज का डेली राउंड अप। विल चेक आउट व्हाट्स द अपडेट राइट नाउ इन द लास्ट 1 or 2 आवर्स इन न्यूजीलैंड।
1: Mornings made better.
2: Two fryanda, char toast, butter jam, or a special chai.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja. Bro, look at you. Blue light screen ko itna ghoor raha hai, jaise wo tujhe promotion de dega. Par ye coffee? Lukewarm. A taste bilkul heartbreak jaisa. Please sir, tu cubicle ke liye nahi banaye. Tu beach ke liye banaye. Tu life ko enjoy karne ke liye banaye.
3: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
4: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
5: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
1: For show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
6: What's going on?
0: So let's find out what's going on. पिछले एक दो घंटे में क्या अपडेट जो है ये सामने आया है। Talking about it, I think in the last 1.5 hours ये अपडेट्स जो है ये किए गए हैं। सबसे पहले आपको बताएं एक महिला के बारे में, न्यूजीलैंड वुमेन जिनका नाम निकोल बर्च बताया गया है। इनको एक सीरियस किडनी डिजीज है, जिसकी वजह से शी नीड्स अ किडनी ट्रांसप्लांट टू सर्वाइव। नाउ द वर्स्ट पार्ट इज कि जब डॉक्टर्स के पास वो गई, डॉक्टर्स ने उनको ये बताया कि हर चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ किडनी मैच इन न्यूजीलैंड आर वेरी लो, इनफैक्ट अराउंड 4% चांसेस है, एंड शी वुड हैव अ बेटर चांस इन ऑस्ट्रेलिया। Because of this, almost every medical professional jinhone inse baat ki, she spoke to, they advised her to move to Australia to increase her chances of getting a transplant. Nicole ne ye kaha hai that this is a very big and emotional decision, kyunki she would have to leave New Zealand. She would miss her children jo yahan New Zealand mein hi rahenge. She would have to leave her pets behind. And in Australia, there may be more donors available kyunki wahan par zyada diverse population hai, better access to some medicines or treatments hai. Aur experts ka ye bhi kehna hai, they've basically explained that New Zealand has cheaper basic healthcare and prescriptions, like in Australia offers a wider range of some advanced treatments, jiske costs definitely high ho sakte hain. So in short, she is considering to move to Australia because that is the only option currently unke paas hai that can give her much better chance of getting a life-saving kidney transplant, jo unko New Zealand mein nahi mil raha hai, despite living here, despite being a citizen of this country. Imagine, aap ek serious health, situation face kar rahe hain, jahan par zindagi aur maut ka sawal hai, aur aapko bataya jata hai ki zinda rehne ke liye, bachne ke liye, is desh se aapko ek aur ek desh move hona padega. The emotional thing, the burden that she's going through right now is really, really difficult to digest. So that's what has come across right now. यहाँ का जो भी situation इसको ध्यान में रखते हुए. Now another thing, इसके बारे में एक detailed information जो ये सामने आई है. Last week ये announcement हुआ था कि जो भी नए immigrants or migrants who are applying for New Zealand citizenship from next year, mid or late next year से, उनको एक नया citizenship test जो है ये करना पड़ेगा. जो New Zealand government है, they are planning to introduce this new citizenship test for people applying for New Zealand citizenship. हमने आपको ये last week जैसे announce हुआ था उसके बारे में बताया था. There has been a lot of reactions around it, there have been a lot of talks about it, especially from the migrant community, और बहुत बातें जो इसके बारे में हो रही है. बट आपको एक बेसिक बात अगर हम बताएं अबाउट दिस टेस्ट, तो इसके बारे में कहा गया द टेस्ट विल हैव 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कवर करेगा न्यूजीलैंड की हिस्ट्री, यहाँ के लॉज और यहाँ का गवर्नमेंट. इसमें आपका रिक्वायरमेंट होगा टू पास 15 करेक्ट आंसर्स, मतलब 15 क्वेश्चंस के सही जवाब आपको देने होंगे, तभी आप पास हो सकते हैं. And it will give people 45 minutes. इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 45 minutes का टाइम होगा. Now जो applicants है, they will get 6 chances in total to pass. First 3 attempts जो है ये आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद में एक 30-day waiting period रहेगा, और जो बाकी के 3 attempts हैं वो after the 30 days waiting period आप कर सकेंगे. If someone still fails after 6 tries, they may have to either withdraw the application, या फिर इट हैज़ इट विल बेसिकली हैव इट डायरेक्टली डिसाइडेड कि मिनिस्टर्स जो है ये फैसला लेंगे कि उनका सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से क्या होगा, उनका सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा. द टेस्ट विल बी डन इन पर्सन टू मेक श्योर कि जो सही शख्स है वो ये टेस्ट कर रहे हैं, एंड टू प्रिवेंट चीटिंग एज वेल. और ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है दैट मोस्ट पीपल शुड पास ईजली, क्योंकि ऐसे सिमिलर टेस्ट और भी कंट्रीज में होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एंड द यूके. मोस्ट एप्लीकेंट्स पास्ड ऑन देयर फर्स्ट ट्राई. द एम इज कि इस टेस्ट से ये श्योर किया जाए जो नए सिटीजन्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सके न्यूजीलैंड के लॉज को, यहाँ की हिस्ट्री को, और यहाँ के जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसको. सो इन शॉर्ट, इट्स नए एग्जाम में फॉर सिटीजनशिप विद मल्टीपल चॉइस चांसेस आपको मिलेंगे टू पास, डिजाइन टू चेक बेसिक नॉलेज अबाउट न्यूजीलैंड. सो दिस इज द जिस्ट ऑफ इट, द ब्रेकडाउन के एक्चुअली में क्या क्या क्या क्या रहेगा इस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए.

0: देखते ही देखते दो बातों का समय जो है ये भी आ गया, और आज की दो बातें पूरी कोशिश है कि वैसा ही हो जैसा विजय आपको सुनाते हैं। बट कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें, कुछ बहुत खूबसूरत लाइन जो मैंने पढ़ी, तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। कहते हैं कि अगर आपको विश्वास है आप कर सकते हैं, तो आप अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय कर चुके हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं, तो आप अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय कर चुके हैं। और आज की दूसरी बात, आज से शायद एक महीने बाद आप ये विश करेंगे कि काश मैंने एक महीने पहले शुरुआत की होती। आज से शायद एक महीने बाद आप ये विश करेंगे कि काश मैंने एक महीने पहले शुरुआत की होती। तो इसीलिए शुरू करने का कोई समय नहीं होता। स्टार्ट इट राइट नाउ। जो भी आपको करना है, आपका हेल्थ जर्नी हो, मेंटल हेल्थ जर्नी हो, आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, खुद को सेल्फ ग्रूम करना चाहते हैं, वट एवर इट इज़, डोंट वेट, स्टार्ट इट टुडे। क्योंकि आज से शायद एक महीने बाद आप यही बोलोगे, आई विश मैंने एक महीने पहले शुरुआत की होती। उम्मीद करते हैं कि आज की दो बातों से आपको कुछ सीख ज़रूर मिले, और इन्हीं बातों को आपके नाम हम छोड़े जा रहे हैं इस वादे के साथ कि कल हम दोनों आपके साथ एक बार जुड़ेंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और ठीक सुबह 6 पर आपके लिए एक बार फिर एक नए सिरे से इस सफ़र को तय करने की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। Have a wonderful Tuesday. Enjoy your rest of the day हमारे बाकी साथियों के साथ, और कल मिलते हैं। Enjoy आज का हमारा throwback.
1: मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन करीब।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। 12 मई का दिन है, अगर आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो आप वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू एज वेल। वैसे एक चीज तो है जो मैंने अभी फेसबुक के पेज पर पोस्ट किया है, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो आपने अपनी अपनी यू नो जो आपका जीवन है उसमें आपने कितने संघर्ष लिए होंगे, उन संघर्षों के बाद ही जब आज आप पीछे पलटकर देखते हैं तो आपको लगता है आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन वो सब तभी होता है जब आप उस पहाड़ी पे चढ़ते हैं जिसका नाम है कठिनाई या मुश्किल, ये जिसको कहते हैं हम, आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स, और उसी के बाद फिर आपको एक विजय तक होने की महसूस आप करने लग जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ काशिका फ्रॉम हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ऑन हम, और आपके साथ रोवा के जरिए भी मेरा ये साथ बना हुआ है। तो कहाँ से सुन रहे हैं भाई, आपको बता देते हैं कि फ्लाई अवे फ्रेंजी अगले घंटे पर मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ ये लास्ट वीक होगा जहाँ पर आपके लिए ये मौका है फ्लाई अवे फ्रेंजी में भाग लेने के लिए। कोड मैं अगले हफ्ते अगले घंटे पे बताऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ थैंक यू करना चाहूंगी नाना द कशिश फूड्स, जिनके सौजन्य से आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ईट बेटर लिव बेटर, इनका ये पैगाम हमेशा रहता है क्योंकि ये चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, और इसके लिए इनके खाना जो होता है बड़ा हाइजीनिकली पैक्ड होता है, आपको ग्रोसरी स्टोर्स पे मिल जाता है। इस घंटे में 6 वर्ड स्टोरी, और अगर कोई ड्रीम है जो आप चाहते हैं इंटरप्रेट करना तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं अपनी कुछ एक्सपर्ट बातें आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, कीप हमिंग।
1: बचाओ क्या,

0: Experts Adda.
1: तो ये एक्सपर्ट बातें जो है कुछ कुछ मैं ढूंढ के लेकर आ जाती हूँ, और ऐसे में डिहाइड्रेशन जो होता है, किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को, काफ़ी वियर्ड था। और मैंने सोचा कुछ एक एक्सपर्ट जो बताते हैं। एक हमारा हैप्पी हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जिसको पानी चाहिए होता है अपने सिंथेसाइज करने के लिए अपने हार्मोन्स को। तो थोड़ा सा भी माइल्ड आपका डिहाइड्रेशन होता है वो आपके मूड को इफ़ेक्ट करने लगता है, और फिर आप लो फील करने लग जाते हैं, इरिटेबल फील करने लग जाते हैं। एक स्ट्रेस जो होता है वो ट्रिगर कर देता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसका मतलब आपकी बॉडी जो है एक कोर्टिसोल जो होता है वो रिलीज करता है, एंड दिस इज़ अ सिग्नल विच मीन्स आपने एक ग्लास पानी कम पिया तो समझ लो यू विल बी वेरी एंग्शियस। यू विल नॉट रियली नो व्हाट इज़ द रीज़न क्यों आप एंग्शियस फील करें, बट आपको पता है आपकी बॉडी आपको ये एंग्शियस फील कराने की कोशिश करी है, ये साइन देने की कोशिश करी है कि आपको पानी पीना चाहिए। और जो ब्रेन होता है हमारा वो 75% पानी उसमें होता है, एंड इट नीड्स फ्लूइड। अब उसको जब तक वो पूरा पानी नहीं मिलता है तो फिजिकली जो आपके कॉन्टैक्ट होता है आपके स्कल के अंदर, वो एक फिर पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है कि आपके सिर में पेन होना शुरू हो जाता है और आपको पता नहीं चलता ये पेन क्यों हो रहा है। आप लगता है ज़्यादा कंप्यूटर देख रहे हो, बाहर धूप में गए, ये गए, लेकिन आप ये भूल जाते हो शायद आपने पानी पूरा नहीं पिया, इसी वजह से आपको वो हेडेक हो रहा है, आपका हाइड्रेशन लेवल कम हो रहा है। हमारा ब्रेन जो होता है जब कई चीज़ें प्रोड्यूस करता है, और ऐसे में हमारी एनर्जी जो होती है एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हमारा ब्रेन काफ़ी फॉगी होने लग जाता है, आपको लथार्जी लेजीनेस एकदम बहुत ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है। अब आप सोचते होंगे क्या रीज़न है, मैं वीक हूँ या ये है वो है, दरअसल ये आपको पानी पीना है। कभी भी आप ये चीज़ें ट्राई करेंगे ना, यू विल एक्चुअली नो द डिफरेंस। एक चीज़ और होती है ना, कहते हैं कि एक की न्यूरो ट्रांसमीटर होता है फॉर मेमोरी और फोकस करने के लिए, और ऐसे में उसमें एडिक्वेट यानी बहुत सही पानी की मात्रा चाहिए ही चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन, या आप कभी करते हैं कि कुछ चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है क्या, आपको बहुत सोचना पड़ता है कि क्या था वो, क्या था एक्चुअली। दरअसल द हार्डर यू थिंक कि आप क्या था वो, आपको रियलाइज़ होगा कि दरअसल क्वाइटली, क्योंकि पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेशन आपको अंदर हो रहा है, वो आपका वो जो एक सेल है वो इरोड हो जाता है, निकल जाता है। एंड डिहाइड्रेशन से एक्चुअली एक चीज़ और होती है, आपका पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो उसका आउटपुट जो होता है उस पर इफ़ेक्ट करने लगता है, यानी कि आपका पुअर हाइड्रेशन जो होता है आपके सोने से पहले वो आपके नींद आने में देरी लेकर आ सकता है, देर हो सकती है आपको, और आपके एक क्वालिटी स्लीप में भी फ़र्क लेकर आ सकता है। इनफैक्ट यू स्टार्ट फीलिंग क्वाइट टायर्ड। आप किस तरह से हाइड्रेट रह सकते हैं, आप काला नमक और नींबू का जूस जो होता है आपने पानी में ऐड करिए, इट विल रियली हेल्प यू। कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लेते हैं, रिच फ्लूइड जो होता है, जैसे कि कोकोनट वाटर हुआ, बटर मिल्क हुआ, इन्हें अगर

0: Plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: So actually, अगर देखा जाए तो कशिश फूड्स की टीम हमारा प्रोग्राम सुन रही है क्योंकि भाई वो तो स्पॉन्सर हैं और वहाँ से इनकी मार्केटिंग टीम हमें सुन रही है और बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू जो लोग हमें सुन रहे हैं. तो ये ऑफिस शाउट आउट मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही एडवांस में दे दिया क्योंकि आई रियलाइज कि ये कितना आप एक्साइटेड हैं इसके लिए. लेकिन हमें एक्साइटमेंट एक बहुत ज़्यादा है और उस बात का है कि आपको बता दें आप रोवा ऐप के ज़रिए हमें सुनते हैं तो आपको पता है रोवा ऐप में कितने सारे रेडियो स्टेशन हैं, कितने म्यूज़िक स्टेशन वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें नंबर वन कौन सा है? उनमें नंबर वन है हम रिवाइंड, जहाँ पे आप बॉलीवुड के उस गोल्डन एरा के गाने सुनते हैं, यानी 60s and 70s के हिट. इज़न दैट इंटरेस्टिंग? आई मीन ये एक नहीं, कितने सारे स्टेशन, आई डोंट नो द नंबर ऑफ स्टेशन, आई कैन फाइंड आउट, बट नंबर वन पोजीशन पर ये है. और नंबर टू पोजीशन पे आपको पता है कौन सा स्टेशन है? म्यूजिक स्टेशन रोवा पे. पूरा इंटायर रोवा में कितने सारे हैं रेडियोस आप सुन सकते हैं ये म्यूजिक स्टेशंस. तो उसमें नंबर टू पोजीशन पर है जूक बॉक्स, जहाँ नॉन स्टॉप 80s के ट्रैक्स आप सुन सकते हैं. Isn't that interesting? Isn't that a proud moment for us? बाकी के हमारे म्यूजिक स्टेशन अगर आप सुनना चाहते हैं, फिजी कीर्तन, चढ़दी कला, पंजाबी हिट्स एंड फिजी कीर्तन संग्रह एंड राहत फतेह अली खान, जो बहुत जल्द हमारी सुपर सिटी में आ रहे हैं.
3: Office shout out.
1: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: चुका।
1: वाह,
2: हाँ। एक बात बताऊँ, इट्स नॉट अ गुड न्यूज एट ऑल। जहाँ की टेम्परेचर्स जो है यू नो लोगों को लगता था कि बहुत ठंड होने वाली है, एंड जो अवाकिनोस की एरिया के जो मेंबर्स हैं वो उन्हें एक चेंज नज़र आ रहा है। और वहाँ के सेक्रेटरी ने बताया कि यू नो कुछ मीटर 15 साल से लगातार आनी शुरू हो जाती है फॉर स्कीइंग पर्पसेस, एंड ये मोस्टली विंटर का एक आगमन कर रही होती है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अभी इस बार क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो जो बर्फ़ का एक वो जो होता है जिसपे ये स्कीइंग कर सकें वो नहीं अभी तक आया है। वहाँ सिर्फ आइसिकल्स आए हैं जहाँ पे घास हल्की हल्की जो होती है, एक एक घास आप नज़र आता है अलग अलग फ्रीज हो रही है, दैट्स लाइक एन आइसिकल। तो इन्होंने बताया कि अभी वो ठंड वाला मौसम जो है, आप बाय द वे नोट करिए, मई के महीने में यूजुअली ऐसा होता है कि हमें काफ़ी ठंड लगनी शुरू हो जाती है, बट ये अभी इस तरह का नहीं हुआ। रीजन, देयर इज अ क्लाइमेटिक चेंज।
3: थोड़ा सा हॉल बना दे।

0: Show.
1: वैसे एक बात तो है कि आपकी जो ड्रीम है बहुत मैटर करती है आपके सोच विचार के साथ, और ऐसे में आप क्या ड्रीम कर रहे हैं बिल्कुल मुझे बताइए ताकि मैं कोशिश कर सकूं उस चीज़ का हल निकाल सकूं आपके लिए। अच्छा, ये तो हो गया आपके साथ, लेकिन वैसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आप हमें रोवा ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं और आपको लगता है आप एक कीवी वर्ड के विज़र्ड बन चुके हैं, तो आपको बता देती हूँ दैट कोई भी कीवी का वर्ड हो सकता है, कोई सेइंग हो सकती है, कोई फ्रेज हो सकता है जो आपको लगता है आपके माइंड में है। आपको क्या करना है, अपने जो दिमाग का जो क्या कहते हैं ना इंजन या मोटर, उसको घुमाना है सीधे रोवा ऐप के ज़रिए। रोवा ऐप के ज़रिए आपका माइंड जो है वहाँ पर थिंक करने के लिए मजबूर हो जाएगा। वहाँ पहुँचते ही आप रोवा पे आप जब हम पर आएंगे आपको नज़र आएगा विन कैश विद चर्डल। अब ये चर्डल के साथ आप हमारे पास $7,000 हमें मिले हैं जो हमें बांटने हैं। ओके, हम जब ये बांटने की बात करते हैं $7,000, तो हर रोज़ $100 कैश निकालते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूं। रोवा पे पहुंच जाइए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
4: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: और ड्रीम डायरी में मेरे पास एक सवाल आया है, एंड दैट इज शी इज वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज इनको सपना आया है दैट शी इज मैरिंग हर ओन हस्बैंड अगेन। ओहो हो, एक्चुअली क्या होता है ऐसे में एक ही चीज़ लगता है जो हो सकता है, एंड एक्चुअली आई हैव हैड अ लुक एट व्हाट द इंटरप्रिटेशन प्रॉब्ली कुड बी। इट्स लाइक आप एक दूसरे के साथ रिकमिट होना चाहते हैं। अब ये ड्रीम जो है दरअसल आपके जो रिलेशनशिप है उस पे बहुत डिपेंड करता है। डू यू थिंक कि आपको रिविजिट करना चाहिए कि अगर आपके बीच में और आपके हस्बैंड के बीच में कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, सो एक जगह पर आके आपको लगता है कि दोबारा से आपको उन चीज़ों को वाउस को रिन्यू करना चाहिए, या आपको लगता है कि आपको क्या अपने हस्बैंड के साथ दोबारा से बात करके विचार विमर्श करके फिर से उन चीज़ों पे रीवर्क करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आपको सोचना पड़ता है अरे भाई क्यों ऐसा फीलिंग आ रही है या क्यों ऐसा सपना आ रहा है कि आप अपने ही स्पाउस को दोबारा से अपने स्पाउस के साथ आप शादी कर रहे हैं। इट कुड बी मेल, इट कुड बी फीमेल, सो डू हैव अ लुक एट इट। मे बी इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ सीरियस थिंकिंग एट टाइम्स जब आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेन आ रहा है। लेकिन एक बात बताती हूँ, कुछ रिश्ते एकदम से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब जब मैं मजबूती की बात करती हूँ तो 147th गिरमिट रिमेम्बरिंग डे जो है ये इस आने वाले शनिवार के दिन मलायोला कम्युनिटी सेंटर में मनाया जाने वाला है 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। 4 बजे दरवाजे खुलेंगे नेटवर्किंग चाय और स्नैक्स के लिए आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले होगा, सीनियर रिकग्निशन अवार्ड होगा, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव सिंगिंग, खाना पीना, क्विज, स्पॉट प्राइजेस, कुछ स्पीचेस। अगर आप इसका भाग बनना चाहते हैं तो फिजी गिरमिट फाउंडेशन एनजेड के फेसबुक के पेज पे चले जाएं और ये इवेंट बिल्कुल फ्री है।

वैसे आपका एक टेक्स्ट आया है, आपने ड्रीम डायरीज में पूछा है कि पिछले आई थिंक कल आपको शायद सपना है कि द वर्ल्ड इज बीइंग ऑन अ वॉर एंड आपकी डॉटर और आप स्टक अप हो गए हैं कहीं पे एंड इन अ हॉस्टेज सिचुएशन. तो बेसिकली इट्स रिफ्लेक्टिंग सम काइंड ऑफ अ फाइट और अ फ्लाइट सिचुएशन. एक बहुत ज़बरदस्त एंग्जाइटी है जो पेरेंट्स को होती है. आप इसको मैनिफेस्ट मत कीजिए बिल्कुल. आपको लगता है कि अगर रियल लाइफ में आपकी डॉटर किसी सिचुएशन में स्टक अप है, आप बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हैं एंड आपकी चॉइसेस जो उनको संभालने के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो दिस इज़ द टाइम एक्चुअली यू हैव टू गिव हर दैट काइंड ऑफ पुश एंड यू नो गेट दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टू यू. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होती है ना, आपको एंक्शस बना देती है, कुछ चीज़ें टॉक्सिक बना देती हैं. आई नो वी आर ऑल प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स अ चाइल्ड, लेकिन ये हाई प्रोटेक्टिव जो लव होता है, कभी पैनिक में ऐसा ना हो कि उसका कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाए. सो बी वेरी वेरी माइंडफुल. रिमेंबर टू हैंडल द सिचुएशन वेरी वेरी केयरफुली. थ्रोबैक में जो गाना मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, इस फिल्म के गाने ब्यूटीफुल थे, लेकिन इस फिल्म की दो हीरोइन थी जिनका नाम था संयुक्ता और रोशनी. थ्रू आउट द मूवी दोनों लड़ते रहे, एक दूसरे को अक्यूज़ करते रहे, लेकिन फिल्म के गाने इतने रोमांटिक थे और ये अक्यूज़ कर रहे थे कि भाई तुम्हारा सोएंसो के साथ अफेयर है, सोएंसो के साथ अफेयर है. एंड दिस ऑल हैपेंड इन द मूवी सलामी. और ये सलामी फिल्म में आयूब खान को आपने देखा था डेफिनेटली. पिक्चर के गाने आज तक हम याद करते हैं, जैसे कि ये वाला.

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 17, overnight temperature of 10. Aaj ka forecast bataya ja raha hai, kuch scattered rainfall expected hai aaj dopahar ko. It feels like 15 degrees, 5:26 par sunset bataya ja raha hai.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. 12 मई का दिन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी. वैसे अपना सीक्रेट बर्थडे माधवी आप सेलिब्रेट कर रही हैं, और आपके बेटे बहू और साथ साथ आपके हस्बैंड अशोक ने आपको विश किया है. सो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माधवी बोरा. और इसके साथ साथ वैसे इस घंटे पर मेरे पास हम फ्लाई वे फ्रेंजी का कोड देने का टाइम आ रहा है. ध्यान से सुनते चले जाइएगा. एनजेड म्यूजिक मंथ भी है, सिक्स वर्ड स्टोरी भी है मेरे पास, कुछ इधर उधर की बातें, कुछ तड़का, और साथ साथ रीयूज रिसाइकल मी करने का वक्त आएगा, जहां पर इस बार मैं सब्जियों के बारे में बातें कर रही हूँ कि उन्हें किस तरह हम रीयूज कर सकते हैं. कोई सवाल, अरे कोई जवाब तो भी दे सकते हैं. 5599 पे टेक्स्ट करें, 0800 00 हम पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में आपका साथ मैं कशिका निभा रही हूँ 12 बजे तक. कशिश फूड्स के सौजन्य से मंडे टू फ्राइडे आपके लिए 10 से 12 बजे के दरमियान मैं कुछ बातें, ऐसी चीज लेकर आती हूँ जिनसे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है.
0: बचाओ क्या,

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: सेलिब्रेटिंग लोकल आर्टिस्ट
3: बैक योर बैकयार्ड बीट्स
4: बैक योर बैक यार्ड बीट्स में हम सेलिब्रेट करते हैं आपको. अगर आप लोकल टैलेंट हैं और बहुत ही खूबसूरत गाते हैं तो अपना बायो और अपना गाना जो बेस्ट ट्रैक है आप buzz@hamfm.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं. और हमारी कोशिश रहती है हर रोज़ आपके साथ कोई नया कलाकार जो है उनके गाने को हम आप तक लेकर आए. एक प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए बना दिया है और आज ये प्लेटफॉर्म हमारा जो इस हमारा कलाकार है इस मंच पर आ रहा है वो है जसराज बसरा. जसराज बसरा ऑकलैंड के एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं और अपना डेब्यू एक पंजाबी रिलीज से कर रहे हैं. बड़ा फ्रेश एनर्जेटिक इनकी आवाज़ है. वैसे एक बात बता देती हूँ, अगर आप इनका गाना सुन रहे हैं पसंद कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं इसको रिपीट करना या आप चाहते हैं इनको स्किप करना, आपको क्या करना है 5599 पे MM लिखना चाहते हैं MM लिखिए कीवर्ड और उसके बाद उनका नाम लिखिए और बताइए आप इनको रिपीट या प्यार करना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं. टॉप थ्री जो है ये आर्टिस्ट क्लाइम करेंगे इन द पायदान इंटरेक्शन के ज़रिए पता चलेगा. सोशल मीडिया पर इनका कोई वीडियो अगर हमने पोस्ट किया तो वहाँ लाइक कमेंट शेयर करके आपका सपोर्ट पता चलेगा. ये इंगेजमेंट जो है विनर डिसाइड करेगी. सो जसराज बसरा जी फैंटास्टिक सुनिए.

0: ईट बेटर लिव बेटर।
1: कभी कभी कुछ चीज़ें हम मार्केट से ऐसे खरीद लेते हैं ना, वो ठीक नहीं निकालते। जैसे कि अभी दो चार दिन पहले आई थिंक ऐसे था कि एसेंटे, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट बिकॉज इट्स फ्रेंच, स्लाइस्ड लेमन ग्रास, इसके लिए बताया गया था कि ये एसेंटे ब्रांड के लेमन ग्रास को इसको रिकॉल कर लिया गया बिकॉज इट हैड हार्ड प्लास्टिक इन इट। अब न्यूजीलैंड फूड सेफ्टी जो थी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसके ज़रिए उन्होंने बताया कि यू नो जो क्रश स्लाइस की हुई लेमन ग्रास थी जो कि इंपोर्ट की जाती थी फ्रॉम वियतनाम, उन्होंने ये बताया कि ये कंसर्न आ गया क्योंकि उसमें कुछ फॉरेन मटेरियल निकला, यानी कि बिकॉज उस लेमन ग्रास के इंग्रेडिएंट के साथ कुछ प्लास्टिक था उसके अंदर। ये पता नहीं कि उस प्रोडक्ट को किसी ने खाया कि नहीं खाया, बट अगर आप किसी तरह आपके हाथ में वो प्रोडक्ट आ गया है तो डेफिनेटली उसको आपको वापस करना चाहिए और उसको आपको जाकर वापस रिफंड उसका लेना चाहिए। इस रिकॉल में 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 5 केजी के जो पैक्स हैं एसेंटे या एसेंशे क्रश्ड लेमन ग्रास, बेस्ट बिफोर डेट इसकी है 9th of December 2027 टू 5th of January 2028। सो इंश्योर दैट ये पैक्स अगर आपने लिए हैं, इसके नोटिफिकेशंस पता नहीं अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बट ये ज़रूर कहा जा रहा है कि दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट द कंपनी, बैक ट्रैक कर रहे हैं कि इस तरह से ये प्लास्टिक कैसे घुस गया उस प्रोडक्ट के पैकिंग के अंदर।
2: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा, पर ये कॉफी ल्यूक वार्म, अ टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
3: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
4: It's 10 a.m. and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World online same day click and collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
5: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा

0: order any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
1: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. सिर्फ 44,990 plus on road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
2: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो तो याद रखिए प्लास्टिक बैग ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए रिसाइकल सही करें ये आपके हाथ में है सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइक्लेबल आइटम्स तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ऑकलैंड
3: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
2: क्यों क्या हुआ
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रिस्पांस फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800-564-424
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
5: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six-word story.
6: Six-word story mein, I have सिक्स वर्ड स्टोरी क्रिएट करी है फ्लाई अवे फ्रेंजी कोड इज स्टिल ऑन फ्लाई अवे फ्रेंजी कोड इज स्टिल ऑन चलिए और ये कोड क्या हो सकता है आप कह सकते हैं द कोड इज कॉल्ड नोमू नोमू नोमू अगर हम इसको कहें तो नोमू स्टैंड्स फॉर वन यू और योर I think that's the right way. I hope I have pronounced it rightly. Anybody from Fiji who thinks I've not pronounced it rightly, you're most welcome to call me and correct me. It's no moo. So, aaj ka aapka code word hai no moo. अब नोमू जो है अब आपको फटाफट फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए हमारे रुवा ऐप पे जाना है याद रहे ये फाइनल वीक है आपके लिए और ऐसे में आपको ये कोड ऐड करना है और ये अगले एक घंटे तक कोड आपके लिए वैलिड है ये स्पेशल कोड आपके लिए सुबह हम 8 बजे के दरमियान 11 बजे के दरमियान 1 और 5 बजे के आसपास बजाते हैं बताते हैं और आपको एक घंटे का मौका देते हैं ताकि आपके चांसेस ब्राइट हो जाएं टू गो टू फीजी एक रिटर्न टिकट टू फीजी जो है आप जीत सकते हैं अब बताइए ये कोड अगर आपके लिए समझ में आ गया हमारे रोवा ऐप पे चले जाइए फटाफट इस कोड को NOMU इसको आप फिल इन करें और बस अपनी एंट्री ऐड कर दीजिए इतना सिंपल है बाय द वे जब आप हमारे ऐप पे जा ही रहे हैं तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी ध्यान से समझ लीजिएगा NOMU NOMU इज योर कोड वर्ड
5: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

वैसे एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है द एंटोनोव AN-124 एक बहुत बड़ा कार्गो प्लेन है. आई थिंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो प्लेन्स में से एक है ये, जो हमारी कंट्री में आ चुका है फ्रॉम हवाई. ऑकलैंड एयरपोर्ट ने कंफर्म किया है कि ये एयरक्राफ्ट जो है इट वाज पार्ट ऑफ अ प्लान्ड प्राइवेट स्पेशलिस्ट फ्रेट मूवमेंट. लेकिन अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट, ये फ्लाइट जो थी टू ऑकलैंड, इट टुक 9 hours and 21 minutes. इट्स अ सिमिलर अमाउंट क्यों कोई न्यू ऑर्लीन से लेके हवाई चला जाता है. ये 4-engine एयरक्राफ्ट जो था ये डिज़ाइन किया गया था इन द 80s, एंड दिस वॉज डिज़ाइन बाय द एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो, और ये यूक्रेनियन SSR ऑफ सोवियत यूनियन का था. अब ये करीब 150 tons ऑफ कार्गो कैरी कर सकता है, एंड इट कैन टेक मैक्सिमम वेट ऑफ मोर देन 400 tons. तो जैसे ही मतलब लगता है कि इट्स अ बिग थिंग, जहाँ पे हमें लगता है कि न्यूजीलैंड हमारा बहुत पीछे रह गया, बहुत ये हो गया, बहुत वो हो गया, मगर इस तरह की जब खबरें आती हैं ना, तो ये लैंड जब हुआ तो मतलब एक प्राउड मोमेंट फील होना शुरू हुआ.

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: वैसे व्हाट डू यू रियली वांट टू डू इज व्हाट आई वांट टू नो कि खास तौर पर जब आपके नेबर होते हैं और नेबर के घर में कोई बहुत बड़ा फ्रूट्स का ट्री लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है और वो फ्रूट्स बाहर निकल निकल कर आ रहे हैं बोलने के लिए, मुझे खा लो, मुझे चौतोड़ लो, क्या होता है ऐसे में? वैसे एक बात बता देती हूँ कि यूजुअली जो एक रूल जो हम सेट करते हैं, न्यूजीलैंड में खास तौर पर बताया जाता है कि यू नो कहीं पर आप फ्रूट्स लगा रहे हैं तो पब्लिक लैंड में अगर लगा रखा है इंक्लूडिंग पार्क्स एंड रिजर्व्स, तो दिस इज़ नॉट टू बी सोल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बताया कि ये जो है ये गार्डन्स जो मैनेज करते हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं दरअसल ये लीज्ड प्लांट्स होते हैं कई जगह पे, तो इनकी जो हार्वेस्टिंग होने लगती है कि उस एरिया में आप ना जाएं जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है. यू नो कई लोग फेंस को तोड़कर निकल जाते हैं, उस स्पेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, बट यू नीड टू एंटर यू नो राइटली सेड के आपको वहाँ परमिशन चाहिए. आप जब जाते हैं यू कांट पिक अप एनी फ्रूट और एनीथिंग. इस तरह से कभी कभी एक पब्लिक फुटपाथ पर भी ऐसा होता है, किसी लैंड ओनर की जो प्रॉपर्टी में से फ्रूट्स जो है उसकी ब्रांचेस बाहर निकल कर आ रही हैं. अब इसकी भी परमिशन आपको ओनर से लेनी चाहिए कायदे से, क्योंकि जब तक आप ये परमिशन नहीं लेते थे तब तक आप वो फ्रूट एक्चुअली उठाएं नहीं, तोड़े नहीं. लेकिन एक चीज़ और, एक क्वेश्चन जो निकल कर और आता है कि एक प्राइवेट घर, किसी का घर है और उसके जो ब्रांचेस हैं आपके घर पर आके वो निकल रहे हैं और आपके घर में आके वो टूट रहे हैं, डू यू थिंक यू शुड प्लग देम? क्या आप उनको तोड़ सकते हैं कि नहीं, उन प्लांट्स को या उन फ्रूट्स को आप तोड़ सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली उसमें भी आपको अपने नेबर के साथ पूछना चाहिए कि हाँ ये प्लांट तुम्हारा जो ये फ्रूट निकल कर इस तरफ आ रहा है, क्या मैं इस तरफ के फ्रूट तोड़ सकती हूँ या तोड़ सकता हूँ? बस इतना ही आपको करना है और वो कभी मना नहीं करते यहाँ पे. इनफैक्ट यू नो हम लोग जब रास्ते में चल के जा रहे होते हैं तो सड़क पे भी कुछ प्लांट्स, कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो निकल कर आ जाती हैं, भले ही वो वहाँ पे राइप फ्रूट पड़ा है या फ्रूट पड़ा हुआ है सड़ रहा है, आप उसको टच नहीं कर सकते जब तक आप एक परमिशन नहीं यू नो किसी से ग्रहण करते हैं. डेफिनेटली एक ये चीज़ है, काउंसिल का भी ये कहना, इनकरेज करते हैं लोगों को कि दे शुड टेक व्हाट दे आर एक्चुअली अलाउड टू. कई घरों के बाहर लिखे होते हैं पिकअप फ्री फ्रूट या ये करके, वहाँ पे वो लोग बंचेस बना के या आपके लिए एक बॉक्स बना के या बैग्स बना के रख देते हैं, तभी आइडियली आपको लेना चाहिए. लेकिन जस्ट लाइक दैट यू कांट अफोर्ड टू पिक दैट अप. किसी के पेड़ पे चढ़ के घर के अंदर भी आप ना इस तरह से कुछ तोड़ें. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड टेक सब रिस्पेक्ट कीजिए उस पब्लिक स्पेस को जहाँ पे लोग यू नो चाहते हैं कि आप ये पेड़ों से छाया ले लें. उन पेड़ों को तोड़िए मत, उन पे क्लाइम मत कीजिए. अनराइप कच्चे, मतलब कच्चे है फ्रूट फिर भी उनको तोड़ देना, कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते कर लेते हैं. ओवरराइप फ्रूट जो होता है, जो गिर पड़े होते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक कॉम्पोजिट बन जाता है. तो इससे क्या होता है कि वो एरियाज़ में अपने आप ही वो प्लांट्स को पता है कि कहाँ कहाँ वो जा क्या कर सकते हैं. बी माइंडफुल सेफ्टी अराउंड दैट एरिया. पेडेस्ट्रियंस खासतौर पे अनइवन ग्राउंड होता है जहाँ पे पानी पावर लाइंस भी होती हैं. ओनली उन फ्रूट्स के आप ट्रीज आप नट्स को पिक कर सकते हैं विच इज़ ग्रोइंग इन अ पब्लिक लैंड या जहाँ पे क्लियरली वहाँ लिखा है आपके लिए परमिशन.
0: Drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if Frosted Tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
1: Gold Coast is on sale now at Qantas. From sun-soaked beaches and luxury retreats to lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Book now at Qantas.com. Hurry, sale ends Tuesday, May 19. Terms and conditions apply.
2: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.

रेस्क्यू में रिसाइकल में हम बातें कर रहे हैं अबाउट लेफ्ट ओवर सब्जियां। अब ये लेफ्ट ओवर सब्जियों में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ करती हूँ, आई थिंक माई प्रॉब्ली माई मदर यूज़ टू बी डूइंग दिस, दैट्स वाई वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया। वो सब्जी वब्जी बना लेती थी, स्कूल के डब्बे में क्या होता था, कहती थी अरे मम्मी रोज़ वही चीज़ खिलाते हो। तो कई बार वो क्या होता था, गाजर मेथी की सब्ज़ी है, मेथी आलू, आलू मटर, ये कोई भी सब्जियाँ वब्जियाँ होती थी ना, उनको भर देती थी और उनको छोटे छोटे प्याज और हरा धनिया काट के वो उसकी एक फिलिंग बना के उसका सैंडविच बना देती थी। उसको एक जो टोस्टर उस ज़माने में होते थे, यू नो, वो जो गैस के ऊपर करके बनाया करते थे, ये ग्रिल्स वगैरह तो बहुत ही, यू नो, लाइक एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे, बट वो ये सैंडविचेस को ग्रिल करके हमको हमारे डब्बे में डाल के देती थी। तो ये मैश करके सब्जियों को उसमें प्याज, हरा धनिया और ये सब डाल के वो बना के दिया करती थी। सो दैट कैन प्रॉबेबली बी अ गुड आइडिया फॉर यू। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट के क्या खास हमारी कम्युनिटी में चल रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, इस आने वाले संडे के दिन सुबह 11 से 4 बजे के बीच में श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं भोजन मेला। अब ये भोजन मेला एक ऐसा फूड कार्निवल है जहाँ आपके लिए एंट्री फ्री है, खाना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप जाके बच्चों के साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ बाउंसी कासल मिलेगा, फेस पेंटिंग मिलेगा, हैना आर्ट टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, अलॉन्ग विद ज्वेलरी के और क्लोदिंग के अलग अलग स्टॉल्स आपको मिलने वाले हैं बाउंसी कासल। एज़ आई सेड, बच्चे जाके इंजॉय कर सकते हैं और ये सुबह 11 से 4 बजे तक होने वाला है एट 378 आरआरएम रोड रामा रामा। तो ये वेंकटेश्वरा देवस्थानम का एक सपोर्ट है फॉर द लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ वाइब मिक्स इवेंट आपके लिए ग्रैंड मस्ती नाइट 23rd ऑफ वी के दिन लेके आने वाले हैं, जहाँ पे रेनाउंड आरजेस फ्रॉम फीजे एसएन, जय भैया जी, राउडी नमन जो हैं आपके लिए होने वाले हैं वहाँ पर, डांसिंग लेजेंड चारफार जो है 17 साल के बाद न्यूजीलैंड पधार रहे हैं, 5 से 6 मसाला मिक्स स्किट्स जो हैं ये भी होने वाली हैं, एक डबल आवाज़ निकालने वाली मनी डिसोजा जो हैं ये मेल फीमेल की वो भी होंगे, अमेजिंग मोंटो मोनिका और साथ में युवा डांस ग्रुप, टॉप डीजेस भी आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं, हमारे खुद केतन जो हैं वो भी परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे गिव अवेज हैं और टिकट्स जो हैं आप जाके वेरियस जगहें जो हैं वहाँ से आप ये खरीद सकते हैं। एंड यही कह सकती हूँ कि एक अमेजिंग सा वाइब मिक्स इवेंट आपके लिए ग्रैंड मस्ती नाइट लेकर आ रही 23rd ऑफ मे के दिन एट द नेटबॉल मानोरीवा, पहुंचिएगा जरूर। दिल

की तरफ आपको लेके चलती हूँ। तो भाई आमिर खान की उस दौरान मूवीज इतनी चली थी, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी, मन दिल, हम है राही प्यार के, लेकिन एक पर्टिकुलर मूवी में इन्होंने प्रैंक अदा की थी विद नन अदर देन द हीरोइन जूही चावला के साथ। और उसके बाद जूही चावला को उससे इतना बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि मैं इनसे बात नहीं करूँगी। 10 साल तक उन्होंने उनके साथ बात नहीं करी। बस चलिए इसी के साथ साथ, छोटे से ट्रिविया के साथ साथ मैं यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि केतन यहाँ पर आपका साथ निभाने के लिए लंच बॉक्स में आने वाले हैं। तो कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार, और दिन को मंगलमय बनाने के लिए ऑफकोर्स एज आई सेड पूरा दिन आपके लिए हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा है विद फुल 24/7 एंटरटेनमेंट। कल आपसे मैं दोबारा मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सभी को याद करिएगा। This is Kashika signing off from the Hum Studios. Look after yourselves.